एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 45 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 6 बजे हैं, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

कार्यक्रम के आरंभ में आइए करें देश वंदना। रचना है एसवी सुजालपुरकर की और संगीत दिया है संतोष अग्निहोत्री ने, और ये है संवेश्वर में।

0: घनश्याम वासवानी के स्वर में अभी आपने सुना ये भजन और इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर अभी ही संपन्न होता है।
1: आस्था के स्वर।

0: हम बोल रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से। प्रस्तुत है आज का चिंतन, आलेख और वाचक स्वर है रमाकांत पांडे का।
1: मिथ्या अहंकार, मुझे सब जानते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह मेरे लायक नहीं है, वह तो ठीक नहीं है, वह अच्छा व्यवहार नहीं करता, वह उच्च शिखर का नहीं है, वह अपने विचार से मेल नहीं खाता, इस प्रकार के विचारों से मानव भरा पड़ा है, जो कि मिथ्या अहंकार है। अहंकार व्यक्ति के

0: व्यक्तित्व में बाधा है, वह उसके अच्छे विचारों को भी दबा देता है। अनेक ऊंचाइयां जो उसके जीवन में वह प्राप्त कर सकता है, उसे भी यह मिथ्या अहंकार नष्ट कर देता है। स्वयं में अहंकारित होकर वह खुश हो सकता है, परंतु उसका व्यवहार आचरण दूसरों पर ठीक मालूम नहीं पड़ता। जैसे धन का अहंकार, पद का अहंकार, यह ठीक नहीं है। प्रभु ने हमको श्रेष्ठ चुना है, सारी खुशियां हमको दी हैं। इसका अर्थ यह है कि यह खुशियां हम सब में बांटें, सब मिलजुल कर आनंदित हों, असहाय का सहयोग करें, किसी के मन पर चोट लगे ऐसा बर्ताव हम नहीं करें। अपने बड़े छोटे समान रूप से इनका सम्मान करें। पद आपका, धन आपका, अहंकार का प्रभाव दूसरों पर क्यों हो, यह विचार का विषय है। यह विचार प्रत्येक मनुष्य ने करना चाहिए। वह किस प्रकार के अहंकार को अपने अंदर पोषित कर रहा है? अहंकार व्यक्ति के लिए हमेशा निराधार साबित होता है। इस विषय को अपने मन में शुद्ध विचारों का संकलन कर मन में आए अहंकार को दूर करना चाहिए। मानव समाज में सभी को प्रेम करें, आपके स्वभाव से सभी प्रसन्न रहें। आप जहां भी रहें, आपके वातावरण से माहौल प्रसन्न चित रहें। ऐसे शब्दों का उपयोग करें जो किसी को आहत ना करता हो, किसी को परेशानी ना खड़ी करता हो। आपका शब्द कहीं तीर का कार्य ना कर रहा हो, किसी के मन मस्तिष्क पर वह अप्रिय भाव से भेदन न कर रहा हो, तभी ईश्वर भी निरंतर प्रसन्न रहेगा एवं आपकी पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, धन वैभव सदा बना रहेगा। वरना रामायण में रावण बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसका सर्वनाश स्वयं भगवान राम ने किया। अतः अहंकार किसी भी रूप में मनुष्य के लिए सार्थक नहीं है। ऊंचे विचार, समदर्शिता ही मनुष्य को महान बनाती है। प्रत्येक विचारक अपने ऊंचे विचारों में कहीं न कहीं इस भाव को हमेशा प्रेषित करने की कोशिश करता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व हमेशा ऊंचा रहे, हमेशा दूसरों के प्रति समर्पण का भाव जागृत रहे। अहंकार किसी भी रूप में मनुष्य के लिए ठीक नहीं है। अहंकार व्यक्ति के व्यक्तित्व को बाधा तो पहुंचाता ही है, साथ ही वह निर्दोष व्यक्ति जिसका कोई दोष नहीं है, जिसे कभी आपने देखा भी नहीं है, लेकिन निर्थक मिथ्या अहंकार रूपी आपने जो अपने अंदर समाविष्ट कर रखी है, उसका प्रकोप आप दूसरों पर दर्शाते हैं। आपके आवभाव, चलने, उठने, बैठने और आपकी शब्द शैली से अहंकारित भाव प्रदर्शित होते हैं। मानव समदर्शिता एक दूसरे के प्रति समर्पित होनी चाहिए। अहंकार किसी भी रूप में आपके लिए उपयुक्त नहीं है। अहंकार पालना उसी प्रकार है जैसे गेहूं में घुन लगी होती है, ऐसे आपके शुद्ध विचार धीरे धीरे धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे और आप घृणा का पात्र बनेंगे। अतः आपके उच्च विचार ही आपके अहंकार को दूर कर सकते हैं। अहंकार किसी भी दृष्टि में ठीक नहीं है। यह हमारे ऊपर उसी प्रकार है जैसे एक कलंक होता है। अतः जीवन निरंतर अहंकार से दूर रहे, हमारे मन में किसी प्रकार का दुराभाव, दुराचार, किसी के प्रति घृणा, छोटा बड़ा अर्थात उसके प्रति विपरीत भाव जागृत ना हो, इस बात का हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए।
1: ये था आज का चिंतन, आलेख और स्वर था रमाकांत पांडे का। हम बोल रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। गायक स्वर है शोभा जोशी का।

जनकपुर में सीता स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए मुनि विश्वामित्र श्री राम, लक्ष्मण तथा अन्य शिष्य ऋषियों के साथ राजा जनक की नगरी पहुंचे। सबने स्नान, पूजा, भोजन आदि के बाद विश्राम किया। एक पहर दिन शेष था जब लक्ष्मण जी के मन में नगर देख आने की लालसा जगी, किंतु गुरु विश्वामित्र तथा बड़े भाई राम के सामने अपनी इच्छा प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। अंतर्यामी श्री राम ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। गुरुदेव से लक्ष्मण के संकोच की बात कहकर उन्होंने उन्हें नगर दिखा लाने की आज्ञा मांगी और दोनों भाई नगर देखने चले। श्याम और गौर वर्ण वाले इन दो ऋषि कुमारों का आकर्षक रूप देख नगर के बालक झुंड बनाकर इनके पीछे हो लिए। इस मनोहारी जोड़ी ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं, कमर में लिपटे दुपट्टों में तरकश बंधे हैं और हाथों में धनुष वाण सुशोभित हैं। सिंह के समान पुष्ट ग्रीवा, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर राजमुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, जो भी ये रूप देखता है ठगा सा खड़ा रह जाता है।

0: ये था श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। गायक स्वर था शोभा जोशी का। हम बोल रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से। प्रस्तुत है आज की कृषि चर्चा, विषय है पपीते की खेती।
1: किसान भाई बहनों होनी राम राम। भाई बहनों होनी

0: किसान भाई अपना खेत में अनाज का अलावा कुछ हिस्सा में फल या सब्जी की खेती भी करी सकज। एकालेन हमारा किसान भाई नख कुछ कृषि कार्य भी करनु पड़ज। न साथ ज हमारा किसान भाई जी फल या सब्जी बोई रहा होए तो ओकी संपूर्ण जानकारी भी होनु जरूरी छे। भाई बहनों होनी आज की कृषि चर्चा में हम बात करांगा पपीता की खेती का बारे में। वाचक स्वर छे प्रणीता जैन को। भाई बहनों होनी पपीता फसल का हम तीनी मौसम में ले सकांज। पपीता फसल लगाने से पहले भूमि की गहरी जुताई करनु चाहिए। एका साथ ज पौधा लगाने का पहले मिट्टी का सिंचाई करी कर नरम भी करी लियो तो अच्छो छे। पपीता का पौधा घर पर भी तैयार करी सकांच, न नर्सरी में भी तैयार पौधा नख लाई कर हम लगाई सकांच। पपीता में पौधा से पौधा की दूरी 6 से 7 फीट होनु चाहिए। भाई बहनों ने उन्नत किस्म का पपीता न ताइवान ग्रीन बेरी भी छे। पपीता में सिंचाई प्रतिदिन लगज। पपीता का पेड़ में 5 महीना में फूल आनु न फल बननु चालू हुई जाए। पपीता में खाद न उर्वरक की बात करा तो फास्फेट 1 एकड़ में 4 बोरी डालनु चाहिए। बरसात का समय में पपीता फसल का पहली बरसात का बाद खाद डालनु चाहिए, न ठंड का मौसम में पानी कम देनु चाहिए। फफूंदी की रोकथाम का लेन M45 दवा का ड्रिप में डालना से फफूंदी की रोकथाम हुई सकज। पपीता फसल में वायरस भी लगज तो एक ही रोकथाम का लेन वायरोवास दवा को छिड़काव 4 से 5 दिन का अंतराल से करनु चाहिए। या फिर जैव नियंत्रण की बात करा तो छाछ को भी उपयोग करी सकांच। इना फंगस रोग की पहचान का लेन हम देखी सकांच की पेड़ का तना मसी दूर निकलने लगज, न 4 से 5 दिन में पेड़ मुरझाई जाए। ये रोग जल्दी पौधा नख नष्ट करी देज। न वायरस लगने पर पौधा को ऊपरी भाग सिकुड़ने लगज तो तुरंत एक ही रोकथाम करी लेनु चाहिए। फल मक्की की रोकथाम का लेन पौधा न का ऊपर एक मचान बनायो जाए जेका पर पक्षी आयकर न बठस न मक्खी ख खाई जाए। ज्यादा गर्मी में फल नख धूप से बचाना का लेन पेड़ का फल नख कपड़ा या बारदान से ढाक्यो भी जाय सकज। पण यदि पेड़ में पत्ती न अच्छी घनी हो तो फल नख ढाकने की आवश्यकता नहीं पड़ती ही। एका लेन ज कवांच के पपीता का पौधा ऐसा लगानो चाहिए कि पत्ता न से फल आराम से ढकी जाए। न ई पत्ता न की छाव पपीता ख ठंडी गर्मी न बरसात तीनी मौसम में सुरक्षित रखी सकज। अरु एक विशेष बात ई भी छे कि यदि हम पपीता का पौधा ढलान वाली जगह में लगावा तो ज्यादा अच्छो छे। एका से पौधा सीधा ऊपर की ओर बढ़ज, ना कि गोल घुमावदार बढ़ज। पपीता का एक बाग में पूरा वर्ष हम फल प्राप्त करी सकांच। अब बात करा फल तोड़ता समय सावधानी की तो फल नख तोड़ता समय हाथ में दस्ताना जरूर से पहन लेनु चाहिए। न फल ख तोड़ने का बाद जमीन पर रखने का बजाय बोरी पर या फिर टोकरी में रखनु चाहिए। साथ ज इन फल नख पेपर में लपेटी दियो ताकि ये फल सुरक्षित रह सक। एक पपीता का बाग में पौधा का खाद डालता समय भी खाद का पौधा से 4 से 5 इंच दूर डालनु चाहिए। नियमित सिंचाई करनु चाहिए। न फल में जब लाल धारी न दिखने लगा तब ज ओख तोड़नु चाहिए। बस ई सावधानी का साथ हमारा किसान भाई पपीता फसल की लाभकारी खेती करी सकज। तो आज की कृषि चर्चा में बस इतनोज। राम राम।
1: ये थी आज की कृषि चर्चा। विषय था पपीते की खेती। वाचक स्वर था प्रणीता जैन का।
2: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
1: सच है, इसे और सुहाना बना रही है निमाड़ की सुरीली धड़कन।
0: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
2: आकाशवाणी खंडवा से ये वक्त है कार्यक्रम विवरण का।

आइए आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। आपसे कुछ देर बाद यानी 7 बजे विशेष कार्यक्रम

के अंतर्गत सुनिए वार्ता जैव विविधता दिवस और स्वस्थ जीवन का संबंध। सुबह 7:20 पर आनंद लीजिएगा सुनहरे पल कार्यक्रम का। निमाड़ी लोकगीतों का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 8:15 पर और शाम 5:30 पर। विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे सुबह 9 से 10 तक, दिन में 11 से, दोपहर 2:30 से और रात्रि 8 से। जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे सुबह 10 और प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुन सकते हैं सुबह 10:05 पर। बहने सुनी अपना पसंदीदा कार्यक्रम नारी जगत सुबह 10:35 पर। इसके अंतर्गत सुनेगा भेंट वार्ता पर्यावरण और हमारा दायित्व, जानकारी देंगी बबीता जैन, इनसे बातचीत की है मीनू जैन ने। शाम 6 युवाणी में आज का आकर्षण शीर्षक संगीत। शाम 7:21 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम में होगी जन उपयोगी भेंट वार्ता, कृषि समाचार, खंडवा उपज मंडी के भाव, मौसम की जानकारी और निमाड़ी लोकगीत।

ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

इस सुहानी सुबह में आप सुन रहे हैं निमार की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

0: आकाशवाणी खंडवा से प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें।
1: आज की ताजा खबर।

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गंगा दशहरे पर आयोजित होंगे कार्यक्रम। जल स्रोतों के संरक्षण में समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदू संस्कृति के अनुसार गंगा दशहरे का पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। गंगा दशहरा के पर्व पर 25 मई को प्रदेश के सभी जिलों के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। श्री दादाजी धुनीवाले के नए मंदिर निर्माण के लिए गठित निर्माण समिति की बैठक गुरुवार को सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, खंडवा विधायक और पंधाना विधायक की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में दादाजी के नए मंदिर निर्माण के संबंध में मंदिर निर्माण करने के अनुभवी ठेकेदारों से वर्चुअली चर्चा की गई। बैठक में सदस्यों के साथ

0: कलेक्टर श्री ऋषभ गुप्ता, अपर कलेक्टर और सहायक कलेक्टर मौजूद थे। पच्चीस मई को जिला तैराकी संघ की ओर से 54वीं जिला तैराकी चयन प्रतियोगिता का आयोजन देव स्विमिंग इंस्टीट्यूट में किया जाएगा। चयन स्पर्धा में विभिन्न आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की चयन प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत का संदेश देने के लिए जन प्रतिनिधियों ने पेट्रोल डीजल वाहनों के बजाय ई वाहनों को अपनाया। गुरुवार को शहर के कार्यक्रमों में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और खंडवा विधायक ई रिक्शे में बैठकर पहुंचे। स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। यह आयोजन प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में हुआ। जिला विधिक सहायता अधिकारी ने पास्को अधिनियम पर विस्तार से बताते हुए कहा कि यह बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों की रोकथाम और सुरक्षा के लिए बनाया गया है। अब समाचार खेल जगत से। गुरुवार यानी कल आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए चेन्नई की 89 रन से हराया। गुजरात ने 18 अंकों के साथ लीग स्टेज प्राप्त किया और टीम टॉप 2 में रही। अब मौसम के हाल। मई के तीसरे सप्ताह में मौसम में लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति बन रही है। दिन का अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 25.0 सेल्सियस रहा। समाचार संकलन श्रुति श्रीवास का। ये थी आज की ताजा खबरें।
1: आज की ताजा खबर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: सुबह बनारस, शाम अवध और शबे मालवा की तो क्या बात है।
1: लेकिन जब साथ में हो निमाड़ की सुरीली धड़कन, तो यहाँ की सुबह भी किसी से कम नहीं है ना।
0: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।

सुबह के 7 बजे हैं। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए वार्ता जैव विविधता दिवस और स्वस्थ जीवन का संबंध।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर हम चर्चा करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, जैव विविधता और स्वस्थ जीवन का संबंध। श्रोताओं, हर वर्ष 22 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को प्रकृति, पर्यावरण और जीव जंतुओं की विविधता के महत्व के प्रति जागरूक करना है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ और सूक्ष्म जीव। ये सब मिलकर हमारे जीवन और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि जैव विविधता का संबंध सिर्फ जंगलों या वन्य जीवों से है, लेकिन वास्तव में इसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य और जीवन से भी है। हम जो भोजन खाते हैं, जो हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, यह सब प्रकृति की देन है। फल, सब्जियां, अनाज, औषधीय पौधे और पोषक तत्व हमें प्रकृति और जैव विविधता से ही प्राप्त होते हैं। यदि जैव विविधता नष्ट होती है तो इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। आज बढ़ता हुआ प्रदूषण, जंगलों की कटाई, रासायनिक खेती और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन, नई बीमारियां, पोषण की कमी और मानसिक तनाव जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। अगर बात करें हम अपने भारत देश की, तो हमारे देश में मोटापा विश्व में दूसरे नंबर पर आता है और कुपोषण में हमारा देश पहले नंबर पर आता है। तो सोचिए कितनी अपनी जीवन शैली को हमें सुधारने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, अगर आप देखेंगे, अपने आसपास निगाह दौड़ाएंगे, तो आप पाएंगे कि आपके आसपास रहने वाले, खेलने वाले ये छोटे छोटे बच्चे या तो कुपोषण की श्रेणी में आते हैं या अति पोषण की श्रेणी में आते हैं, यानी या तो इनका वजन जितना होना चाहिए उससे कम होता है या फिर उससे ज्यादा होता है। श्रोताओं, स्वस्थ जीवन के लिए केवल अच्छा भोजन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि शुद्ध वातावरण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, वातावरण को शुद्ध रखते हैं और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। आज आवश्यक है कि हम प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जैसे अधिक से अधिक पौधरोपण, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, जल संरक्षण करना और जैविक खेती को बढ़ावा देना। इसके साथ ही हमें अपने बच्चों को भी प्रकृति से जोड़ना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां पर्यावरण और जैव विविधता का महत्व समझ सकें। देखिए ना, आजकल बच्चे मोबाइल की स्क्रीन पर इतना समय व्यतीत करते हैं कि वह प्रकृति की गोद में जाते ही नहीं हैं। बाहर जाकर खेलना उन्हें पसंद ही नहीं है। तो सोचिए हमारा सामाजिक जीवन किस तरह से अस्त व्यस्त हो रहा है। छोटे बच्चे आपस में एक दूसरे से बातचीत करने से ज़्यादा ChatGPT से बात कर अपना मन हल्का करने लग गए हैं। दोस्तों, प्रकृति और मानव जीवन एक दूसरे के पूरक हैं। यदि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी हमारा स्वास्थ्य और भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करेंगे और एक स्वस्थ और हरित भविष्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे। याद रखिए, प्रकृति है तो जीवन है और जैव विविधता है तो स्वास्थ्य है। बात करें इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम पर, तो इस वर्ष की थीम है स्थानीय स्तर पर कार्य।

वैश्विक प्रभाव के लिए। श्रोताओं, हम अपने स्तर पर यह प्रयास कर सकते हैं कि जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है उसको कम करने के लिए हम साइकिल का प्रयोग करें, पास की दूरी जाने के लिए अपने कदमों का उपयोग करें, जिससे हम स्वस्थ भी रहेंगे और हम हमारे प्रदूषण को भी कम कर पाएंगे। जंगलों की कटाई को रोकने का प्रयास करें, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग ना करें, रासायनिक खेती और जलवायु परिवर्तन जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। इस वर्ष की थीम का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि बदलाव की शुरुआत हमारे अपने घर, गांव, शहर और समुदाय से होनी चाहिए। जब हम अपने आसपास एक पौधा लगाते हैं, पानी बचाते हैं, प्लास्टिक का उपयोग कम करते हैं, पक्षियों के लिए दाना पानी रखते हैं या स्थानीय पेड़ पौधों को बचाते हैं, तब हम केवल अपने क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे विश्व की

हम अपने आसपास एक पौधा लगाते हैं, पानी बचाते हैं, प्लास्टिक का उपयोग कम करते हैं, पक्षियों के लिए दाना पानी रखते हैं या स्थानीय पेड़ पौधों को बचाते हैं, तब हम केवल अपने क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे विश्व की जैव विविधता की रक्षा में योगदान देते हैं। यही स्थानीय कार्य वैश्विक प्रभाव का वास्तविक अर्थ है। आज दुनिया यह समझ चुकी है कि केवल सरकारों के प्रयास पर्याप्त नहीं है, आम नागरिक, युवाओं, किसानों, विद्यार्थियों और महिलाओं की भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। हमारे भारत में भी जैव विविधता की अद्भुत संपदा मौजूद है। हिमालय से लेकर पश्चिम घाट तक, जंगलों से लेकर नदियों और खेतों तक, प्रकृति ने हमें अनमोल धरोहर दी है। अब इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। आज के समय में जैव विविधता का संबंध केवल पर्यावरण से नहीं बल्कि स्वास्थ्य और भविष्य से भी है। प्राकृतिक भोजन, औषधीय पौधे, स्वस्थ जीवन, स्वच्छ हवा और शुद्ध पानी, ये सभी हमारी अच्छी सेहत के आधार हैं। यदि जैव विविधता नष्ट होगी तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी संकट में पड़ सकता है। इसलिए आज आवश्यक है कि हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलें। सतत विकास यानी ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों का भी ध्यान रखे। याद रखिए, जब स्थानीय प्रयास मजबूत होते हैं तो वैश्विक परिवर्तन संभव होता है। इसी संदेश के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आपने सुनी विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता जैव विविधता दिवस और स्वस्थ जीवन का संबंध। हम बोल रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से। सुबह के 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आज होगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्री समिट इवेंट का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति से वार्ता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार। और प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में, लू के थपेड़ों से लोग परेशान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्री समिट इवेंट का शुभारंभ होगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ऑडिटोरियम भोपाल में होने वाले इस प्री समिट इवेंट में केंद्रीय पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह और वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, मध्य प्रदेश शासन, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस तथा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में जैव विविधता संरक्षण, वन्यजीव संवर्धन

0: विशेष रूप से बिग कैट संरक्षण के विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे, ये उनकी पहली भारत यात्रा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे, जिसमें बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग भी शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति की यह यात्रा पिछले वर्ष जून में प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक साइप्रस यात्रा के एक वर्ष के भीतर हो रही है। यह दो दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की पहली यात्रा थी। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इंदौर में आयोजित दो दिवसीय ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक में संरचित संवाद, अनुभव साझाकरण और सहयोगात्मक आदान प्रदान किया गया। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि, युवा उद्यमी और नीति विशेषज्ञ शामिल हुए। दूसरे दिन का सत्र क्रिस्टल IT पार्क में आयोजित हुआ। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। विदेश मंत्री ने स्वीडन और भारत की यात्रा पर रवाना होने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक CRPF जवान शहीद हुए थे। इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा हमजा बुरहान कल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में अज्ञात बंदूकधारियों की गोलीबारी में मारा गया। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में संलिप्तता के कारण भारत ने अप्रैल 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। यह आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। बैठक में रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना, रवनीत सिंह बिट्टू के साथ साथ रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी और देशभर के फील्ड अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं ने जनजातीय समुदाय के लिए आवास, आरोग्य और जन कल्याण के प्रभावी कार्य किए हैं। उन्होंने कार्यक्रम में जनजातीय लोक कलाकारों द्वारा पारंपरिक लोक नृत्य और गीतों की आकर्षक प्रस्तुतियों को क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया है। राज्यपाल श्री पटेल गुरुवार को पाडुना के ग्राम आमला में आयोजित जनजातीय समुदाय से संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में तेजी से निर्मित हो रही सड़कें नागरिकों को विकास का पूरा लाभ दिलवाने में सहयोगी हैं। इनसे दो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों

भोपाल और इंदौर उज्जैन की अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। भविष्य में जबलपुर और ग्वालियर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र भी अधोसंरचना विकास के प्रयासों से लाभान्वित होंगे। इंदौर उज्जैन सिक्स लेन, उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे फोर लेन, इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे फोर लेन बन जाने से ये संपूर्ण क्षेत्र विकास के नए आयाम को स्पर्श करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कल मंत्रालय में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश में नागरिकों को संस्थागत लोक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपरकिंग्स को 89 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री से अधिक बना हुआ है। खजुराहो में 47.4 डिग्री, नौगांव में 46 डिग्री और मंडला में 45.6 डिग्री तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। वन विहार नेशनल पार्क में शेर, बाघ और तेंदुओं के लिए कूलर, पंखे और ग्रीन नेट भी लगाए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में कल आयोजित किसानों की समस्याओं संबंधी बैठक में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि उद्वहन सिंचाई योजना से अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे। आगर मालवा में वैज्ञानिक कृषि तकनीकों की जानकारी देने के उद्देश्य से संचालित 4 कृषि रथ विभिन्न ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहे हैं। झाबुआ कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने जिला रोगी कल्याण समिति की बैठक में अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था और सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। पश्चिम मध्य रेलवे ने पुणे और बांद्रा टर्मिनल जाने स्पेशल ट्रेन के रूप में संचालित हो रही दो महत्वपूर्ण ट्रेनों को आगामी 24 मई से नियमित ट्रेन का दर्जा देने नोटिफिकेशन जारी किया है। निंडौरी में सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कृषक पुरस्कार के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। गुना के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में करियर काउंसलिंग और मोटिवेशनल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाजापुर कलेक्टर रिजु वाफना की अध्यक्षता में कल जिला उपार्जन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है।

0: सुहानी सुबह हो चुकी है और इस सुबह का आनंद लीजिए निमाड़ की सुरीली धड़कन के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल।

सुनहरे पल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी नीलम त्रिपाठी। तो स्वीकारे हमारा नमस्कार दोस्तों। आज की तेज

रफ्तार। जिंदगी में हर व्यक्ति सफलता तो चाहता है, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान देना अक्सर भूल जाता है। जबकि सच तो यह है कि यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं तो जीवन की कोई भी उपलब्धि हमें पूरी खुशी नहीं दे सकती।

देखे ना, हर कोई व्यक्ति, हर एक इंसान आजकल इतनी भाग दौड़ की जिंदगी में व्यस्त है कि किसी से भी बस पूछ दो, हर व्यक्ति बस यही कहेगा, भाई फुर्सत नहीं कहाँ है, फुर्सत कहाँ है। फुर्सत हमारे अंदर है, लेकिन हमारा जो समय का प्रबंधन है ना, वो कुछ गड़बड़ है, इसीलिए फुर्सत नहीं मिलती है। आजकल छोटी उम्र से लेकर बड़े बुजुर्गों तक कई लोग थकान, कमजोरी, मोटापा, तनाव, नींद की कमी और ऊर्जा की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है अनियमित दिनचर्या और असंतुलित भोजन, और जी हाँ, कसरत ना करना।

तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा।

0: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
1: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
0: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
1: क्यों?
0: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
1: वो कैसे?
0: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
1: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
0: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
1: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
0: आप कब आ रहे हैं?
1: आकाशवाणी खंडवा पर।
2: तो साथियों, हम बात कर रहे थे स्वस्थ जीवन शैली के बारे में। हम अक्सर पेट भरने को ही अच्छा भोजन मान लेते हैं, लेकिन शरीर को सिर्फ खाना नहीं, सही पोषण चाहिए। हमारे शरीर को प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स और पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। जब शरीर को संतुलित पोषण नहीं मिलता, तब धीरे धीरे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शुरू होने लग जाती हैं। फिलहाल सुनिए ये गीत। तो भाई, अपने जीवन के हर एक दिन को बहुत ही अच्छे से बिताइए और हर एक चीज को नियंत्रित कीजिए।

दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए बहुत बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी आदतें भी बड़ा अंतर ला सकती हैं। जैसे सुबह समय पर उठना, वो तो आप उठ ही जाते हैं, क्योंकि अगर आप रेडियो सुन रहे हैं इस वक्त, तो आप इसमें तो अपने आप को पहला नंबर दे सकते हैं। हल्का व्यायाम या योग करना, अब बताइए रेडियो से बेहतर माध्यम क्या होगा। गाने भी सुनते जाइए, मनोरंजन भी मिल रहा है आपको, जानकारी भी मिल रही है, और साथ साथ आप व्यायाम भी कर सकते हैं। दिन भर पर्याप्त पानी पीना, जी हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए भी हमसे अच्छा बेहतर माध्यम आपके पास क्या हो सकता है। जैसे ही हमारे एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम में हम जाते हैं, उस समय आप अपने पानी को नियंत्रित कर लीजिए। फास्ट फूड कम लेना चाहिए। भाई, ये जिम्मेदारी तो सिर्फ और सिर्फ आपकी है, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए ये सब चीज़ें नियंत्रित करना, आप क्या खा रहे हैं ये तो आप ही जानते हैं, हम तो नहीं बता सकते। और सही समय पर भोजन करना, तो दिन में आप जो है एक 9:27 का फॉर्मूला अपना लीजिए। 9 बजे के पहले अपना नाश्ता पूरा कर लीजिए। 2 बजे के पहले जो आपको एक अच्छा भोजन करना चाहिए, जिसमें सभी चीज़ें संतुलित मात्रा में हो, वो कर लीजिए। और शाम को 7 बजे से पहले आपका रात्रि का भोजन संपन्न कर लीजिए। हो गई आपकी दिनचर्या नियंत्रित।

साथियों, इसके साथ साथ ही हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका भी ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है। आज तनाव लगभग हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन चुका है, ऐसे में थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, परिवार के साथ समय बिताइए, संगीत सुनिए, ध्यान करिए और सकारात्मक सोच रखिए। ये सभी चीजें बहुत बहुत बहुत ही ज्यादा आवश्यक हैं। और इस गीत के माध्यम से एक बार फिर कोशिश करते हैं आपको संगीत की लड़ियों में पिरोने के लिए।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओं, एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, हमारी शारीरिक सक्रियता। आज तकनीक ने हमारा काम आसान तो बना दिया है, लेकिन हमारी गतिविधियां कम कर दी हैं। घंटों मोबाइल और स्क्रीन पर समय बिताने से हमारा शरीर सुस्त होने लगा है। इसलिए रोज कम से कम 30 मिनट टहलना या कोई शारीरिक गतिविधि करना बेहद आवश्यक है। विशेषज्ञों की माने तो हम अपनी दिनचर्या, संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच को अगर अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। साथियों, स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का नाम नहीं है, स्वास्थ्य का संपूर्ण अर्थ है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना। हमें अपने बच्चों को भी शुरुआत से ही अच्छी आदतें सिखानी चाहिए, जैसे उन्हें घर का पौष्टिक भोजन यानी अच्छा जो खाना हम शुरू से खाते आ रहे हैं वो खाना उन्हें खाने की आदत डालनी चाहिए, नियमित खेलकूद के लिए भेजना चाहिए और उनके स्क्रीन टाइम को कम करना

इससे उनकी सेहत बेहतर भी होगी और हमारा भविष्य हमारे आने वाले बच्चे ही तो हैं। याद रखिए, अच्छा स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। तो आइए आज हम सभी एक छोटा सा संकल्प लें, सही पोषण अपनाएंगे, नियमित दिनचर्या रखेंगे और स्वस्थ जीवन शैली की ओर रोज एक कदम बढ़ाएंगे।

0: अभी सुनहरे पल कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। हम बोल रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से। सुबह के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं, उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और

0: मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
2: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
5: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
4: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित

0: मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
1: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के

0: सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नी यारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $5,00,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्ता के शब्द हैं 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार

0: सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है, पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है, सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है, हीट स्ट्रोक का कहर, दो मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाए तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है, दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है।

0: खाऊं जब तक। निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा ने सुनी लेती है, जब तक तमख चैनन नहीं मिलतो है। तो आप भी सुनी लो निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: आकाशवाणी खंडवा से लीजिए सुनिए निमाड़ी लोकगीत।

साधना उपाध्याय के स्वर में अभी आपने सुना ये लोकगीत। हेमलता उपाध्याय के स्वर में लीजिए सुनिए अब ये निमाड़ी भजन।

0: इसी के साथ निमाड़ी लोकगीत अब यहीं समाप्त होते हैं। हम बोल रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी मीत ये गीत।
1: आपके मीत ये गीत।
0: आपकी मीत गीत कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो सखी नीलम त्रिपाठी।

0: ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: कार्यक्रम के अगले गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये सभी साथी, मलियान सदना मेरठ से, अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान और मास्टर जिव्यम जैन, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल राजेश, पद्मा टॉकीज नेपा नगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विनी, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, दतरंगी से के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, वनीता और रुद्र वर्मा, शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता, गौरव, ईशान और कार्तिक सैनी, लक्कड़ बाजार खंडवा से ठाकुर भवानी सिंह बैस, रिया रोहन और अंगद ठाकुर, बागवान मंजिल छोटी बलिया से नूर आयशा अहमद, इकबाल, अखलाक, आमना, राबिया, परी, आशु, जूही और सदफ बागवान, छतरी टोल तेघड़ा बाजार बेगूसराय से आबिदा अफसरी, इस्माइल आजाद, नन्हे राजा, फयाज, फिरोज आलम और भाई शाह आलम, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या, हिमलता और डिंपल देवांगन, ऊपरकोट मोहल्ला चकुंटी, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन और अजान के साथ अबान अब्बासी हैं, झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु, ताशु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद, गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान और राजकुमार बुडाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, रितु और मुकेश जगताप। तो आइए इन सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।
2: हे डोला रे डोला रे डोला रे डोला।
1: इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारी ये सभी श्रोता भी गोकुल चौक गंगा जल सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन और राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, अच्छे लाल, बुल्की वाली और फलना झा, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, मती नंदा, हनुमान और उत्तम जमदाड़े, ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, पंचशील नगर तालुका कर्जत से इकबाल अहमद और इनके साथी, नसवाल चौक मलकापुर से संजय पाटिल, सौभाग्यवती उषा पाटिल, प्रथमेश और शीरसागर, संजय कुमार चौहान, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। तो आइए इन सभी की फरमाइश को सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

कार्यक्रम के अगले गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये सभी साथी पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा ध्रुवी और फाल्गुनी जोशी, जामिया जमनिया, जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति, टाटानगर से जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य, नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से

अकरम हुसैन, प्रिंस बेगम इशरत और इनके साथी मजनूकार टीला से कमल बालूजा, मधु और सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही, नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज और तलत जहानाज, फरज जहानाज के साथ रिफत जहानाज हैं और इनके साथ इनका पूरा परिवार है। मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तड़े, बसंतरा भोजनी और निवृत्ति आड़ोकर, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय और अमित कुमार राय के साथ हैप्पी हैं।

जी हाँ, तो इस अंतिम गीत को सुनना चाहते थे हमारे ये सभी साथी, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल, हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी प्रिंस बोट, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा, बुरहानपुर से मोहम्मद मोहन मुदलियार, आरुष अर्शिया और राजेश कुमार, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमल अनेजा, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र शिपा, कपिल और ईशान के साथ पूजा परिहार हैं, मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और कुमकुम, मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, शुभम देवी, भावना, मन मानस और कनिका पटेल, नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और सीता और गीता, मीन बाजार कुंडल वाली महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद और प्रदीप, बठिंडा पंजाब से करणवीर हाउस, भुचो कैंटिया, परेम सिंह जोड़ा, मंजीत करणवीर, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सीमू, एक मदमन और अभिजोत, चंद्रनगर से सुरेश डोम और आशा डोमन, कुम्हार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा प्रतीक्षा प्रथमेश और पांडुरंग, आदर्श नगर मलोड पंजाब से राजा शर्मा, मीना योगेश मैंडी, सौरभ साइना और निवास, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति और कार्तिक, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी और आर्यन कृष्णा पीहू।

0: एनआर कली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल और दीपिका मल्होत्रा के साथ गव्या और सुच्चा सिंह पाठक, पदमपुर जिला श्री गंगानगर से मेहर अरोड़ा और ममता अरोड़ा के साथ कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा भी हैं। इसी के साथ दीजिए कार्यक्रम आपके मीत की समाप्त करने की आगे आपकी रेडियो सखी नीलम त्रिपाठी को नमस्कार।
1: आपके मीत ये गीत
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी मीति गीत। हम बोल रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से। सुबह के 9 बजे हैं, थोड़ी ही देर में विविध भारती सेवा के कार्यक्रम आप सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

इस अंतराल के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, आज है अंतर्राष्ट्रीय जीव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हर साल 22 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय जीव विविधता दिवस को मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और पारिस्थितिकी तंत्र की अनमोल विविधता के संरक्षण के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है। अंतर्राष्ट्रीय जीव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है, लेकिन इसे शुरू में 29 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन इसे बाद में 22 मई की दिनांक तय कर दी गई। इसका उद्देश्य हमें पेड़ पौधों, जानवरों और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रखा गया है। जागरूकता क्यों फैलाने की जरूरत है? आज प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक दोहन के कारण कई प्रजातियां खतरे में हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और स्थानीय स्तर पर कई छोटे छोटे प्रयास जरूर करने चाहिए, जैसे कि मानव जीवन के लिए जो जरूरी है। क्या जरूरी है? हम भोजन, पानी, हवा, दवाइयाँ, औषधियाँ, ऊर्जा, इसके लिए हम प्रकृति पर ही निर्भर है ना। पारिस्थितिकी संतुलन भी तो कितना जरूरी है। हर जीव का पारिस्थितिकी तंत्र में अपना एक स्थान जो है, किसी एक प्रजाति के गायब होने से पूरा तंत्र प्रभावित हो सकता है। प्रकृति की रक्षा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत जरूरी है और जैव विविधता हमारे ग्रह का जीवनदायिनी ताना बाना है। हमारी हर छोटी कोशिश इससे जुड़ी है। हमें इसे बचाना होगा ताकि मानव और प्रकृति दोनों सुरक्षित रहें। हमें जैव विविधता को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन बहुत जरूरी हैं। पेड़ लगाना और उन्हें बचाना। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ काटने से बचें, किसी को काटने भी ना दें। पेड़ हवा साफ रखते हैं और जानवरों का घर भी तो होते हैं, जिसे हम पेड़ों को काटकर उजाड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक और कचरे से बचाओ। प्लास्टिक कम से कम उपयोग करें। कभी भी बाजार जाएं तो अपना घर से बना हुआ कपड़े का थैला जरूर लेकर जाएं। कचरा हमेशा सही जगह यानी डस्टबिन में फेंकें। कचरा और प्रदूषण जानवरों और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। पानी और बिजली को बचाएं। पानी भी और बिजली भी दोनों ही वेस्ट ना होने दें। नदियों और तालाबों को साफ रखें। जल प्रदूषण से पानी में रहने वाले जीव मर सकते हैं। जंगली जानवरों और पौधों का सम्मान भी तो कितना जरूरी है। जानवरों को परेशान बिल्कुल ना करें। जंगली पौधों को भी ना तोड़ें, क्योंकि उनका भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक हिस्सा होता है। अगर ये एक हिस्सा भी गायब हो जाता है ना, तो सब कुछ प्रभावित होता है। अपने गांव, मोहल्ले या स्कूल में छोटे छोटे प्रोजेक्ट करें, जैसे पक्षियों के लिए पानी रखना, कचरा साफ करना, पौधे लगाना। छोटे कदम भी बड़ी मदद करते हैं। जंगलों की कटाई और आग लगाना ये तो नहीं करना चाहिए। नदियों, तालाबों और खेतों में

कचरा फेंकना, इससे भी बचना चाहिए। जानवरों और पेड़ पौधों को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहिए। अत्यधिक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग भी फसलों के लिए नहीं करना चाहिए। हमारी प्रकृति में हर पौधा, जानवर और इंसान जुड़ा हुआ है, और अगर हम पेड़, पानी और जानवरों की रक्षा करेंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और भविष्य में हम सब स्वस्थ जीवन जी सकेंगे।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास।
3: श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक छोटी सी अंतराल का।

0: इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चुचुलोक में एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं मेरी ब्रदर की दुल्हन फिल्म से राहत फतेह अली खान का गाया ये गीत। इरशाद कामिल के बोल हैं, धुन बनाई है सोहेल खान ने।
1: संगीत है सोहेल सेन का,
0: माफ कीजिएगा, धुन बनाई है सोहेल सेन ने।

मेरी ब्रदर की दुल्हन इस फिल्म से। ये गीत अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल थे और धुन बनाई थी सोहेल सेन ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत वीर जारा फिल्म से। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, जावेद अख्तर के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत।

0: हमारे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे।
1: आहा।

आइए अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज में। ये अगला गीत अमिताभ भट्टाचार्य की बोल है और धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने। सितारे जमीन पर, ये है फिल्म का नाम।

सितारे जमीन पर इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और साथी की आवाज में। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को, नमस्कार।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

संगीतकार राम लक्ष्मण का असली नाम है विजय पाटिल। संगीत का शौक बचपन से ही था और वो पहले कॉलेज के ज़माने में नागपुर में और फिर मुंबई में स्टेज प्रोग्राम्स दिया करते थे और उसमें बजाया करते थे। विजय पाटिल अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे। फिर उन्होंने मुंबई में अपना एक दल बनाया और अपनी बनाई तर्जों को ही स्टेज पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक कार्यक्रम में दर्शक थे दादा कोण के। वो इनसे इतना प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म पांडु हवलदार का संगीत उन्हें सौंप डाला। उन्होंने ही विजय पाटिल का नाम भी बदला। वास्तव में राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति थे, पर उनमें से एक साथ ही राम की मृत्यु हो गई, लेकिन नाम दोनों का ही चलता रहा, यानी राम लक्ष्मण के नाम से ही संगीत चलता रहा।

संगीतकार राम लक्ष्मण का मानना था कि लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे हर आम आदमी गुनगुना पाए। अपने संगीत में इस तत्व का उन्होंने हमेशा ही ख्याल रखा। राम लक्ष्मण की पहली सुपरहिट फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत तराना। ये आई थी 1979 में। इस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत ही मशहूर हुए और लोगों ने इस संगीत को बहुत बहुत पसंद किया।

संगीतकार राम लक्ष्मण ने अपने सुरीले रस भरे गीतों से ऐसी ही संगीत वर्षा की। हम आपको बता दें कि गीतकार असद भोपाली के साथ राम लक्ष्मण ने ढेर सारी रचनाएं तैयार की, लेकिन उनमें से अधिकांश तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी। राजश्री और दादा कोंडके के अलावा प्राण लाल मेहता और दीपक बहरी ने भी अपनी फिल्मों के लिए राम लक्ष्मण के संगीत को अक्सर चुना, इसलिए राम लक्ष्मण को मौकों की कमी कभी भी नहीं रही। अगर बात करें 80s की तो बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में आई जिसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक उस समय बहुत बहुत सुना गया और सुनने वालों ने, दर्शकों ने बहुत बहुत सराहा। कुछ फिल्मों के नाम याद कर लें, जैसे उस्तादी उस्ताद से, इस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे, और आंगन में तुलसी एक फिल्म थी, उसके गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और राजश्री प्रोडक्शन की सुन सजना और सुन मेरी लैला के गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और सबसे ज़्यादा 80 के दशक में राम लक्ष्मण का जो गीत प्रचलित हुआ, सुना गया, सराहा गया और आज भी उसी चाव से सुना जाता है, वो है हमसे बढ़कर कौन फिल्म का। ये फिल्म आई थी 1981 में और ये गाना बहुत बहुत सुना गया और पसंद किया गया।

मीनल राव के साथ स्वयं गाकर मराठी हिस्का नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर राजश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया, इसने तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोक धुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों से सम्मिश्रण से सृजित दिल दीवाना बिन सजना के माने ना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया की अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार लोकप्रियता का स्वाद चखाया।

राम लक्ष्मण के संगीत में एक अपनापन, एक घरेलूपन सा होता था जिसे सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करते थे। हम आपके हैं कौन उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ। वैसे उनकी फिल्म सातवां आसमान भी एक उल्लेखनीय फिल्म है जिसके गाने बहुत सुने गए।

संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीत से सजी बहुत सारी फिल्में हैं। इस कम समय में उनकी सारी फिल्मों के गानों की हम एक एक लाइन भी नहीं सुनवा सकते हैं, पर फिर भी हमने कुछ कोशिश की।

0: कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर...

0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से। सुबह के 10 बजे हैं। थोड़ी देर में जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
3: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश प्रजापति, वाचन स्वर दीपा सिंह। सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में बसे छिंदवाड़ा

0: जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है। जिले में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी और लू का असर बढ़ गया है। लगातार तीसरे दिन अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया, जबकि रात का तापमान भी लगभग 28 डिग्री तक पहुंच गया है। जानकारी के अनुसार जिले में वर्ष 2005 में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था, जो अब तक का सबसे अधिक तापमान माना जाता है। भीषण गर्मी के बीच छिंदवाड़ा जिले के जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी है। वन विभाग के अनुसार पिछले एक सप्ताह में सेटेलाइट के माध्यम से 1200 से अधिक फायर अलर्ट मिले, जिनमें 705 वन क्षेत्रों और 515 वन क्षेत्र के बाहर आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। वन विभाग के उप वन संरक्षक अनादि बुधौलिया ने बताया कि आग से लगभग 338 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। 132 लोगों पर वन अपराध दर्ज किए गए हैं। विभाग ने बताया कि जंगलों में आग लगने के प्रमुख कारण महुआ संग्रहण के दौरान लगाई जाने वाली आग, नरवाई जलाना और लापरवाही से फेंकी गई जलती बीड़ी सिगरेट है। छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में गेहूं उपार्जन, खाद वितरण और पेयजल व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को ई टोकन और उपार्जन में किसी प्रकार की परेशानी न हो, खाद की उपलब्धता की जानकारी व्यापक रूप से किसानों तक पहुँचाई जाए। बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक 8,330 किसानों से 40,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा जा चुका है। प्रभारी मंत्री ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान पर जोर देते हुए कंट्रोल रूम को सक्रिय रखने और शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा और पांडुना जिले के पर्यटक आने वाले एक माह तक बहुत कम दामों में पर्यटन ग्रामों में बने होम स्टे में रहकर ग्रामीण पर्यटन का आनंद ले सकेंगे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अग्रिम कुमार ने बताया कि जिला पुरातत्व पर्यटन और संस्कृति परिषद ने मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के साथ मिलकर पर्यटकों के लिए ग्रीष्मकालीन ऑफर दिया है। 20 मई से 20 जून तक पर्यटक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। छिंदवाड़ा वन वृत्त में तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य तेजी से जारी है। अधिक तापमान के कारण इस बार पत्ते जल्दी तैयार हुए हैं, जिससे संग्रहण कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। उप वन संरक्षक अनादि बुधौलिया ने बताया कि अब तक कई क्षेत्रों में लक्ष्य का 50% से अधिक संग्रहण पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से स्पेन की एक टीम ने छिंदवाड़ा के पर्यटन गाँवों में डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग की। स्पेन से आई टीम ने तामिया, सावरवानी, धूसावानी और चिमटीपुर में 3 दिनों तक ग्रामीण और आदिवासी संस्कृति, पर्यटन गतिविधियों और पातालकोट की पारंपरिक आदिवासी विवाह रस्मों को कैमरे में कैद किया। ये शूटिंग रूरल टूरिज्म ऑफ द वर्ल्ड नामक अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन सीरीज के लिए की गई है, जिसका प्रसारण लगभग 80 यूरोपीय देशों में किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश की ग्रामीण और इको टूरिज्म को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। पिछले दिनों सांसद विवेक वंटी साहू और अन्य जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर कार्यालय परिसर से कृषि रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के सभी विकास खंडों में अगले 10 दिनों तक कृषि रथ गांव-गांव पहुंचकर किसानों को खरीफ फसलों की तैयारी, उर्वरकों के संतुलित उपयोग, प्राकृतिक खेती, विभागीय योजनाओं की जानकारी देंगे। कलेक्टर हरेंद्र नारायण के निर्देश पर शहर में अमानक प्लास्टिक डिस्पोजल और पॉलिथीन के खिलाफ संयुक्त छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्व और पुलिस विभाग की टीम द्वारा की गई। छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू ने रेलवे और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ चार फाटक क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान चार फाटक और चौराई कुंडा रेलवे क्रॉसिंग पर प्रस्तावित अंडरब्रिज और सौसर लोधीखेड़ा मार्ग पर ओवरब्रिज निर्माण को लेकर स्थल निरीक्षण किया गया। जिले में संचालित आंगनबाड़ियों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की है। 1 से 15 जून तक जिले की सभी आंगनबाड़ी बंद रहेंगी। इस दौरान निर्धारित टीकाकरण और मासिक वजन कार्यक्रम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यकर्ता और सहायिकाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे। छिंदवाड़ा और पांडुना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल के 211 नए 4G मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। ये स्वीकृति केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिले के सांसद विवेक बंटी साहू के प्रयासों के बाद प्रदान की है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश प्रजापति का था, वाचन था दीपा सिंह का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
2: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खड़वा केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा,
1: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव,
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे,
1: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुमबाई,
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
1: जी,
2: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
1: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
2: बिल्कुल सही,
1: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
2: जी जी जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षावन या रेन फॉरेस्ट है।
1: जी, सुना तो है,
2: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
1: अच्छा,
2: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षावन नहीं है।
1: क्यों?
2: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं, वर्षावन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
1: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओ, रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
2: जी।
1: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
2: जी।
1: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
2: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्धखारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
1: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है। यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
2: जी
1: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
2: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
1: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
2: चलते हैं, ऐसा वाला कैसे हो सकता है?
1: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है, तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
2: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
1: लेकिन भला वो कैसे?
2: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छानकर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छानकर निकाल देती हैं। और हाँ अजीत जी, जब

0: वन की बात चल ही रही है तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है।
1: जी बिमरेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
0: जी
1: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती।
0: जी
1: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
0: सुंदरबन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
1: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
0: जी
1: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
0: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वारभाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
1: जी हाँ श्रोताओं, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
0: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
0: जी
1: अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
2: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water।

0: अभी आपने सुना यह खूबसूरत कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाईं।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं थिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा थिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ, उठो, आजा, आओ। हाँ, देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता थिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
2: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
3: अरे बच्चे के समान नहीं।

0: तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे।
1: संतान न होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
2: शायद आप ठीक कहते हैं, ये हमारे बच्चे ही हैं।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
3: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदुर का राजमार्ग जाता था।
4: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
2: सुनिए, देखो कितना अच्छा होता यदि इस सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
1: हाँ, ये तो है।
2: राहगीरों को सुस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
1: सही कहा।
2: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
1: बिल्कुल,
2: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
1: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
2: ठीक है,
1: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना।
2: बिल्कुल ठीक है।
3: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
4: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
3: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
4: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
2: जी सुनिए।
0: हाँ।
2: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
0: ये लो थिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
2: हाँ।
0: मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
2: अरे अरे, इसको भी डालो।
0: हाँ, ये देखो देखो देखो, कितना छोटा था ना ये पौधा, कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
2: प्यारा लग रहा है, मेरा छोटा सा
3: बच्चा। लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
4: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
0: देखा थे मक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे। हाँ। और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
2: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया।
0: हाँ।
2: सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
0: हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
5: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
6: ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे हमारा शहर हो।
3: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों,

0: सालूमरदा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8,000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
1: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
2: सालूमरदा थिमक्का समाज सेवा।
0: 113 वर्ष की सालूमरदा थिमक्का का कहना है,
3: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
0: सालूमरदा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8,000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसे सदा याद रखा जाएगा।
4: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालूमरदा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय पटी लैंगडिंगडो, ध्वनिंकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालूमरदा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
0: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे, ये आवाज कैसी सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच्ची तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है। अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।
4: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
5: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
4: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
5: क्यों?
4: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
5: वो कैसे?
4: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
5: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
4: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
5: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
4: आप कब आ रहे हैं?
5: आकाशवाणी खंडवा पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 10:35 होने को है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी जगत।

0: कार्यक्रम नारी जगत में और मैं हूँ आपकी सखी मीनू जैन। सखियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हमारे जीवन, प्रकृति और आने वाले भविष्य से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की, जो हर साल 22 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को प्रकृति और जीव जंतुओं के महत्व के प्रति जागरूक करना है। सखियों, जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव और उनके रहने के प्राकृतिक स्थान। सखियों, हमारी धरती पर लाखों प्रकार के जीव मौजूद हैं। कोई जंगलों में रहता है, कोई नदियों में, तो कोई आसमान में उड़ता है। ये सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। अगर इनमें से किसी एक प्रजाति का भी अस्तित्व खतरे में पड़ता है तो उसका असर पूरे पर्यावरण पर पड़ता है। आज जैव विविधता कई कारणों से संकट में है। बढ़ता प्रदूषण, जंगलों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक का ज्यादा उपयोग प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। सोचिए, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें शुद्ध हवा कौन देगा? अगर नदियां, जंगल नष्ट हो जाएंगे तो मानव जीवन भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इसलिए जैव विविधता की रक्षा करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी का कर्तव्य है। हम छोटे छोटे कदम उठाकर भी बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, पानी और बिजली की बचत करना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना, पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील रहना और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना। सखियों, बच्चों को भी बचपन से प्रकृति प्रेम की शिक्षा देनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां पर्यावरण के महत्व को समझ सके। सखियों, प्रकृति हमें बिना किसी भेदभाव के सब कुछ देती है, हवा, पानी, भोजन और जीवन। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी रक्षा करें और धरती को हरा भरा बनाए रखें।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: सखियों, अभी बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां चल रही है और हम माओं के लिए ये टास्क रहता है कि इस समय बच्चा कुछ अलग करे, कुछ सीखे। अगर सही तरीके से प्लान किया जाए तो बच्चे मोबाइल और टीवी से दूर रहकर नई चीजें सीख सकते हैं। सबसे पहले बच्चों के लिए एक आसान दिनचर्या बनाएं, जिसमें खेलने, पढ़ने, खाने और आराम का समय तय हो। इससे बच्चे अनुशासन भी सीखते हैं। आप उन्हें ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, क्राफ्ट बनाना, कुकिंग, गार्डनिंग या उन्हें जिस किसी चीज में रुचि हो वो सिखा सकती हैं। उनके लिए कहानी या कॉमिक्स की किताबें लाएं, जिससे बच्चों की भाषा और कल्पना शक्ति बढ़ती है। बच्चों से छोटे छोटे कामों में मदद लें, जैसे पौधों में पानी देना, खिलौने जमाना, टेबल सजाना, रूम साफ करना। इससे उनमें जिम्मेदारी की भावना आती है। गर्मियों में दिन के समय बाहर तो जाना नहीं है, इसलिए उनके साथ इंडोर गेम्स खेलें, जैसे लूडो, कैरम, पजल्स, शतरंज। ऐसे खेल बच्चों की सोचने की क्षमता बढ़ाते हैं और परिवार के साथ समय भी अच्छा गुजरता है। मोबाइल और टीवी का समय भी तय करें। सखियों, पुराने सामान से नई चीजें बनाना, कविता कहानियां लिखना और सुनाना या किसी की एक्टिंग करना बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ाता है। जब शाम को गर्मी कम हो जाए तो बच्चों के साथ पार्क में खेलें, रात में दादा दादी से कहानियां सुने, उनके बचपन की बातें सुने, जिससे बच्चे नए अनुभव भी सीखेंगे, साथ ही संस्कार और अपनापन भी सीखेंगे। सखियों, शुरू में हमने बात की थी जैव विविधता दिवस की, इसलिए आज हमने हमारी मेहमान सखी से इसी संदर्भ में बात की है। सखी है बबीता जैन और आपसे बात की है मीनू जैन ने। विषय है पर्यावरण और हमारा दायित्व। तो सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
6: सखियों, कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये परिवर्तन हमारे

0: पर्यावरण के अनुसार होता है। ये पर्यावरण क्या है और इसका क्या महत्व है, ये जानने के लिए हमने बातचीत की है श्रीमती बबीता जैन से। तो नमस्ते बबीता जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते मीनू जी, और सुनने वाली सभी सखियों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: बबीता जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पर्यावरण आखिर है क्या।
1: पर्यावरण शब्द परि धन आवरण के योग से बना है। परि का मतलब चारों ओर तथा आवरण का मतलब परिवेश है। दूसरे शब्दों में कहें तो पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव और उनसे संबंधित भौतिक परिसर को पर्यावरण कहते हैं।
0: ये तो हमने जाना कि पर्यावरण क्या है, अब इसकी समस्या क्या है।
1: आज विज्ञान नए नए आविष्कार कर रहा है, इस कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। चिकित्सा की नई नई पद्धति के कारण मृत्यु दर कम हो रही है, जिससे जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। नए नए उद्योग खुल रहे हैं, लोग गांव से शहरों में जा रहे हैं, शहरों में

0: आज विज्ञान नए नए आविष्कार कर रहा है, इस कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। चिकित्सा की नई नई पद्धति के कारण मृत्यु दर कम हो रही है, जिससे जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। नए नए उद्योग खुल रहे हैं, लोग गाँव से शहरों में जा रहे हैं, शहरों में रहने का स्थान बनाने के लिए हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है, मल्टी बनाई जा रही है, जिससे शहरों में हरियाली समाप्त होती जा रही है।
1: इसके महत्व और उपाय क्या हैं?
0: पर्यावरण संरक्षण का सभी प्राणियों के जीवन और इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ संबंध है। पर्यावरण प्रदूषण के कुछ दूरगामी दुष्प्रभाव हैं जो बहुत घातक हैं, जैसे वायुमंडल का तापमान बढ़ना, ओजोन परत की हानि, धरती का क्षरण होना, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि।
1: बबीता जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जल प्रदूषण तो आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है।
0: हाँ मीनू जी, अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी मुख्य जरूरत जल को प्रदूषण से बचाना होगा। कारखानों का गंदा पानी, घरेलू गंदा पानी, नालियों में प्रवाहित मल, सीवर लाइन का गंदा निष्कासित पानी पास की नदियों और समुद्र में गिरने से रोकना होगा। कारखानों के पानी में हानिकारक रासायनिक तत्व घुले रहते हैं जो नदियों के जल को विषाक्त कर देते हैं, जिससे जलचरों के जीवन को संकट का सामना करना पड़ता है। फिर उसी प्रदूषित पानी को सिंचाई के काम में ले लेते हैं, जिससे उपजाऊ भूमि भी विषैली हो जाती है, उसमें उगने वाली फसल और सब्जियां भी पौष्टिक तत्वों से रहित हो जाती हैं, जिनके सेवन से अवशिष्ट जीवननाशी रसायन मानव शरीर में पहुंचकर खून को विषैला बना देते हैं।
1: ये तो हुई जल प्रदूषण की बात बबीता जी, वायु प्रदूषण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: आज वायु प्रदूषण ने भी हमारे पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाई है। जल प्रदूषण के साथ ही वायु प्रदूषण भी मानव के सन्मुख एक चुनौती है। माना कि आज मानव विकास के मार्ग पर अग्रसर है, परंतु वहीं बड़े बड़े कल कारखानों की चिमनियों से लगातार उठने वाला धुआं, रेल और नाना प्रकार के डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के पाइपों से और इंजनों से निकलने वाली गैसें, धुआं, जलाने वाला हाईकोक, एसी, इन्वर्टर, जनरेटर आदि से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड प्रतिक्षण वायुमंडल में घुलते रहते हैं। आजकल तो वायु प्रदूषण सर्वव्यापक हो चुका है।
1: बबीता जी, आजकल सड़कों पर जो यातायात बढ़ रहा है और कुछ युवा बच्चे तेज आवाज में हॉर्न बजाते हैं।
0: जी मीनू जी, ये ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आता है। पर्यावरण की बेहतरी के लिए ध्वनि प्रदूषण की ओर भी ध्यान देना होगा। आजकल तो महानगरों में ही नहीं बल्कि गांव तक में लोग ध्वनि विस्तारकों का प्रयोग करने लगे हैं। बच्चे की जन्म की खुशी हो या शादी पार्टी, सभी में डीजे एक आवश्यकता समझी जाने लगी है। जहां गांवों को विकसित करके नहरों से जोड़ा गया है, वहीं मोटरसाइकिल और वाहनों की चिल्लपों महानगरों के शोर से भी ज्यादा होती है। औद्योगिक संस्थानों की मशीनों के शोर ने ध्वनि प्रदूषण को जन्म दिया है। इससे मानव की श्रवण शक्ति का ह्रास होता है, ध्वनि प्रदूषण का मस्तिष्क पर भी घातक प्रभाव होता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि तीनों ही हमारे और हमारे फूल जैसे बच्चों के स्वास्थ्य को चौपट कर रहे हैं। ऋतु चक्र का परिवर्तन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना हिमकण को पिघला रहा है, सुनामी, बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि या अनावृष्टि जैसे दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं।
1: बिल्कुल बबीता जी, आजकल प्लास्टिक के उपयोग से भी तो प्रदूषण हो रहा है।
0: जी मीनू जी, प्लास्टिक आदि के कचरे से प्रदूषण की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ रही है। प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो बहुत सालों तक सड़ता नहीं है। लोग खाने की चीजें प्लास्टिक की थैलियों में बांधकर यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, जिससे गाय आदि जंगली जानवर या घरेलू जानवर खा लेते हैं और बीमार हो जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। प्लास्टिक से मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है।
1: और ग्लोबल वार्मिंग?
0: हाँ मीनू जी, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की कितनी बड़ी समस्या है, इस बात को हमें समझना होगा। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कई भविष्यवाणियां की जा रही हैं। इसमें ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती है जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर यहाँ का तापमान बढ़ाने में कारक बनती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन गैसों का उत्सर्जन अगर इसी प्रकार चलता रहा तो 21वीं शताब्दी में पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। दुनिया के कई हिस्सों में बिछी बर्फ की चादरें पिघल जाएंगी, समुद्र का

0: जलस्तर कई फीट ऊपर तक बढ़ जाएगा। समुद्र के इस बर्ताव से दुनिया के कई हिस्से जलमग्न हो जाएंगे, भारी तबाही मचेगी। यह तबाही किसी विश्व युद्ध या किसी एस्ट्रॉइड के पृथ्वी से टकराने के बाद होने वाली तबाही से भी बढ़कर होगी, और हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए भी यह स्थिति बहुत हानिकारक होगी। मीनू जी,
1: तो फिर इसका उपाय क्या है?
0: इन सभी प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करें तो अपना पर्यावरण बचा सकते हैं। सिर्फ जागरूकता फैलाकर इसे रोका जा सकता है। इसके लिए हमें अपनी पृथ्वी को सही मायने में ग्रीन बनाना होगा। हम अपने आसपास के वातावरण को प्रदूषण से जितना मुक्त रखेंगे, इस पृथ्वी को बचाने में उतनी ही बड़ी भूमिका निभाएंगे। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए मुख्य रूप से CFC गैसों का उत्सर्जन रोकना होगा, और इसके लिए फ्रिज, एयर कंडीशनर और दूसरे कूलिंग मशीनों का इस्तेमाल कम करना होगा, या AC मशीनों का उपयोग करना होगा जिससे CFC गैसें कम निकलती हों। औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं हानिकारक है, और इनसे निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी बढ़ाता है। इन इकाइयों में प्रदूषण रोकने के उपाय करने होंगे। वाहनों में से निकलने वाले धुएं का प्रभाव कम करने के लिए पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। उद्योगों और खासकर रासायनिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को फिर से उपयोग में लाने लायक बनाने की कोशिश करनी होगी, और प्राथमिकता के आधार पर पेड़ों की कटाई रोकनी होगी। जंगलों के संरक्षण पर बल देना होगा। पहाड़ों पर रहने वाले लोग कई बार घरेलू ईंधन के लिए जंगलों से लकड़ी काटकर इस्तेमाल करते हैं, जिससे पूरे के पूरे जंगल स्वाहा हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो छोटे छोटे या बहुत कम आबादी वाले गांव हैं, उन्हें पहाड़ों पर सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं मुहैया कराने से बेहतर है कि उन्हें प्लेन में विस्थापित करें। इससे पहाड़ व जंगल कटाव कम होगा, साथ ही पर्यावरण सुरक्षित रहेगा।
1: ये तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई बबीता जी।
0: जी मीनू जी, यदि हम कल को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो जरूरी है कि बच्चों को पर्यावरण सुरक्षा का समुचित ज्ञान समय समय पर देते रहें। अच्छे और महंगे ब्रांड के कपड़े से कहीं महत्वपूर्ण उनका स्वास्थ्य है, जो हमारा भविष्य और उनकी पूंजी है।
1: और अंत में आप क्या कहना चाहेंगी?
0: और अंत में मैं अपनी बात एक कविता के माध्यम से कहना चाहूंगी।
1: बिल्कुल।
0: बदले हम तस्वीर जहाँ की, सुंदर सा एक दृश्य बनाए, संदेश ये हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। फैल रहा है खूब प्रदूषण, काट रहा मानव जंगल वन, हवा हो रही है जहरीली, कमजोर पड़ रहा है सबका तन। समय आ गया है कि मिलकर हम सब कोई कदम उठाएं, संदेश ये हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। प्रयोग करें गाड़ी का कम हम, पैदल चलने पर जोर दें, थैले रखे हम कपड़े के, प्लास्टिक को रखना छोड़ दें। अहंकार को छोड़कर बातें ये हम सबको समझाएं, संदेश ये हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। हवा चाहिए शुद्ध ही सबको, पेड़ न कोई लगाता है, अनजाने में सब रोगों को पास में खुद ही बुलाता है। हरियाली फैलाकर आओ सबको, अब हम स्वस्थ बनाएं, संदेश ये हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। मत व्यर्थ करो जल को, जल है तो अपना जीवन है, प्रकृति ने है जो हमको दिया, सबसे अनमोल ये वो धन है। सब जीवों को मिले बराबर, इस उद्देश्य से अब हम जल बचाएं, संदेश ये हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं।
1: बहुत ही अच्छी कविता सुनाई बबीता जी आपने। आपने हमसे बातचीत की और पर्यावरण के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मीनू जी।
2: पर्यावरण और हमारा दायित्व। अभी हमने बबीता जैन से मीनू जैन की बातचीत सुनी। आपको कैसी लगी सखियों, पत्र लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और अब आपको इंतजार होगा गीत सुनने का, तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

सखियों, आज शुक्रवार है और आज के दिन हम आपको बताते हैं टिप्स। सखियों, गर्मी बहुत बढ़ गई है, ऐसे में हमें हमारी त्वचा का विशेष ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में त्वचा सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी प्रभावित होती है। सखियों, गर्मियों में हमारी त्वचा अक्सर तैलीय नहीं होती बल्कि बायोलॉजिकल डिहाइड्रेटेड हो जाती है। इसका मतलब है कि त्वचा के भीतर पानी की कमी होती है, जिससे वह ज्यादा तेल का उत्पादन नहीं करती बल्कि प्राकृतिक रूप से सूखी हो जाती है। इसलिए दिन भर पर्याप्त पानी, नारियल पानी छाछ लें। सखियों, तेज धूप में यूवी किरणें त्वचा के कोलेजन को तोड़ती है और फ्री रेडिकल्स बढ़ाती है, जिससे पिगमेंटेशन और एजिंग तेज होती है। SPF 30 या उससे अधिक का सनस्क्रीन हर 3-4 घंटे में लगाना जरूरी है। सखियों, बार बार चेहरा धोना या रासायनिक जैसे कठोर उत्पादों का इस्तेमाल इस परत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए हल्के क्लींजर और पानी आधारित मॉइस्चराइजर का उपयोग करें। इन सब के साथ ही पानी से भरपूर फल जैसे तरबूज, खीरा, संतरा से भरपूर खाद्य त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं। तो सखियों, ये थी आज की टिप्स। इसी के साथ सखियों, आज के नारी जगत कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो रहा है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, पत्र लिखकर हमें जरूर बताइएगा। हमारा पता है, नारी जगत कार्यक्रम द्वारा उपनिदेशक कार्यक्रम, आकाशवाणी सिविल लाइंस, खंडवा। खंडवा का पिन कोड है 450001। तो अब कार्यक्रम को संपन्न करने की अपनी सखी मीनू को दे इजाजत। नमस्कार।

0: अभी नारी जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था।
1: निमाड़ की सुरीली धड़कन पर आप सुन रहे हैं प्यार की धुन। सुनते रहे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। सुन साहिबा सुन।
0: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं, थोड़ी ही देर में विविध भारती सेवा के कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

पंकज उधास की आवाज में आपने ये गाना सुना और अब पेश है ये अगला गाना। आवाज है जुबिन नौटियाल और जोनिता गांधी की नवीन त्यागी के बोल हैं संदीप गोस्वामी का संगीत।

रंग तरंग प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं नरेंद्र चंचल का गाया हुआ ये गाना, जिसे लिखा है कपिल कुमार ने, धुन बनाई है मानस मुखर्जी ने।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: रंग तरंग प्रोग्राम में अब पेश है दिलराज कौर की आवाज में मोहसिन नकवी का कलाम।

रंग तरंग प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं जोनिता गांधी और शाश्वत सिंह का गाया हुआ, साहिब का लिखा हुआ गाना, समीरा कोपिकर का संगीत है।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना अनजान का लिखा ये गाना श्याम शर्मा की धुन थी। और अब आपको सुनवा रहे हैं जुबिन नौटियाला और पायल देव का गाया हुआ ये गाना। रश्मि विराग ने लिखा है, पायल देव का संगीत है।

अब आपको सुनवा रहे हैं जावेद अली और स्वामी शैलेश का गाया हुआ ये गाना, जिसे लिखा है राज सागर ने, धुन बनाई है पवन मुरादा मुरादपुरी ने।

रंग तरंग प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं कैलाश खेर की आवाज, हसन रिजवी के बोल और नरेश परेश का संगीत।

रंगता रंग प्रोग्राम की आखिरी पेशकश श्रेया घोषाल, स्टेबिन बेन और पायल देव के साथ जावेद मोहसिन की आवाजें। सुनते हैं ये गाना।

0: ये थी आखिरी पेशकश। अब दीजिए रंग तरंग कार्यक्रम से इजाजत।
1: रंग तरंग,
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। वे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बातचीत के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। भारत और साइप्रस के बीच घनिष्ठ साझेदारी है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की। ये सीटें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद सीवी षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई हैं। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दिल्ली की एक अदालत ने IRCTC होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ED कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेगाबालिन दवा को औषधीय नियम की अनुसूची H1 में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्णय कुछ राज्यों में प्रेगाबालिन के दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल के मद्देनजर लिया गया है। ये दवा पुराने दर्द, तंत्रिका संबंधी विकारों और तंत्रिका संबंधी स्थितियों के उपचार के लिए निर्धारित है, परंतु इसकी आदत और इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में अवैध रूप से रखी गई और अनधिकृत रूप से बेची गई प्रेगाबालिन की खेप जब्त की गई है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से सभी प्राणियों के लिए एक साझा भविष्य बनाने में मदद करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि इस वर्ष का विषय है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करें। यह हर किसी के लिए आह्वान है कि वो जैव विविधता को रोकने के नुकसान को रोकने और इसके संरक्षण का प्रयास करे। महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय की आज जयंती है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजा राम

0: मोहन राय को इस अवसर पर श्रद्धांजलि दी है। घरेलू शेयर सूचकांक आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 551 अंक बढ़कर 75,734 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं सीमा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

यादों के महफिल प्रोग्राम का अगला गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में सुनवा रहे हैं, फिल्म सरस्वती चंद्र से। गीत के बोल इंदिवर के लिखे हैं और संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना आप सुन रहे थे माँ और ममता फिल्म से। आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की थी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म का गाना। लता मंगेशकर, आशा भोसले की आवाजें हैं, आनंद बख्शी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। लेकिन इस गीत से पहले ये संदेश।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: के जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: चला

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे यादगार फिल्म का गाना, जिसे लिखा था इंदीवर ने, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सौदागर का गाना किशोर कुमार की आवाज में। गीत और संगीत रवि

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3:03।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

हमारा संसार इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और हेमलता की आवाजों में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था और आप सुनवा रहे हैं साजन की सहेली फिल्म का ये गाना। मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजें हैं।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनिए राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। फिल्म का नाम है रिश्ता कागज का और आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की।

ये था यादों की महफिल कार्यक्रम का आखिरी गाना। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप सबके साथ आज का सुरीला सफर तय करने के लिए हाजिर हूं मैं राजुल। सभी को सादर नमस्कार। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं वो इबारत जो हमारे श्रोता जो फेसबुक पर अभी नहीं पहुंच सके हैं, उन्होंने नहीं पढ़ी होगी। तो आज की इबारत कुछ ऐसी है, इधर गर्मी का जलवा कम होने का नाम नहीं लेता और उधर जून का पूरा महीना ताक लगाए बैठा है। जब जी चाहे आंधी तूफान मचा देती है गर्मी, दो घड़ी भी चैन से नहीं बैठती। एसी कूलर कहाँ तक दिल बहलाएं, गर्मी दिन भर आग बरसाती है और रात में भी इसे नींद नहीं आती। छत पर चांदनी रात में भी चैन नहीं, हवा के झोंके भी गर्मी से बेचैन होकर छिप जाते हैं। गगरी सुराही बेअसर है, लाख बुलाने पर भी बादल की कोई खबर नहीं। गुस्से गर्मी के गुस्से से वो बेचारा भी डरता है, ये भी कोई बात है। धीरे धीरे प्यार से आए जाए तो उसका क्या बिगड़ जाएगा, ये तो सरासर गर्मी की डॉनगिरी है। और आज की इबारत के बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं के संदेश आए। कुछ श्रोता कह रहे हैं कि अंतिम पंक्ति मस्त है और वैसे आपके संदेश और गीतों का सुंदर समावेश कुछ इस तरह होता है जैसे जुगनू और रोशनी, जैसे शहद और मिठास। वैसे एक दो संदेशों में नाराजगी भी है कि फिर गर्मी की बात या फिर मौसम की शिकायत हो रही है। वहीं कुछ संदेश गर्मी की अधिकता से परेशानी के बारे में भी हैं। वैसे गर्मी के मौसम में गर्मी का असर तो दिखेगा ही, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज के दिन तो मौसम के बदले मिजाज का जिक्र करना ही है क्योंकि बदलती जलवायु से प्रभावित होती जैव विविधता की ओर ध्यान देना ही देना है। प्रकृति और जैव विविधता का संरक्षण ही सुरक्षित भविष्य की गारंटी है और इसीलिए हरी और जैव विविधता से भरी पृथ्वी के लिए मिलकर संकल्प लेते हुए शुरू करते हैं आज का सुरीला सफर। भाई देखना तो ये है कि हमारी लिस्ट से आपकी लिस्ट कितनी मैच करती है। वैसे जैव विविधता की बात हो रही है तो आसपास कौन से कीट पतंगे या पंछियों की आमद आजकल बढ़ी हुई दिखती है या कौन से ऐसे जीव हैं जो अब कम दिखने लगे हैं, अगर आपने गौर किया है तो बताइए हमें। संदेशों की बात करें तो संदेश है आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस की शुभकामनाओं और बधाई का, जिसे भेजा है हमारे एक श्रोता ने, बहुत बहुत बधाई। एक और बड़ा मजेदार संदेश है, हो जाते हैं शीत में सूरज दादा संत, गर्मी आते ही लगे जैसे क्रोधी कंत। क्या बात है। एक संदेश में हमारी श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी से बेहाल इंसान जब पहली ठंडी हवा छूती है तो लगता है जैसे प्रकृति खुद उसे दिलासा दे रही हो। बारिश की पहली बूंद केवल धरती को ही नहीं बल्कि इंसान

के मन को भी ठंडक देती है, थकान कम हो जाती है, चेहरे पर मुस्कान लौट आ जाती है और फिर दिल फिर से नई उम्मीदों से भर जाता है। हाँ भरेगा, लेकिन अभी तो वो उम्मीद भरे दिन दूर हैं। और संदेश हमारे कुछ श्रोताओं ने भेजे हैं। हे गर्मी, तेरा जलवा जिसने देखा वो तपिश से जल गया। देखते ही देखते भाई मही मई का पूरा महीना पूरा हो गया। वो एसी वो कूलर कहाँ से लाऊं, तेरी गर्मी जो याद जो भुला दे। गर्मी में दिन भर झुलसते रहे, रात भर करवटें बदलते रहे, गाते रहे, ओ नींद ना मुझको आए, दिल मेरा घबराए, चुपके चुपके कोई आके फैन चला दे, एसी चला दे, क्योंकि सुहानी चांदनी रातें हमें छत पे सोने नहीं देती। गर्मी इतनी है चैन से जीने नहीं देती, गुस्सा गर्मी का इतना हसीन जालिम है, तो सावन कैसा होगा, लाख बुलाओ आ ना सकेगा बादल। कहने सुनने दिल की बात, लग रहा है चले आएंगे बादल, बिजली गरज के साथ जून के बाद अपने आप, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला जब से विविध भारती शरण में तेरी में आया। क्या बात है, इन्होंने तो बहुत सारे गाने पिरो दिए आज की इस संदेश की इबारत में। याद किया है एक कविता को हमारी एक श्रोता ने, सूरज तपता धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना आता, हाथ सभी के पंखा रहता, आरे बादल काले बादल, गर्मी दूर भगारे बादल। क्या बात है, बचपन की ये कविता इन्होंने याद की है। एक और संदेश है कि सूरज की प्रचंड किरणें इस समय धरती को भट्टी की तरह तपा रही हैं और सभी जीव जंतु केक की तरह बेक हो रहे हैं। प्रचंडता का आलम यह है कि धरती का मिजाज गर्म है और उसे ठंडक के लेप की जरूरत है। शायद विविध भारती के गीतों को सुनकर कुछ शीतलता मिलेगी, चलिए देखते हैं। तो पहला गीत सुनवा ही दिया जाए। लेकिन वो सवाल याद है ना, कौन से कीट पतंग ज्यादा दिखने लगे हैं आसपास या बहुत कम हो गए हैं इन दिनों? और अगर बता सके तो ये भी बताइए कि ये गाना किस फिल्म का है और संगीतकार कौन है। दो सवाल हैं आपको देने हैं इनके जवाब, तो जल्दी से आइए।

जलवा शब्द से तो ये गाना हो गया, और हमारे कुछ श्रोताओं ने कहा कि तुरंत इस सवाल का जवाब भी दिया, शंकर जयकिशन का संगीत है इस फिल्म में। और बात अगर हो रही है जलवे की, तो गर्मी के जलवे को लेकर बहुत सारे संदेश भी हैं। वैसे एक श्रोता कह रहे हैं कि स्कूल में अनसीन पैसेज का एक प्रश्न हुआ करता था, वो भी शायद कुछ सरल होता था। आपकी पहेली तो कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है, समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। वहीं से शुरू करिए, अपने आसपास से देखिए जरा कौन से कीट पतंगे बहुत ज्यादा नजर आने लगे हैं या बहुत कम हो गए हैं। क्या हमारी जैव विविधता किस हद तक खतरे में है या कि सुरक्षित है, ये तो हम पता लगा ही सकते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कभी आंधी तूफान मचा देती है, चैन से बैठने भी नहीं देती है। एसी कूलर से ना दिल बहलता है, रात में ना नींद, हवा पानी सब बेअसर, बादल भी नदारद, प्यार से आना चाहता पर मुश्किल है। और इसके साथ इन्होंने कई सारे गाने भी लिखे हैं जो शायद आज की लिस्ट से काफी कुछ मैच भी कर जाए। एक श्रोता ने कहा है यहाँ वाराणसी में 45 डिग्री है, जो किया है वो भी तो यही मिलेगा। 2008 में जब कॉलेज जाता था तब 42 डिग्री बहुत ज्यादा लगता था, पर कभी वो चुभा नहीं, क्योंकि रोड के दोनों तरफ हरे भरे सघन वृक्ष होते थे जो जेठ के तपती दोपहर में भी जंगल और ठंड का काम करते थे। हर 1 किलोमीटर पर एक हैंडपंप होता था जो आने जाने वालों के लिए अमृत समान होता था। महसूस होता है उन लोगों के लिए जिन्हें इस गर्मी में छांव भी मयस्सर नहीं, उन बेजुबानों के लिए जिनसे उनकी छांव छीन ली गई। सच में बहुत तेज जलती धूप में अभी भी कुछ लोग सड़क पर हैं, बस यही याद आता है। एक श्रोता कह रहे हैं ये गर्मी, ये गर्म रेती, ये पांव नाजुक, अभी न जाओ पड़ेंगे छाले, आज का सुरीला सफर तो पूरा करना है, तो चलिए कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते हैं। शहरों में तो नल से पानी घर तक पहुंचता है, मगर देहातों में आज भी पीतल की गागरी लेकर दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। तो हम चल पड़ते हैं उत्तर पहाड़ी इलाकों में, नैनीताल, कॉर्बेट पार्क जैसे ठंडे प्रदेशों में, या घने जंगलों में, या कश्मीर की वादियों में घूमने चलते हैं। आज का सुरीला सफर इन्हीं वादियों की याद में पूरा करते हैं। तो बताइए कि आप इनमें से किस वादी की याद हमारे साथ साझा करने वाले हैं। जैसा कि आपने कहा है, तो आपकी कोई याद हो मीठी सी अगर तो जरूर बताइए। और एक और श्रोता ने कहा है कि गर्मी का जलवा जिसने देखा वो इससे दूर भाग गया, ना होगा वो किसी का ना कोई उसका होगा, वो ताक लगाए बैठा है आग बरसाने को, हम भी एसी कूलर लगाए हैं उसको मात देने को, 2 घड़ी भी चैन नहीं।

जाता है। ऐसे में गगरे सुराही अपनी साथी है, बादल आने जाने को है पर गर्मी उसे डराने को है। जून जल्दी जल्दी जाए तो जुलाई प्यार से आएगा, इससे भला किसी का क्या बिगड़ जाएगा। क्या बात है, बहुत ही सुंदर कविता इन्होंने लिख दी। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी तपिश में लिपटी है शाम और सिहरती चांदनी रात, बिखरा है फिजाओं में तेरी यादों का एहसास, धड़कनों को थाम कर जो बैठी है मेरी रूह, इस तड़प में भी घुली है तेरी मौजूदगी की छांव। तो अब अगला गाना, और आपको बताना है कि गीतकार और संगीतकार कौन है। और हाँ, जैव विविधता वाला वो सवाल भी कि कौन से कीट पतंगे आजकल ज्यादा दिख रहे हैं।

विस्तार से जवाब दिया हमारे श्रोताओं ने, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र कृष्ण मदन मोहन, गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन की धुन, गेटवे ऑफ इंडिया, मधुबाला, भारत भूषण। और हमारे साथियों ने यह भी लिखा है कि जैव विविधता का पुरजोर असर प्रकृति पर और सभी प्राणियों पर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें अगर अभी से सुधार नहीं किया गया तो आगे आने वाली पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी को कभी माफ नहीं करेगी। और एक श्रोता ने अपनी एक यात्रा का भी वर्णन हमारे साथ साझा किया है। तीर्थन वैली की यात्रा मेरे जीवन की सबसे सुंदर यादों में से एक है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार के पेड़ और कलकल बहती तीर्थन नदी ने मन को गहरा सुकून दिया। वहां की ठंडी हवा और शांत वातावरण ने शहर की भागदौड़ बुला दी। गांव के लोगों का अपनापन और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता आज भी मेरी स्मृतियों में बसी हुई है। ये यात्रा केवल घूमने की नहीं बल्कि मन को शांति और नई ऊर्जा देने वाली एक अविस्मरणीय अनुभूति थी। वाकई ऐसी यात्राएं तो मन को एकदम ताजा कर देती हैं। और ताजा हो रहा है ये संदेश, गर्मी का मौसम प्रकृति के

रूप रंग को पूरी तरह से बदल देता है। मौसम सिर्फ तापमान बढ़ने का समय ही नहीं, बल्कि ये प्रकृति को संतुलित रखने की एक पूरी प्रक्रिया है। रास्ता चलते मुसाफिर को ठंडा पानी और पेड़ों की छांव ही सुकून दे सकती है। पक्षी भी दोपहर में घोंसलों में दुपक जाते हैं, सुबह शाम ये आसमान में उड़ान भरते नजर आते हैं। दिन तपते हैं तो रातें उमस भरी होती हैं, लेकिन उमस भरी रातों में चांद की चांदनी और रात रानी की खुशबू कुछ राहत देती है। गर्मी क्रूर जरूर लगती है, धूल भरी आंधियां चलती हैं, यही गर्मी आने वाली बारिश का संकेत भी देती है। प्रकृति हर एक बदलाव के पीछे एक संतुलन छिपाए रहती है। बहुत सुंदर बात कही है आपने, और इसी संतुलन को हमें संभाल कर रखना है। हमारे कुछ साथियों ने और भी बातें की हैं। लिखते हैं कि गर्मी में ज्यादातर लोग परेशान तो होते हैं, लेकिन इस मौसम का मजा बहुत है। कारण फलों के राजा रसीले और मीठे आम और फलों की रानी लीची का स्वाद तो प्रचंड गर्मी में ही मिलता है। वाकई एक श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल गिरने से उसका डिस्प्ले टूट जाने से मेरा मोबाइल ठीक से काम नहीं कर पा रहा है और टाइपिंग भी ठीक से नहीं हो पा रही है। मोबाइल बीच बीच में बंद हो जाता है, इसलिए मैं इस प्रोग्राम से 3 दिन से नहीं जुड़ पाया हूँ। आज थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, शायद सफल हो जाए। बधाई हो, आप तो सफल हो गए, आपका संदेश हमें मिल गया। और हमारे कविता लिखने वाले श्रोता ने बड़ी ही सुंदर सी कविता भेजी है। तपती दोपहरी में जब सूरज अंगार बरसाता है, धरती की सूखी सांसों में गर्मी का मौसम गाता है। क्या बात है, पीपल की छांव तले बैठा थका मुसाफिर सुस्ताता है, दूर कहीं आमों के बागों से मीठा सावन याद आता है। कूलर की ठंडी सरगोशी मटके का पानी प्यारा है, गर्मी चाहे जितनी चुभे बचपन इसमें भी न्यारा है। और छुट्टियों की इन्होंने बातें कही हैं और कहा है कि गर्मी केवल तपन नहीं, यादों की मीठी थाती है, जलते मौसम की बाहों में भी जिंदगी मुस्कुराती है। वाकई मुस्कुराते ही तो हैं वो जुगनू जो कि शाम को निकल आते हैं। देखिए आपने, बताइएगा हमें। और ये गाना आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम, और बताइए ये गाना आपकी लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं। झूमता

फिल्म उजाला के इस गाने के लिए हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अभी मस्त महीना नहीं गर्मी का महीना है, लेकिन ये गाना तो बहुत सारी ठंडक लेकर आता है। मस्त महीने की बात ही कई बार मन को ठंड दे देती है। माला सिन्हा और शम्मी कपूर के साथ राजकुमार ने इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। हमारे साथियों का संदेश बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ श्रोताओं ने बताया है कि खूब पानी पीना चाहिए, जितना हो सके धूप में घर भर से ना निकले, कोई जरूरी काम हो जाए और पंछियों को का भी ध्यान रखें तभी जितना हो सके। और एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी के दिन सुहाने होते हैं, आम पके कटहल गन्ने का रस से दिन अच्छे कटते हैं, मोगरे की सुगंध से घर आंगन महकता है। क्या बात है। मेघालय से के एक उसकी इन्होंने अपनी एक याद साझा की है कि डॉकी नदी, जो विश्व की पारदर्शी साफ पानी की नदी है, वहां नौकायन का आनंद स्मरणीय था। थोड़ी दूर पर सीमा की बात इन्होंने की है कि भारत के एक पत्थर निशान था जिसके उधर ना हम जा सकते हैं और ना वहां से कोई और आ सकता है। और एक गीत मैच कर गया, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। एक श्रोता बता रहे हैं मच्छर चींटियां बहुत बढ़ गई हैं, और एक और श्रोता कह रही हैं कि हम लोग कमरे में सोते हैं एसी चलाकर, कल रात को बिजली रानी भी चली गई। आजकल के जैसे घर जिसमें बाहर से हवा नहीं आने पाती है, खिड़की खोलने पर भी बाहर से गर्म हवा ही आती है। रात के 3 बजे बिजली रानी आई तो थोड़ा सो लिए। आज 43 दिन में आज अच्छा इन्होंने टेम्परेचर की बात की है कि तापमान 43 डिग्री और दिन में और रात में 30 डिग्री चल रहा है। भोपाल के एक हमारे श्रोता कह रहे हैं कि हमारे शहर में दिन में भले गर्मी रहे लेकिन रात में बहुत राहत रहती है। हमारे घर पर छत पर गमले रखे हैं, उन पर भौरे, कबूतर, गौरैया, बुलबुल, टिटहरी और छोटे साइज के कबूतर भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। पंख वाली चींटियां, टिड्डे, भंवरे आजकल कम ही दिखाई देते हैं, ऐसा हमारे एक श्रोता ने कहा है। कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से इनके जीवन चक्र में परिवर्तन हो गया है। वाकई चिंता की बात तो है ये। और संदेश कुछ घड़े सुराही के भी हैं, हम पढ़ रहे हैं बस अभी। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी अब केवल मौसम ही नहीं, एक जिद बन गई है, एक अविरल तड़प जिसकी ताल से घर, गली, छत, पट्टी सब थरथरा रहे हैं। गगरी, घड़े, सुराही, ठंडी पानी की बोतल, कूलर, एसी सब गर्मी के आगे नतमस्तक हैं। नील गगन के बादल भी किसी रूठे मेहमान की तरह हैं, जो बुलाने पर नहीं आते, शायद गर्मी की डांट से टकराने का साहस नहीं करते। ये गर्मी किसी डॉन से कम नहीं वो अपनी मौजूदगी का ठप्पा हर क्षण बड़े आत्ममुग्ध अंदाज में जमा रही है। इस भीषण मौसम में खुद को हाइड्रेट और सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। चिलचिलाती धूप से बचाव के लिए अपने शहर का मौसम अपडेट और हीट वेव अलर्ट देखें। खुद को तरोताजा रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और तरल पदार्थ लें। घर के अंदर ही सुरक्षित रहें, पर कई बार मजबूरी होती है घर के बाहर निकलना भी। सन्नाटे भरे सूनी सड़कों वाली अलसती दोपहर का ये महीना, और अभी तो जून का महीना आने को बाकी है, वो महीना तो गर्मी को चोटी पर पहुंचा देता है। कुदरत का नियम है, वो जिंदगी को सहेजने वाली चीजें जरा कंजूसी से ही बख्शती है हम सबको, इसलिए यह प्रकृति जितना भी देती है कम लगता है, और उसी के चलते मटके और सुराही का पानी हमें उतना शीतल नहीं लगता जितना हमें चाहिए होता है। हमें कुछ और की प्यास बनी ही रहती है, भले ये गर्मी की दादागिरी है, मगर इन दिनों को कभी बच्चों की उम्र में ढलकर उनके साथी बनकर, कभी थोड़ा बड़प्पन से तो थोड़ी समझदारी से बिताएं तो ये महीने खुशियों के दस्तावेज बन जाएंगे। वाकई क्या खूब बात कही आपने। तो चलिए खुशियों का एक और दस्तावेज इस गीत के साथ आपको बताने हैं कलाकारों के नाम।

भाई चैन और नींद तो गायब है ही। एक श्रोता कह रहे हैं कि इस भरी दोपहरी में भी थोड़ी सी ठंडी की राहत मिल रही है, तो वो है विविध भारती के गानों की बौछार जो मन को शीतल कर रही है। सचमुच कुछ भी कहें, बचपन में धूप नहीं लगती थी, लेकिन जब से बड़े हुए तो हर मौसम महसूस होने लगता है। कुछ भी हो लेकिन पेड़ की छांव की बात ही कुछ अलग। पीपल की छांव के नीचे छोटी छोटी पानी की फुहार आती है जो बड़ा ही सुकून देती है। आपने कभी क्या ऐसा कोई पेड़ लगाया है जो कि खूब घना छायादार हो, जैसे पीपल या नीम? अगर नहीं लगाया है तो क्या लगाने की सोच रहे हैं, इस बारे में हमें जरूर बताएं। एक और श्रोता ने भी यही बात कही है कि विविध भारती के मस्त गानों से जरूर ठंड मिल रही है, वैसे तो गर्मी से बुरा हाल है। एक श्रोता ने कहा है कि हम सब इतनी अच्छी तरह से घर में रहते हैं, पर हमारे फौजी भाई फुल गर्मी या सर्दी में अपनी ड्यूटी करते हैं। अब सवाल का जवाब। श्रोताओं ने बताया है फिल्म का नाम दिल, आमिर खान और माधुरी दीक्षित ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। बिल्कुल सही जवाब है। और अब

एक बारी है एक सवाल की, एक और सवाल है हम पूछते हैं आपसे कि अक्सर ऐसा होता था कि गर्मी में हवा बंद होने पर कई बार एक खेल खेला जाता था कि एक ही सांस में एक ही तरह की सात चीजों के नाम लो तो हवा चलने लगेगी। ऐसा होता था ना कि खूब सारे लोग छत पर सो रहे हैं, बच्चे हैं, और हवा बंद हो गई अचानक, और फिर ये हुआ कि चलो भाई कोई खेल खेलते हैं तो शायद नींद आ जाए। इस खेल खेल में कई बार हवा चलने भी लगती थी और वो टोटका सफल माना जाने लगता था। तो बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा कोई खेल खेला है हवा को बुलाने वाला? अगर खेला हो तो हमें जरूर बताएं। और हमारे एक श्रोता ने कहा है कि खपरेल वाली छतों में आजकल सोने में बहुत अच्छा लगता है, हमने अपना बचपन इन्हीं छतों के नीचे गुजारा है। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी से हम सभी इतने परेशान हैं कि हम चाहते हैं कि ठंडी हवाएं आए जून महीने की गर्मी का। जून महीने में सोचेंगे इस समय की हालत तो यह है कि दोपहर को चैन से सोने वाले की नींद उड़ गई है, जिया बेकरार है, बरसात के लिए कब रिमझिम बारिश हो और हमें जालिम गर्मी से छुटकारा छुट्टी मिले। ओहो, एक और श्रोता ने कहा है कि गर्मी अपने पूरे शबाब पर है, दिल्ली में पारा 44 डिग्री से ज्यादा चल रहा है, रातें बेहद गर्म हवा के साथ बीत रही हैं जिसका कारण है बिजली कटौती। टेरेस पर रखी 1,000 लीटर की टंकी का पानी भी ऐसा हो जाता है जैसे गीजर से पानी आ रहा हो। बाप रे, ऐसी भरी गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाते कुछ बेहद शानदार गाने सुनने को मिल जाए तो क्या कहने। कर्मस्थल पर भी बेहद गर्मी हो रही है, कार्य चल रहा है, इसी बीच कुछ पंक्तियां याद आ गई जिन्हें साझा कर रहा हूँ, जो कक्षा 4 में पढ़ी थी। चिलचिलाती धूप को चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में ये ठना। वाह, ये तो वीर रस के साथ साथ एक गर्मी को भगाने वाली कविता भी लग रही है, क्या बात है, बहुत सुंदर। और एक और श्रोता ने कहा है, आजा मेरी जान यह है जून का महीना, हालांकि अभी जून आने में लगभग 1 सप्ताह की देर है, फिर भी हाँ जून का महीना जब आएगा तब की तब देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी मई की बात कर रहे हैं और उससे भी ज्यादा हम बात कर रहे हैं गर्मी के चलते, जो बढ़ती गर्मी के बीच में हम पेड़ों की छांव से दूर होते जा रहे हैं, उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और अब ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि फिल्म का नाम क्या है और संगीतकार कौन है। और हाँ, उस खेल के बारे में भी जरूर बताइएगा जो हवा को चलाने के लिए हम बच्चे कभी-कभी खेला करते थे या आप बचपन में कभी खेलते थे।

जी हाँ, दिल नादान फिल्म का ही ये गीत है। बिल्कुल सही जवाब आपने भेजा। खयाम का संगीत है, नक्श लालपुरी के बोल हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आपने ये गाना सुना और जवाब दिया है काफी सारे श्रोताओं ने। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बताया है कि जब लाइट चली जाती थी तो हम लोग अंताक्षरी खेलते थे, और एक और श्रोता ने बताया है कि जब बिजली चली जाती थी बचपन में तो हम बच्चे 1 2 3 गिनती शुरू करते थे कि शायद 10 गिनते बत्ती आ जाए, टोटका कभी कभी सफल हो जाता था। क्या बात है। और एक बहुत ही प्यारा सा संदेश है, पूर्वा के साथ बेटा, अर मल तर मल छूरी कतर मल नेक धर्म पूर्ण प्रताप, चलो ओ पूर्वा झर झर बतास, ऐसा बोला जाता था। मैं कहूंगी तो आप सब हंसेंगे, पर सचमुच जैसे ही बड़े लोग इस बात को बोलते थे हम भी साथ साथ बोलते थे और हवा बहने लगती थी। क्या बात है। जालंधर के तापमान के बारे में बताया है हमारे एक श्रोता ने, 40 डिग्री, बापरे। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि इस वक्त तो टंकी में पानी सूरज उबाल उबाल के रखता है। सही बात है। पीला कनेर लगाया हुआ है घर के बाहर एक श्रोता ने, जिसकी छांव में कभी गांव गाय आकर बैठ जाती है, और गुलमोहर 25 साल पहले लगाया था, आज बड़ा होकर छाया दे रहा है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने बताया है। एक श्रोता कह रहे हैं कि इतनी गर्मी को देखकर भी हम इंसान क्यों नहीं समझते कि हम ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 2 ही पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल भी करें, उसका लाभ हमें और हमारी अगली पीढ़ी को मिलेगा। यदि हम प्रकृति से सिर्फ लेते ही रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, कुछ तो हमें भी देना ही पड़ेगा। मतलब पेड़ लगाना और जितना हो सके पानी बचाना, बिजली बचाना, जहां गाड़ी की जरूरत ना हो वहां पैदल जाना, प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही कम करना, खाना वेस्ट ना करना, और भी कई चीजें हमें प्रकृति की दे सकते हैं। तो सब तैयार है ना इस बरसात में 1 या 2 पेड़ लगाने के लिए? बताइए बताइए, जल्दी से तैयार है ना। गर्मी का मौसम निदाघ काल कहा जाता है। यहाँ निदाघ का शाब्दिक अर्थ तपन या फिर प्रचंड ताप से है। हिंदी माह ज्येष्ठ और आषाढ़ में सूर्य के ताप की प्रचंडता तीव्र हो जाती है। गर्मी ऊर्जा और प्रकृति का चक्र भी है, मानव मन की भावनाओं एवं तपस्या का चरम रूप भी है। वाकई बहुत बड़ी तपस्या है गर्मी तो। और एक और श्रोता ने कहा है कि आधुनिकता के बदले परिवेश में गर्मी का प्रकोप कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है ग्लोबल वार्मिंग। कट्टे जंगल, बड़े बड़े दरख्त इतनी निर्ममता से काटे दिए जाते हैं जिसका बदला प्रकृति इस तरह से ले रही है। घरों, ऑफिस, कारों के एसी से निकलने वाली गर्म हवा वातावरण को और भी गर्म कर देती है। जब एसी कूलर नहीं होते थे तो और तरीकों से घर ठंडे रखे जाते थे। बताइए तो जरा वो कौन से तरीके हैं। और हाँ, ये गाना सुनिए और बताइए कि गीत किसने लिखा है और संगीत किनका है।

फिल्म चार मीनार का ये गाना है। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा भोसले की आवाज, विश्वामित्र आदिल के बोल थे और शार्दुल क्वात्रा का संगीत था। एक श्रोता ने कहा है, गर्मियां इतनी भी बुरी नहीं होती, इस समय फसल कटकर घर आती है, लोग साल भर के लिए गेहूं चने दालें मसाले आदि संग्रह करके रखते हैं, तेज धूप में ये सब अच्छी तरह से धोकर सुखा लिए जाते हैं। याद आता है बचपन का वो घर जहाँ पीछे आंगन में आम का पेड़ हुआ करता था, नीचे जिसके नीचे चटाई बिछाकर हम किताब हाथ में लिए या अष्टाचंगा खेलते हुए पूरी छुट्टियां बीत जाती थी। बिल्कुल नहीं बुरी होती गर्मियां, बल्कि हर मौसम का अपना महत्व तो होता है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि गर्मियों से बचने के जो साधन हम पहले कर पाते थे, अब वो नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे पेड़ नहीं हैं, बहुत सारी बातें कम हो गई हैं, और जो जीवन का रुख बदला है तो उसमें बहुत सारी चीजें जीवन से गायब हो गई हैं। तो उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। गर्मियां तो आना जरूरी है, क्योंकि मौसम का चक्र कैसे पूरा होगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बचपन में मिट्टी के घर को गोबर लीप कर ठंडा किया जाता था, मटके के नीचे बालू और गीला कपड़ा उड़ाकर ठंडा रखा जाता है, बचपन में सबसे ठंडक गाय के गोहाल में लगता था। ओहो, ये तो उन्होंने नई बात बताई। वैसे एक और श्रोता कह रहे हैं कि हर वर्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम चलता है, लेकिन उसका नतीजा अभी तक नहीं निकल पा रहा है, पता नहीं क्यों। भाई, पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ों की देखभाल भी तो करनी जरूरी होती है, और छाया देने वाले पेड़ बड़े तक बड़े होने में तो थोड़ा समय लग ही जाता है। एक श्रोता कह रहे हैं कि जून की तपिश ने तो जैसे, जून तो नहीं भाई, ये तो मई चल रहा है, मई की इस तपिश ने तो, हम इसको सही करके पढ़ लेते हैं, जैसे पूरे शहर को बंधक बना लिया है। सूरज देवता सुबह होते ही अपना रौद्र रूप लेकर निकल पड़ते हैं, मानो किसी से पुराना बदला ले रहे हों। दोपहर की तो बात ही छोड़िए, शाम ढलने के बाद भी दीवारें आग उगलती हैं, ठंडे पानी से नहाओ तो लगता है खोलते हुए कुएं में डुबकी लगा ली। पंखे और कूलर भी अब हार मान चुके हैं, वो तो भी बस गर्म हवा के थपेड़े ही बांट रहे हैं। पेड़ पौधे बेजान होकर सिर झुकाए खड़े हैं और परिंदे छांव की तलाश में भटक रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने मौसम की बात कही है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि पर प्राकृतिक सिस्टम में हम लोग क्या कर सकते हैं, यही है कि आम का पना पिए, सतुआ खाएं और ठंडा ठंडा शरबत पीते रहें, नींबू पानी पीते रहें, गर्मी को दूर करते रहें। बिल्कुल सही बात है, गर्मी को दूर रखने के उपाय करते रहें, और उन लोगों के लिए भी उपाय करते रहें जो गर्मी से इतनी जल्दी बच नहीं सकते। तो अब ये अगला गाना बताइए, फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि गर्मी खराब है या गर्मी बहुत ज़्यादा होना बुरी बात है, बल्कि गर्मी अगर नहीं होगी तो फिर कैसे आएंगे आसमान में काले काले बादल, और कैसे छुपेगा ये जो गर्मी के प्रकोप से भटी हुई धरती का जो कलेजा है वो कैसे छुपेगा, हरियाली से।

देवानंद और साधना ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। असली नकली फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना और हमारे श्रोताओं ने बताई हैं बहुत सारी बातें गर्मी के बारे में। जब एसी कूलर नहीं था तो खस की टाटी खिड़की में टांग भिगोकर घर ठंडा किया जाता था। एक और श्रोता बता रहे हैं कि मिट्टी के घर खपरेल वाले बहुत ठंडे होते थे, पेड़ पौधे भी खूब लगे होते थे। मेरी दादी वाला घर बहुत सुंदर था, पर पापा को तो पक्का घर चाहिए था ना। ओहो, बड़ी शिकायत है इन्हें। असली गर्मी महसूस करनी है और प्रोग्राम की बातें समझनी है तो बाहर गर्मी में बैठकर सुनना चाहिए, रूम के अंदर एसी पंखे में बैठकर नहीं। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक और श्रोता ने कहा है कि इंसान कितना स्वार्थी है, गर्मी के दिनों में सूर्य देवता से कहता तुम कब जाओगे और सर्दियों में सूर्य देवता से कहता है कब आओगे। बिल्कुल, जब अति हो जाती है तो ऐसा ही कुछ होता है। हम सर्दियों में कितने इसरार से सूरज को बुलाते हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जीवन में जब जो होता है वो उस समय अच्छा नहीं लगता और बाद में याद आता है। हाथ से झलने वाले पंखों को याद किया हमारे एक श्रोता ने। और एक श्रोता बता रही है कि 10 बजे से ही खिड़की दरवाजे सबको बंद कर दिया जाता था, खिड़की पर मोटे सूती पर्दे लगा दिए जाते थे और कुछ अजब टाइप की चटाइयां आती थी उन्हें भी कर टांग दिया जाता था। अगर चटाइयां नहीं है तो मोटे कपड़े टांग दिए जाते थे और उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता था। नीचे जमीन में पोछा लगाकर ही दोपहर में सोया जाता था और शाम को फिर छत और आंगन को धो दिया जाता था। वो भी दिन थे। और अब अगला गाना, इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये फिल्म कौन सी है और आवाज किनकी है।

फिल्म कादंबरी का ये गाना आशा भोसले की आवाज में आपने सुना, और असली नकली फिल्म के गाने के लिए हमारे श्रोताओं ने बताया है कि ये गीत संध्या नाम की कलाकार पर फिल्माया गया है, जो फिल्म में अनवर हुसैन की बहन बनी है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, और हो भी क्यों ना, सब सारे मौसमों का अलग अलग महत्व है, और तरह तरह के पेय पदार्थ इन्होंने बताए हैं कि वो पीकर हम अच्छी तरह से गर्मी बिता सकते हैं। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी आज की बारिश शायद प्रकृति और मौसम पर हो, कहीं पर तेज और भयंकर गर्मी पड़ रही है तो कहीं पर झमाझम बादल बरस रहे हैं। हम भी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर गर्मी का कोई नामो निशान नहीं है। अभी कल रात को भी हमारे यहाँ बारिश हुई जिससे मौसम और भी सुहाना हो गया। तो बताइए ना, ये अंदाज मौसम का क्या बदला बदला नहीं लगता? और इस तरह के अंदाज के साथ क्या ये बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो जाती कि जैव विविधता की अनुपस्थिति में ही हम इस तरह की जो मुश्किलें हैं वो झेल रहे हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का मौसम बहुत सुहावना हो गया है, गर्मी की तपिश में आज सुकून की पानी की बूंदें बरसी और तन मन को ठंडा कर गई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। और अब कार्यक्रम को समाप्त करने की आपसे ले रही हूँ इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

भारतीय राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 29वीं कड़ी।

1905 में बंगाल विभाजन के समय हिंदू और मुसलमान समाज एकजुट था। इतना ही नहीं, उसी आंदोलन के समय वंदे मातरम गीत प्रसिद्ध हुआ। इस आंदोलन में लड़ने वाले मौलवी मोहम्मद अकरम खान, मौलवी शमशद हुदा, मौलवी दीन मोहम्मद जैसे कई लोगों ने वंदे मातरम का समर्थन किया था। उनमें से मोहम्मद अकरम खान जैसे उच्च शिक्षित धर्मगुरु स्वयं इस आंदोलन के प्रमुख नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के साथ वंदे मातरम गाते थे। वंदे मातरम पर पहली पाबंदी मुसलमानों ने नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार ने ही लगाई थी।

0: बंग भंग विरोधी आंदोलन के समय 7 अगस्त की सभा में वंदे मातरम ने युद्ध गर्जना का रूप ले लिया और बंगाली जनता ने इसे किसी तेज धार हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि इन दो शब्दों ने ब्रिटिश सरकार को भयभीत कर दिया। 7 अगस्त की विराट सभा के पश्चात एवं 16 अक्टूबर को लागू हुए बंगाल के विभाजन के तुरंत बाद अगले ही महीने 8 नवंबर को विभाजित बंगाल के नवनियुक्त गवर्नर फुल्लर के सचिव पीसी लियोन ने एक परिपत्र जारी किया था जो लियोन सर्कुलर के नाम से कुख्यात है। वंदे मातरम पर पाबंदी के इतिहास में ये पहला हुक्मनामा है। इस हुक्मनामे में भी मुसलमानों के तुष्टीकरण का प्रयास साफ दिखाई देता है।
1: टू द कमिश्नर ऑफ द ढाका डिविजन, सर, आई एम डिजायर्ड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू इन्फॉर्म यू दैट इंसिडेंट्स हैव रिसेंटली अकर्ड विच इंडिकेट दैट द शाउटिंग क्राई वंदे मातरम इन द स्ट्रीट्स और अदर पब्लिक प्लेसेस।
2: प्रति विभागीय आयुक्त ढाका, महोदय, लेफ्टिनेंट गवर्नर की इच्छा के अनुसार मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि हाल ही में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे संकेत मिलता है कि सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर वंदे मातरम का नारा लगाने से शांति भंग होने की संभावना है। इसलिए इस पर उचित रूप से रोक लगाई जानी चाहिए। इस कारण से पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए जाएं, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर की इच्छा के अनुसार मैं आपको ये भी सूचित करना चाहता हूँ कि वर्तमान जनभावना की स्थिति में सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक या अर्ध राजनीतिक सभाओं की अनुमति न दी जाए, हालांकि वे बंद परिसरों में आयोजित की जा सकती हैं। यदि जुलूस या ऐसी सभाएं अनुशासित हों तो उन्हें सड़कों से गुजरने की अनुमति दी जाए, परंतु उनमें गाना या नारे लगाना नहीं होना चाहिए। यही आदेश संकीर्तन मंडलियों पर भी लागू माना जाए। श्रीमान फ्यूलर ने यह भी सूचित किया है कि कुछ स्थानों पर अंग्रेज महिलाएं स्टेशन रोड से अपमान या परेशानी उठाए बिना गाड़ी में नहीं जा सकती। प्रशासन पर लगा यह गंभीर कलंक पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। सड़कों पर गश्त की नीति को यदि आवश्यक हो तो मजबूत किया जाए और जहां यूरोपीय लोगों या मुसलमानों के साथ अशिष्ट व्यवहार किया जाए वहां हस्तक्षेप करने, नाम पता दर्ज करने और इनकार करने

0: पर अपराधी को थाने ले जाने के आदेश दिए जाएं। प्रमुख सचिव पीसी लियोन एंड इफ द लैटर आर रिफ्यूज्ड कंडक्टिंग ऑफेंडर टू थाना सेक्रेटरी पीसी लियोन।
1: वंदे मातरम पर पाबंदी लगाते समय मुस्लिम समाज के मन में वंदे मातरम के प्रति संदेह और दूरी पैदा करने का प्रयास सबसे पहले इसी हुक्मनामे के द्वारा किया गया। बारिसाल के अधिवेशन में वंदे मातरम कहने वाले आंदोलनकारियों पर फुल्लर के आदेश से जो अमानवीय लाठीचार्ज हुआ, उस बारिसाल अधिवेशन के अध्यक्ष अब्दुल रसूल मुस्लिम ही थे। फुल्लर के इस आदेश का मुस्लिम जनता पर कोई खास असर नहीं हुआ, उल्टे फुल्लर की कार्रवाइयों के कारण सभी ओर से उन पर आलोचना होने लगी। फुल्लर के कारण ही ब्रिटिश सरकार की छवि मुस्लिम समर्थक नीति अपनाने वाली सरकार जैसी बनने लगी।
0: बंग भंग विरोधी आंदोलन में पूर्व बंगाल के नवाब मोहम्मद हुसैन के बेटे मोताहर हुसैन ने अश्विनी कुमार दत्त के साथ मिलकर स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया। उन्हीं के नेतृत्व में मुस्लिम किसानों ने वंदे मातरम पाबंदी के विरोध में नारे लगाते हुए जुलूस निकाले। लाला लजपत राय ने पंजाब में उस दमन चक्र के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जो फिलर ने बंगाल में चला रखा था। एक सभा में वे स्पष्ट रूप से बोले,
2: वंदे मातरम नारे का मुसलमान विरोध करते हैं, इसलिए सार्वजनिक शांति कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ये उपाय कर रही है। ये परेशानियों से बचने के लिए दिया गया एक झूठा तर्क है। एक भी मुसलमान ने वंदे मातरम की पाबंदी का समर्थन नहीं किया है।

0: मद्रास में एक घटना में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्थानीय मुस्लिम नेताओं की उपस्थिति में इसी तरह का आह्वान किया था। 1905 में ही कलकत्ता के पास एक ब्रिटिश नागरिक के मालिकाना हक वाली फोर्ट ग्लॉस्टर मिल नाम की कपड़ा मिल थी। कुछ असंतोष के कारण कामगारों ने वहां के अंग्रेज अधिकारियों के सामने वंदे मातरम के नारे लगाए। मालिक ने तत्काल कार्रवाई की। इससे गुस्सा होकर शाम को मिल छूटते समय लगभग 9,000 मजदूरों ने एक साथ वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। मालिक ने जिला पुलिस अधीक्षक को भी बुला लिया। कुछ मजदूरों को गिरफ्तार किया गया।
1: उसके बाद वंदे मातरम पर लगी पाबंदी हटवाने के लिए उन मजदूरों ने एकजुट होकर हड़ताल की। बंगाल में अब शिक्षित ही नहीं बल्कि कामगार वर्ग और गांव देहात का समाज भी वंदे मातरम के प्रति जागरूक हो गया था।

0: मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
2: धरती

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को सबकी साझा जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में बीएसएफ के अलंकरण समारोह में उन्होंने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद

0: बावजूद बीएसएफ ने देश का गौरव बनाए रखा है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर आज भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्री समिट इवेंट आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस आयोजन में बिग कैट और जैव विविधता संरक्षण पर विचार विमर्श किया जा रहा है। भारत में चीता पुनर्स्थापन अभियान पर भी विशेष प्रस्तुति इस कार्यक्रम में दी गई। इसके साथ ही इंडियाज बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट 2026 सहित कई प्रकाशनों और डिजिटल पहलों का विमोचन भी हो रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि
1: धरती पर 30% भाग जो है वो वनों से आच्छादित, भारत में भी लगभग 23% वन आच्छादित है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने दुनिया के सामने लक्ष्य रखा था कि हम 3.5 बिलियन टन कार्बन श्रिंक के द्वारा अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, भारत ने उसको 90% लक्ष्य को हासिल कर लिया है। और हमने जो दुनिया को अपना टारगेट दिया है 2030 तक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हम निश्चित रूप से उसको हासिल करेंगे।
0: धार की भोजशाला में आज शुक्रवार यानी जुमे के दिन हिंदू समुदाय ने पूजा अर्चना की। हाईकोर्ट ने 15 मई को भोजशाला को वाग देवी मंदिर करार दिया था, जिसके बाद शुक्रवार की नमाज पर रोक लग गई है। दोपहर 1 बजे गर्भगृह में महाआरती हुई और फूलों से सजे परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। भोपाल में 12 मई को हुई त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच अब सीबीआई करेगी। प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। कटारा हिल्स थाने में दर्ज दहेज मृत्यु के इस मामले को सीबीआई को सौंपा गया है। राज्य सरकार ने सीबीआई को पूरे प्रदेश में जांच के अधिकार भी दे दिए हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज प्रदेश के दौरे पर हैं। वे रात में 8 बजे अशोकनगर पहुंचेंगे। श्री सिंधिया वहां जैन तीर्थ थुबोन में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं कल सुबह श्री सिंधिया नक्षत्र वाटिका शिवपुरी में कार्यक्रम के बाद गुना के लिए रवाना होंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल आज से 24 मई तक प्रदेश के 7 जिलों के दौरे पर हैं। वे गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर ग्रामीण, निवाड़ी, छतरपुर और सतना में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। प्रत्येक जिले में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओं के लिए नए नियम लागू करने जा रही है। इसके लिए आमजनों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रस्तावित कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 का मसौदा gad.mp.gov.in पर उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति, संस्था या हितधारक 5 जून 2026 तक अपने सुझाव वेबसाइट मेल sogad1@mp.gov.in पर कर सकता है। अब रुक करते हैं खेलों की खबर का। जापान में होने वाले अंडर 18 एशिया कप के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम में मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी के 6 खिलाड़ियों को जगह मिली है। इनमें गोलकीपर आयुष रजक, डिफेंडर अंश बहुत्रा और करण गौतम, मिडफील्डर अभी मानिकपुरी और फॉरवर्ड सिद्धार्थ बेन तथा गाजी खान शामिल हैं। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में नौतपा से पहले ही गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। कई शहरों में पारा 38 से 40 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज 41 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच में जनभागीदारी सप्ताह एवं गरिमा उत्सव के तहत ग्राम कानोड़ में 15 उज्ज्वला गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। शिवपुरी जिले में ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान आरसीटी के द्वारा 13 दिवसीय कृषि उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम का कल समापन हुआ। और आगरमालवा के बैजनाथ महादेव मंदिर के प्राचीन कमलकुंड से 7 कछुओं को कल वन विभाग द्वारा रेस्क्यू कर सुरक्षित जलाशय में छोड़ा गया। वहीं आईपीएल में कल रात अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई को 89 रनों से हराया। आज शाम हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी।

0: और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
1: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
1: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार हैं। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान

0: राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की एक एक सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
1: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
2: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
3: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है।

0: है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
2: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी का। आइए सुनते हैं बसंत बहार फिल्म का गीत, भीमसेन जोशी और मन्ना डे की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

बसंत बहार फिल्म का ये गाना आपने सुना, भीमसेन जोशी और मन्ना डे की आवाज़ों में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत था। सच बसंत बहार फिल्म के इस गीत के साथ ही तो जैसे फूलों की रह गुजर खुल गई, सदा बहार गीतों का ये रास्ता अब फंटूश फिल्म के इस गाने की ओर ले चला है। आशा भोसले की आवाज़ में सुनवा रहे हैं साहिल लुधियानवी का लिखा गीत, जिसे सुरों में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

0: फूलों की इस खुशबू को कुछ और साथ लेकर चलते हैं, जन्म जन्म के फेरे फिल्म के इस गाने के साथ। लेकिन इस गीत के पहले हम आपको सुनवा रहे हैं ये संदेश।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बारिश फिल्म का ये गीत पंछियों की उड़ान लेकर आया लता मंगेशकर और चितलकर रामचंद्र की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ ये गीत आपने सुना, जिसे शुरू में पिरोया था चितलकर रामचंद्र ने, और अब आपको सुनवा रहे हैं चंपाकली फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज़ है, गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

0: बड़ा भाई फिल्म का ये गाना आपने सुना, आशा भोसले और तलत महमूद का गाया हुआ। गीत लिखा प्रेम सक्सेना ने और धुन बनाई नौशाद ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास।

नई दिल्ली फिल्म का ये गाना आपने सुना, शैलेंद्र ने लिखा था और शंकर जयकिशन ने संगीत से सवारा था। ये गीत ही बना आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। तो अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: आज शुक्रवार है और आप कुछ ही पलों में सुनेंगे कार्यक्रम हेलो सहेली।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम हेलो सहेली का कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आप जो मुकाम हासिल करना चाहती हैं, जिसका आपने कभी सपना देखा था, उसे पाने की कोशिश के लिए सपनों को पंख लगा दें, क्योंकि कोई भी काम छोटी सी शुरुआत से ही होता है। काम छोटा बड़ा नहीं होता। खुद पर भरोसा रखें, कभी हार नहीं माने। जीवन में सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो तेज दौड़ते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो दौड़ते रहते हैं और हमेशा गतिशील रहते हैं। और गतिशील रहने के लिए हमें प्रयास करना होता है, जैसा कि हेलो सहेली कार्यक्रम में आप हमें कॉल लगाने के लिए बार बार प्रयास करती हैं और सफलता मिलने पर खुशी की बरसात होती है। तो चलिए देखते हैं आज किस शहर से और कौन सी सखी हमारी पहली कॉलर होती हैं। तो ये लीजिए, फोन की घंटी बज गई। हेलो सहेली।
1: जी जी नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: और क्या करती हैं आप?
1: जी दीदी, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो घर के ही काम करती हूँ।
0: घर में भी तो बहुत सारे काम होते हैं, तो हाउस वाइफ की तो जो पूरी जिम्मेदारी होती है एक परिवार को पालने पोसने की, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिम्मेदारियों को अपनी बाखूबी से निभा रही हैं। तो रंजीता जी, आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है और आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में भी हमें बताएं।
1: जी दीदी, मेरी दिन की शुरुआत तो सुबह ही हो जाती है। सुबह उठते हैं, फिर जैसे अभी तो गर्मी का सीजन है, तो चाय वगैरह तो अभी पीते नहीं है गर्मी का है तो, और सुबह उठते हैं, फिर फ्रेश वगैरह होते हैं, ब्रश वगैरह करने के बाद सीधा जैसे घर के काम है, नाश्ता वास्ता बनाना है, तो सुबह हम लोग रोटी सब्जी खाते हैं
0: जी।
1: तो फिर सुबह रोटी सब्जी बनाती हूँ, उसके बाद बाकी काम है जैसे झाड़ू पोछा बर्तन है, तीन बच्चे हैं तो उनको उठाना, फिर उन लोग का ब्रश वगैरह करवाना, फिर उन लोग को नाश्ता कराना। ये सब
0: लगता है आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, है ना?
1: जी जी, बेटा बड़ा है
0: जी
1: और गुड़िया है, वो छोटी है अभी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, और आपके क्या शौक रहे हैं बचपन में?
1: जी मैं जैसे कि पढ़ाई करती थी तो उसके साथ साथ मुझे सिलाई बुनाई करने का शौक है, घूमना फिरना भी बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप सिलाई में क्या कर लेती हैं और बुनाई में आपको क्या पसंद है? आपने सबसे ज्यादा क्या चीज बुनाई करी है?
1: जी दीदी, मैं जैसे बुनाई में पर्दा वगैरह है या पैरदान है, थाली टोकने का जो होता है वो सब बनाती हूँ, और जैसे कि सिलाई में मुझे सब कुछ आता है, जैसे बच्चों के लिए फ्रॉक, अपने लिए ब्लाउज। ये
0: जी क्या बात है, बहुत अच्छा हुनर है जिसको आप आगे अपने घर में कर रही हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपनी पसंद का कोई गाना बताइए हमें।
1: जी दीदी, मैं जीना है तो हंस के जियो
0: जी,
1: खाने दाल छीलू।
0: अच्छा, तो लीजिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: दीदी आदाब।
0: आदाब, अपना नाम बताइए।
1: जी दीदी, मैं जिला रामपुर ग्राम खड़िया एक मिनार वाली मस्जिद के पास से शबनम अब्बासी आपसे मुखातिब हूँ। दीदी दीदी मैं हेलो फरमाइश भी सुनती हूँ, हेलो सहेली भी सुनती हूँ, सही सहेली भी सुनती हूँ, सब कार्यक्रम सुनती हूँ और रेडियो मेरे पार्लर में चलता रहता है और कार्यक्रम सुनती रहती हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि आपका काम है पार्लर में लोगों की खूबसूरती।
1: दीदी
0: ट्यूशन है, बहुत अच्छी बात है ये। आप यानी कि बहुत सारी सखियों को आप बहुत सुंदर सुंदर बना करके तैयार करती हैं, है ना?
1: जी दीदी।
0: ये जो आप ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं, पार्लर चला रही हैं, तो कितने साल हो गए इसको चलाते हुए?
1: दीदी ये मम्मी करती थी, अब हम भी करने लगे हैं दीदी, इसे 10-12 साल से भी ज्यादा हो गए।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी सी बात है। और आपके शहर में क्या चीज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है?
1: दीदी हमारे शहर में तो मतलब जो रामपुर की जो मशहूर चीज है वो है चाकू।
0: अच्छा अच्छा,
1: कहना चाहती हूँ तो लाइना आपके लिए, हम वो नहीं जो मतलब से प्यार किया करते हैं, हम वो नहीं जो रिश्तों से प्यार किया करते हैं। दीदी आपका पैगाम आए ना, हम आपको दिल से याद किया करते हैं। दीदी
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी प्यारी सी लाइन कही और हम भी आप सभी को दिल से याद करते हैं। तो अब आप बताइए कि कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: दीदी फिल्म का नाम रहेगा जान और गाने के बोल हैं, तेरे सीने में मेरा दिल धड़की, मेरे सीने में तेरा दिल जान, ओ मेरी जान।
0: लीजिए शबनम जी आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुनते हैं अगली किस सखी ने हमें कॉल किया है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहां से बोल रही हैं?
1: मैं संयोगिता बोल रही हूँ, चंडीगढ़ से।
0: संयोगिता जी, आप चंडीगढ़ से बोल रही हैं। चंडीगढ़ अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत शहर है
1: जी।
0: तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम बहुत अच्छा है, रहता है हमेशा, लेकिन अभी 2 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी शाम को अच्छा हो जाता है।
0: संयोगिता जी, अपने बारे में आप कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या क्या हैं और आपको किन चीजों में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, रुचि है आपकी?
1: दीदी, मेरा बहुत ज्यादा शौक है कुकिंग का। मैं कुकिंग और बेकिंग दोनों करती हूँ। बेकिंग के लिए मैं कॉलेज जाती हूँ, वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ ताकि वो अपना करियर अच्छे से कर सके बेकिंग में।
0: बेकिंग में आप क्या क्या बताती हैं?
1: बेकिंग में दीदी मेरा है, ब्रेड बनाना सिखाती हूँ। बहुत तरह की ब्रेड्स होती हैं, केक्स है, आइसिंग केक और बिस्किट्स हैं, और चॉकलेट की भी क्लासेस होती है। तो मेरे जो घर पे क्लासेस

0: होती है वो हाउसवाइफ रिटायर्ड लोग कोई भी कर सकते हैं
1: जी,
0: और कॉलेज में सिर्फ ग्रेजुएशन के बच्चे।
1: क्या बात है, यानी कि बहुत सारे बच्चे बड़े खुश होते होंगे जब आप तरह तरह की केक सिखाती होंगी। तो केक के लिए क्या खास जरूरी होता है ध्यान रखना कि हम जब केक बनाने चलते हैं तो हमें किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए?
0: केक के लिए दीदी सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका रेशियो
1: जी,
0: और जब हम ओवन में बनाते हैं तो भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है, और जब हम गैस से बनाते हैं तब भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है
1: जी।
0: और उसका बेकिंग का एक ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स का
1: जी,
0: तो उसको ध्यान में रख करके किया जाता है। मेन है इसका कि जो भी इंग्रेडिएंट हम लें वो हमारा रूम टेम्परेचर के हो और उसका रेशियो बिल्कुल परफेक्ट हो,
1: बिल्कुल
0: केक बहुत अच्छा बनता है।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही बात कहा कि रेशियो, नाप तौल जिसे कहते हैं, नाप तौल बहुत अच्छी होनी चाहिए उसमें। इसके लिए तो मेजरमेंट कप्स भी आते हैं जिससे नापा जाता है।
0: हाँ, जी
1: तो जो आपने बताया गैस पर केक बनाने का तरीका, तो उसको आप किन बर्तनों में इस्तेमाल करती हैं केक बनाने के लिए?
0: केक बनाने के लिए दीदी जिसके पास ओवन नहीं है वो हेवी पैन की कढ़ाई ले
1: जी,
0: चाहे कोई पतीला ले
1: जी,
0: उसके अंदर आप नमक डाल दीजिए 1 किलो नमक
1: जी,
0: उसके ऊपर जो हम स्टैंड जिसमें हम बर्तन रखते हैं वो स्टैंड हम उस पर रख सकते हैं, और उसके बाद जो बेकिंग डिश है जो एल्युमिनियम की आती है बेकिंग ट्रे हमारी, उसमें हम केक के बैटर को रख करके हम उसमें रखेंगे और उसको ढक करके हमको 45 मिनट्स के लिए छोड़ देना होता है।
1: तो इसको संयोगिता जी, जब केक आपका 20 मिनट या 45 मिनट्स के लिए आपने रखा है, तो उसको कैसे पता करेंगे कि केक आपका रेडी हो गया है, तैयार हो गया है?
0: एक टूथपिक की सहायता से दीदी उसको चेक करते हैं, अगर उसमें नहीं लगा है इट मीन्स कि केक आपका रेडी है, अगर उसमें थोड़ा बहुत लगता है तो आप 5-7 मिनट के लिए और छोड़ दीजिए।
1: क्या बात है, और फिर जब इसको ठंडा हो जाएगा तब इसको निकालना रहता है ना?
0: इसको निकालिए बिल्कुल अपने मन मुताबिक, आइसिंग करिए और उसका मजा लीजिए।
1: क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छी चीज बताई है। और संयोगिता जी ये बताइए, हम ये भी जानना चाहते हैं कि और आपके क्या क्या शौक है, इसके अलावा बचपन में आप क्या क्या शौक रखती थी?
0: दीदी बचपन से तो मुझे गाने का और डांस का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन तब इतनी सुविधा नहीं थी और इतने स्कूल कॉलेजेस नहीं थे जहाँ ये सब चीजें सिखाई जाए। हम लोग रूटीन के जो कॉलेज में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था इन्हीं यही सब डांस करते थे। गाने का बहुत शौक था, शादी के बाद हस्बैंड भी बहुत गाने के शौकीन है, बिटिया भी मेरी कथक करती है,
1: उसने
0: ग्रेजुएशन किया है, तो गाने की परंपरा हमारे घर में बनी हुई है। मेरी मासियां, मेरी अम्मा अब नहीं है लेकिन वो भारती बहुत सुनती थी और सखी सहेली उनका फेवरेट प्रोग्राम होता था।
1: क्या बात है,
0: उन्हीं के साथ सुनते सुनते मेरी सखी सहेली सुनने की आदत पड़ी।
1: क्या बात है, यानी हमारे विविध भारती के रेडियो के प्रोग्राम आप बहुत सारे सुनती आई हैं बचपन से?
0: बहुत बचपन से जी, हम घड़ी नहीं देखते थे, हम प्रोग्राम के हिसाब से सोचते थे कि अच्छा इतना बज गया ये आएगा।
1: हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही की। आपने बोला की आपको गाने का भी शौक है, तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
0: आज तो दीदी आप सुना दीजिए मुकद्दर का सिकंदर का गाना, सलामे इश्क मेरी जान।
1: ठीक है संयोगिता जी, आपको हम आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो, मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ, कल्पना खरे।
0: जी कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। और बताइए, अपने बारे में बताइए।
1: आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो मैं बहुत दिन से फोन लगाती थी, कभी भी लगता ही नहीं है, हमेशा एंगेज जाता है
0: जी।
1: तो उसके लिए मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरा फोन लग गया।
0: क्या बात है, देखिए आज आपने इतनी कोशिश करी, आपने दिल से फोन लगाया तो आपका फोन लग गया, और ये बहुत अच्छी बात है। कोशिश करते हैं तो सफलता हमेशा मिलती है ना कल्पना जी।
1: और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आवाज सुनने के लिए हम तरस जाते हैं, इतनी मीठी इतनी अच्छी आवाज है आपकी।
0: क्या बात है। और बताइए कल्पना जी, आपके क्या क्या शौक हैं, आपका बचपन कैसा बीता?
1: एक्चुअल में हमारे पेरेंट्स जो है हमेशा रेडियो पे ये कुछ कुछ प्रोग्राम सुनते ही रहते थे, तो हम लोगों को भी इन्हें बचपन में तो इतना समझ नहीं आता था
0: जी।
1: लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए, हम लोग को लगा कि नहीं नहीं अच्छा लगता है गाने सुनना है, यंग एज होती है तो ये सब चीजें अच्छी लगने लगती हैं अपने आप
0: जी।
1: तो हमारे घर में हमेशा हमारे पेरेंट्स हैं अम्मा बाबू जी
0: जी।
1: तो एक्चुअल में तो मैं झांसी की हूँ
0: जी,
1: और छाया गीत, ये त्रिवेणी, सभी मतलब हम लोग सच्ची सहेली ये सब सुनना पसंद करते हैं हम लोग।
0: क्या बात।
1: और हाँ, रेडियो हमारे बहुत पुराना, पहले जो चलता था यानी नॉब जो घुमा के और वो नहीं आवाज कम ज्यादा का, तो बहुत मजा आता था उसमें। अब तो खैर बहुत इजी हो गया है सब कुछ।
0: हाँ, अब तो सब मोबाइल में भी रेडियो आ गया है, हम कहीं भी बैठे रेडियो सुन सकते हैं, तो सुविधा हो गई। लेकिन वो जमाना, वो रेडियो का जो दौर था, वो जमाना जो रेडियो का दौर था वो बहुत ही अलग था। सबके घरों में बढ़िया बढ़िया रेडियो हुआ करते थे, सब सुबह से लेकर रात तक प्रोग्राम सुनते थे, तो कहना चाहिए मनोरंजन का एकमात्र वही साधन था, है ना कल्पना जी?
1: वही साधन था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ
0: जी। और कल्पना जी, आपने अपनी पढ़ाई वगैरह कहाँ से करी?
1: मेरी झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मैंने एमए सोशियोलॉजी में किया हुआ है।
0: जी जी जी।
1: हाँ,
0: और
1: मतलब बहुत अच्छे दिन निकले मेरे बचपन, बहुत ज्यादा अच्छा निकला।
0: सही बात है।
1: ससुराल भी बहुत अच्छी मिली, सब कुछ, सभी लोग म्यूजिक के इतने शौकीन है ने, हमारे ससुर तो सहगल के गाने गाते थे हमें।
0: क्या बात है, गाने की महफिल लग जाती यानी आपके घर में।
1: हाँ, और सभी सिंगर है हमारे, देवर वगैरह सब अभी भी मतलब 60+ हो गए हैं
0: जी,
1: तब भी वो क्लास जाते हैं, ज्वाइन की हुई है। मेरा बेटा भी बॉम्बे में गिटारिस्ट है, वो भी गिटार बजाता है जॉब के साथ साथ।
0: क्या बात है।
1: हाँ, और बेटी भी मेरी गुंजा बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा।
0: क्या बात है।
1: मैं तो एक्चुअल में 63 इयर्स की हूँ अभी
0: जी जी।
1: और मतलब मुझे हर दिन जीने में मैं बहुत अच्छा लगता है कि हर दिन मेरा बहुत अच्छा निकले, इसलिए मतलब अच्छा समय मैं व्यतीत करती। बच्चों की मैरिज हो गई है
0: जी,
1: दोनों बच्चे, उसके बच्चे भी हो गए हैं अभी, मतलब

0: फ्री है एकदम
1: जी।
0: तो मुझे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं सबके लिए कि तुम्हें जो करना है अब करो अपने हिसाब से।
1: यानी कि जिंदगी में आप जो करना चाहती थी वो अपने शौक आप पूरे कर रही हैं और इस उम्र में भी कर रही हैं और बहुत एक्टिव हैं जैसा कि आपने बताया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर के। और आपके पतिदेव का बहुत सहयोग है, ये बहुत अच्छी सी बात है आपने बताई मुझे, तो बड़ा अच्छा लगा।
0: मेरी बेटी की मैरिज डे है, वो अपने हस्बैंड को वो 7 दिन का गाना कंगना कंगना डेडिकेट करना चाहती है।
1: हमारी तरफ से भी उनको बधाई दीजिएगा। और कल्पना जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम आपको आपकी पसंद का वो 7 दिन फिल्म का कंगना कंगना करके ये गाना आपको सुनवाते हैं।

0: समझ ले, मुंह से कहना मुश्किल है।
1: मैं बोली क्या जानू आंखों की

0: अंतराल के बाद हेलो सहेली लेकर हाजिर है आपकी सहेली मंजरी वर्मा। हेलो सहेली, कौन बोल रही हैं आप और कहां से बोल रही हैं?
1: मैं वैष्णवी मोरे बोल रही हूँ, नांदेड़ से।
0: वैष्णवी जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छे।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं घर पर रहती हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आप अपने मर्जी से कौन सा गाना?
0: ठीक है, तो मैं आपको अपनी पसंद का ये गीत सुनवाती हूँ।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अनु शर्मा बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: अनु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। और कैसी हैं आप, क्या करती हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हूँ। हेलो सहेली प्रोग्राम में कई दिनों से मैं कॉल लगा रही थी
0: जी,
1: आज जाके कॉल लगा।
0: देखिए क्या बात है, आज आपने कॉल लगाया और लग गया तो ये आपकी कोशिश रंग लाई है ना अनु जी।
1: बिल्कुल।
0: तो अनु जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो जॉब करती हैं इसके अलावा आपके और कौन कौन से शौक हैं?
1: मेरा सबसे ज्यादा जो पसंदीदा शौक है वो मेरा है गाना गाना और गाना सुनना।
0: क्या बात है, तो विविध भारती से आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनना पसंद करती हैं, कौन कौन से रेडियो पर प्रोग्राम सुनती हैं?
1: विविध भारती से सबसे पसंदीदा तो सखी सहेली, हेलो फरमाइश
0: जी जी,
1: छाया गीत, ये सब बचपन से सुनते आए हैं तो बहुत अपना सा फील होता है। आज भी 6 बजे चालू हो जाता है।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और अच्छा ये बात बताइए कि आपको खेलना पसंद है?
1: बिल्कुल खेलती हूँ मैं।
0: और अभी भी खेलती हैं या बचपन में या स्कूल में आपके कौन से खेल पसंद के होते थे?
1: बैडमिंटन, कैरम, चेस ये पसंद करती हूँ।
0: अच्छा, तो अभी भी आपको समय मिल जाता है जॉब के बाद?
1: निकालना पड़ता है थोड़ा
0: जी,
1: हेल्दी रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि हम इंश्योरेंस में सब लोगों को यही सिखाते हैं कि अपना प्रोटेक्शन भी रखें और स्वस्थ भी रहें
0: जी।
1: हेलो सहेली सुन सुन के बहुत अच्छा फील होता है।
0: क्या बात है, आप हमारे विविध भारती के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको भी आप सुनती रहिए इसी तरह। और आपको आज हम कौन सा गाना सुनवाएं?
1: आज आप मेरी पसंद का गाना सुनवाइए, नाम गुम जाएगा।
0: क्या बात,
1: किनारा फिल्म से है।
0: अनु जी, आपने इतना प्यारा गाना बताया है नाम गुम जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि आपने कहा है कि आपको गाना पसंद है, तो क्यों ना आप एक दो लाइन हमारे

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल
1: हाँ
0: रही
1: जी
0: हैं?
1: मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैम मैं डॉली बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: डॉली जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए, आप भोपाल से हैं तो वहाँ का कैसा मौसम है इस समय?
1: मैम इस तरह तो गर्मी है और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि गर्मी की वजह से
0: जी,
1: सारा लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं बहुत ही।
0: गर्मी से बचने के लिए आप क्या उपाय अपनाती हैं ये बताइए मुझे।
1: गर्मी से बचने के लिए देखो प्रतिदिन तो सब स्नान करते ही हैं,
0: जी जी जी
1: ऊपर से जैसे ठंडा कुछ जैसे नींबू की सिकंजी है या रुआबजा है
0: जी
1: या दही की लस्सी है, ये पीते हैं सब, ग्लूकोज है घोल के, बस इसी वजह से सबको

0: पढ़ाई मिलती है।
1: क्या बात है। और आम का पना नहीं बनाती आप?
0: मैम आम का पना नहीं बनाते हम। जैसे अगर जैसे आम की अगर आपको लस्सी बनाना है तो आप मिक्सी में मिक्स करके और बढ़िया बर्फ वगैरह डाल के जो आप जा डाल के बढ़िया पीजिए, अच्छा लगता है। मैम मैं अपने परिवार का नाम लेना चाहती हूँ अगर आपकी इजाज़त हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल लीजिए अपने परिवार का नाम।
0: मैम मेरे हस्बैंड का नाम विकास अग्रवाल है और मैं उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देती हूँ रेडियो के जरिए। और मेरी सास का नाम सुमन है, मेरे ससुर का नाम महेंद्र है और मेरे देवर का नाम विशाल है और मेरे जो मायके में मेरे पापा का नाम धनराज कुकरेजा है, मेरी माँ का नाम फूला है और मेरे भाई का नाम अमित सुमित और भाभी का नाम संतोषी और उनके बेटे का नाम शिवा। ये है मेरा समस्त परिवार।
1: आपके परिवार के नाम जानकर बहुत अच्छा लगा। अपने पतिदेव को हमारी तरफ से विविध भारती परिवार की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिएगा। आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
0: राम लखन फिल्म का गाना सुनना है और वो है 1 2 4 माय नेम इज लखन।
1: तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हम बिहार से किशनगंज जिला से बोल रहे हैं
0: जी। आपका नाम क्या है?
1: जी, मेरा नाम अशिया नाज है।
0: अशिया नाज, बिहार में हैं आप रहती, तो बिहार के बारे में कुछ बताइए।
1: बिहार अच्छा ये राज्य है
0: जी,
1: यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है।
0: अशिया जी, बिहार के जो खान पान है, जो वहाँ की चीजें स्वादिष्ट बनती हैं, उनमें से आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आता है बिहार का?
1: ये सबसे ज्यादा पसंद आता है दाल चावल, गोलगप्पे खाना पसंद है।
0: क्या बात है। तो चलिए अर्शिया जी, बताइए कि आज आप कौन सा गाना हेलो सहेली में सुनना पसंद करेंगी?
1: हिना फिल्म का है।
0: हिना फिल्म का,
1: और गाने का भूल है मैं हूँ खुश रंग।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने पसंद किया है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं दक्षा जहाँ बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: दक्षा जहाँ, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: घर पर ही रहते हैं, अभी तो गर्मी की छुट्टी है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर।
0: जी,
1: विविध भारती सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हेलो सहेली और हेलो फरमाइश, ये सब ज्यादा अच्छे लगते हैं। आज के मेहमान, सब कार्यक्रम सुनती हूँ मैं।
0: तो दक्षा जी, आज आप क्या सुनना पसंद करेंगी, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: गाना हमारे दादाजी की पसंद का, जैसे जब भी फोन लगाते हैं तो वो कहते हैं रेडियो जैसे हम लोग सुनते हैं
0: जी,
1: तो वो बोलते हैं कि ना मेरी पसंद का भी गाना सुनो कभी, तो उनकी फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल बताइए अपने दादाजी की पसंद।
1: वादियाँ मेरा दामन अभिलाषा फिल्म का गाना है।
0: तो दक्षा जी लीजिए, सुनते हैं आपकी पसंद का, आपके दादाजी की पसंद का, वादियाँ मेरा दामन, ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं महाराष्ट्र पुणे से शुभदा इनामदार बोल रही हूँ।
0: शुभदा जी, आपका हेलो सहेली में फोन लगा है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है हेलो सहेली में आकर।
0: जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं एक सेवानिवृत्त सीनियर सिटीजन हूँ और जूनियर कॉलेज में अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: तो आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी?
1: मैं जूनियर कॉलेज में 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ाती थी। मराठी मेरा सब्जेक्ट था और ज्योग्राफी भी मैं सिखाती थी। अब मैं रिटायर होकर 15 साल हो गए हैं मुझे
0: जी।
1: तो अब मैं खाली वक्त मुझे बहुत मिलता है तो मैं विविध भारती सुनती हूँ, क्योंकि बच्चे सब काम पर चले जाते हैं तो अकेलापन विविध भारती के जरिए मेरा कम हो जाता है और बहुत खुशी मिलती है।
0: क्या बात है, तो हमारे विविध भारती के बहुत सारे प्रोग्राम आप सुनती होंगी, तो आपको कौन कौन से प्रोग्राम अच्छे लगते हैं?
1: मुझे पहले सखी सहेली और हेलो सहेली तो अच्छे लगते ही है, और साथ ही साथ भूले बिसरे गीत, वंदे मातरम, त्रिवेणी, छाया गीत, ये सभी प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आते हैं।
0: क्या बात है,
1: थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, ललित लेख, कथा, प्रासंगिक कविता मराठी में लिखती हूँ
0: जी।
1: जो

0: कभी कभी न्यूज़पेपर और मासिक पत्रिका में छप भी जाता है।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लिखती हैं। और हाँ, तो आप हमें आज कौन सी कविता की कुछ पंक्तियां सुना सकती हैं?
0: हे सखी, हेलो सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो नित नई नवेली। किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम लगती हो सबको प्यारी न्यारी दुलारी। हेलो सहेली, ज्ञान विज्ञान साहित्य समाज उत्सव संस्कार से लेकर गीत संगीत कला क्रीड़ा तक करवाती हो सभी का दिलकश मनोरंजन, साथ ही साथ मिलता है उस बोधन का अंजन। मंजरी जी,
1: जी?
0: अनुश्री प्रस्तुत हेलो सहेली ने स्नेह का दीप गुणों की आरती, वाणी में ममता आपस में मौज मस्ती और मंजूल सी सरलता।
1: धन्यवाद। आज आप कौन सा गाना पसंद करेंगे सुनना?
0: मिस मेरी फिल्म का सच्ची रे सुन बोले पपीहा उस पर
1: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का मिस मैरी फिल्म का ये बहुत प्यारा सा गीत।

आज हेलो सहेली के सफर में सखियों से बातें करते पता ही नहीं चला बातों और गीतों ने समा बांध दिया। अब कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। चलते चलते आपको जानकारी दे दें, आपके कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फ़ोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 4

0: शून्य शून्य दो चार छः छः दो, एसटीडी कोड 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए, फ़ोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 28670288, एसटीडी कोड है 022। तो बस मंगलवार को लगाइए इन्हीं नंबर्स पर कॉल और अपनी नई सहेली से कीजिएगा ढेर सारी बातें। हेलो सहेली प्रोग्राम प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो सुनना याद रखिएगा। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हमारे सखा भाइयों से विनती है कि वे हेलो सहेली में कॉल नहीं लगाएं क्योंकि लाइन व्यस्त हो जाती है। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफ़र तय किया मंजरी वर्मा के संग, हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी गोल्ड मेडल। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। राधा और पुष्पा दो गरीब माँ बाप की बेटियां थीं। राधा की बड़ी बहन पुष्पा की शादी हो चुकी थी। राधा को माँ बाप स्कूल में पढ़ा रहे थे। वो किसी न किसी तरह मैट्रिक तक पढ़ने में कामयाब हुई थी, लेकिन जैसे ही जवानी की मंजिल में कदम रखा तो उसके पिता रामलाल ने प्रकाश नाम के आदमी से उसकी शादी कर दी।

राधा के गरीब माँ बाप ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था, लेकिन दहेज को देखकर प्रकाश के रिश्तेदारों ने नाक भौं चढ़ाई और पूछा, बस इतना ही सामान मिला है? प्रकाश के माँ बाप ने इस बात पर सिर हिलाया, आप जैसे बड़े अफसर के लिए ये दहेज बहुत ही कम है। रिश्तेदारों ने नफरत भरे स्वर में कहा, ऐसे कंगाल घराने में रिश्ता क्यों किया? उस वक्त तो बात आई गई हो गई, मगर जिस जहरीले पौधे को प्रकाश के रिश्तेदारों ने इनके ख्यालात के आंगन में उगा दिया था, उसने धीरे धीरे एक

बारातें दुल्हन की चौखट पर आकर रुक जाती हैं और कितने ही माँ बाप अपनी बदनामी के डर से आत्महत्या भी कर लेते हैं या फिर लड़कियां खुद को बोझ समझकर मौत के मुंह में चली जाती हैं।

आजकल हमारे समाज में रिश्ते बाप की हैसियत और समाज में उसकी ऊंचे और बुलंद मर्तबे को देखकर किए जा रहे हैं। लड़की की काबिलियत एक अलग ही चीज रह जाती है। वो कितनी ही अच्छी किरदार और नेक सीरत क्यों ना हो, अगर उसके बाप की हैसियत लड़के वालों से मेल नहीं खाती तो बात हजार बार भी बनाओ तो भी नहीं बनती, बल्कि बिगड़ जाती है। रिश्ते नातों के इस नीलाम घर में कोई भी बोली ऊंचे दहेज और माली तहफ्फुज के बिना नहीं लगाई जाती। दहेज कितना खूबसूरत और हसीन शब्द है, मगर इसका हुस्न तो दुल्हनों का लहू पीकर मुस्कुराता है। दहेज की लानत एक शोला है जो हसीन आंचल पर लहराता है। दहेज की लानत कभी सास के हाथों बहू को जहर पिलाती है, कभी ननद की चालें भाभी का गला घोटती हैं, कभी शौहर से तेल छिड़ककर आग लगवाई जाती है, तो कभी लड़की के पाक दामन पर दाग लगाए जाते हैं। इस तरह दहेज के लालची लोग औरतों का खात्मा करते हैं। प्रकाश अपनी बीवी राधा से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। उसके रवैये को देखकर घर वालों को भी शह मिल गई। वे उठते बैठते सोते जागते राधा से

दहेज की मांग करने लगे। शादी को एक साल का अरसा हुआ था। राधा बीमार रहने लगी। राधा के ससुराल वाले ठीक से उसका इलाज भी नहीं करवा रहे थे। बीमारी की हालत में ही राधा ने एक लड़की को जन्म दिया। दुख ये था कि बच्ची का एक पैर पोलियो का शिकार था। राधा की बड़ी बहन ने उस मासूम बच्ची की परवरिश करने की जिम्मेदारी ली और उस बच्ची का नाम रुक्मणी रखा गया, जो अपनी मौसी के साथ चली गई। राधा का रूप बड़ा दिलकश था। वो बहुत सुंदर थी। उसके संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी रहती थी। वो ससुराल वालों से ठीक तरह से पेश आती थी। किसी गलती के एहसास पर उसने कभी बुरा नहीं माना। ना वो बहस करती थी, ना तकरार। हंसकर अपनी गलती कबूल कर लेती थी। मगर उसकी कोई गलती ना भी हो तो भी वो उसे अपनी गलती समझकर स्वीकार कर लेती थी। इन्हीं बातों और खूबियों ने उसे एक खुश मिजाज औरत बना दिया था। लेकिन अपने ससुराल वालों की दहेज की मांग ने उसे उदास और निराश कर दिया था। राधा के चेहरे और होंठों पर मुस्कुराहट तो रहती थी, मगर दहेज के नासूर ने उसके सीने में गहरे जख्म कर दिए थे। अपने दुख को अपने तक ही रखने और दुनिया को दिखाने के लिए वो सामने सामने मुस्कुराती रहती थी। वो दुनिया को दिखाती थी कि इन हालातों में भी वो खुश है। हालात से समझौता करके वो खुश है।

मगर ऐसा नहीं था। वो रातों को रोती रहती थी, यहां तक कि उसके आंसुओं से उसका तकिया भीग जाता था कि कैसी नफरत थी जिसने एक औरत की आत्मा को मसल कर रख दिया था। राधा को दहेज का शब्द दीमक बनकर अंदर ही अंदर खा रहा था। दहेज की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राधा को मौजूदा समाज के नौजवानों की मानसिक गिरावट पर अफसोस हो रहा था। आज का हर नौजवान जैसे दहेज हासिल करने के लिए ही पैदा होता है। वो सोचती, अगर किसी के पास अच्छा दहेज देने की हैसियत नहीं है तो क्या वो अपनी बेटी की शादी करने के बारे में न सोचे। राधा के ससुराल वालों का दिमाग इस कदर बिगड़ चुका था कि उन्होंने राधा को मायके भेजने तक का मंसूबा बना लिया और 50,000 रुपये की मांग की। प्रकाश ने राधा से कहा, अगर तू 50,000 रुपये नहीं लाई तो अपनी मनहूस सूरत कभी मत दिखाना। एक दिन राधा रोती हुई अपने मायके चली गई। गरीब माँ बाप अपनी बेटी का ये सदमा बर्दाश्त न कर सके। फिर एक के बाद एक दोनों इस दुनिया को छोड़ गए और राधा दर बदर की ठोकरें खाने के लिए जिंदा रह गई। जिंदगी ने उसे नाकामियों और मजबूरियों के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो खुद को धरती का बोझ समझने लगी। उठ जाए यहां से, मुझे दुकान खोलनी है। दुकानदार जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर ताले में लगाने लगा। दुकान के सामने लेटी राधा ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर दूसरे ही पल उठ खड़ी हुई। उसने अपनी पोटली बगल में दबाई और एक तरफ घिसटने लगी। उसके दुबले पतले सूखे हुए जिस्म पर मैल की परत इतनी गहरी थी कि उसका असली रंग छुप गया था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और सिर के बालों में भी मैल जमा था। चलते हुए उसकी टांगें और पूरा शरीर कांप रहा था। दूर से देखने पर वो इंसान नहीं, कोई और ही मखलूक लगती थी। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। वो एक ऐसे मुसाफिर की तरह थी जिसे अपनी मंजिल तक नजर नहीं आती। राधा जिस इलाके में जाती वहां के भिखारी उसे अपने इलाके में जाने को कहते, क्योंकि वो उनके मुकाबले में कमजोर थी, इसलिए वो वहां से निकल जाना ही बेहतर समझती। दूसरे भिखारी शायद इस वजह से उससे जलते थे कि वो उनके मुकाबले में ज्यादा काबिले रहम लगती थी। दोपहर होने तक वो करीब 2 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी थी। वो बांद्रा के इलाके में दाखिल हुई। रास्ते में कई जगह उसने आराम भी किया था, लेकिन अब तक किसी ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था। वो सुबह से भूखी थी, अब उसकी भूख भड़क उठी थी। थक हार कर वो फुटपाथ के सायेदार हिस्से में बैठ गई। जब सब्र की हद खत्म हुई तो उसने मजबूरी में हाथ फैलाया। धीरे धीरे उसके हाथ उठाने की ताकत भी नहीं रही और उसका हाथ जमीन को छूने लगा। उसने अपने सामने एल्यूमिनियम का खाली कटोरा रख दिया। लोग अफरा तफरी में उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को भी उसकी हालत पर रहम नहीं आया। सच तो ये है कि किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं।

थोड़ी देर बाद एल्यूमिनियम के कटोरे में 1 रुपए का सिक्का छन की आवाज के साथ गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके तन बदन में खून की रफ्तार तेज हो गई हो। देखते ही देखते उसका कटोरा सिक्कों से भर गया। सभी अपने आप में गुम थे। एक साहब अपने कुत्ते के साथ उसके करीब से गुजरे। उन्होंने एक फुटपाथ पर बैठी हुई भिखारन को देखा और आगे बढ़ गए। अलबत्ता उसके कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर उसकी कुछ समझ में नहीं आया। तेजी से भागता हुआ अपने मालिक से जा मिला। उसी वक्त उसी इलाके का एक हट्टा कट्टा भिखारी आ गया। उसने जब राधा को देखा तो अपनी पूरी ताकत से उस पर चिल्ला पड़ा, तू यहाँ क्यों आई है? बेबसी के एहसास से राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, फिर चली जाऊंगी। आइंदा इस इलाके में भीख मांगेगी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा इलाका है। उस हट्टे कट्टे भिखारी ने सिक्के के कटोरे को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम मेरे इलाके से रुपए नहीं ले जा सकती। तो राधा वैसे तो चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला ना सकी। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया था। उसकी आवाज गले में ही फंस गई। हट्टा कट्टा भिखारी राधा का रुपयों से भरा कटोरा ले गया और राधा निढाल होकर जमीन पर लेट गई। भूख और प्यास ने उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। सीटी की आवाज फिजा में गूंज रही थी। गाड़ी लगातार सीटी बजा रही थी। अब गाड़ी लड़की के बिल्कुल करीब आने वाली थी। इससे पहले कि लड़की गाड़ी के जिद में आती, अचानक ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने देखा कि एक अजनबी शख्स जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, उसने उसे खींचा है। लड़की ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम सुधीर पांडे है, वैसे लोग मुझे संत बाबा के नाम से जानते हैं। लड़की ने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? एक इंसान होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारी इंसानियत से मुझे कोई लेना

तुम मरना क्यों चाहती हो? उस शख्स ने पूछा। ये मेरा अपना मामला है, तुम्हें ये पूछने का कोई अधिकार नहीं, लड़की ने जवाब दिया। बड़ों से इस तरह की बातें नहीं करते बेटी, संत बाबा ने प्यार भरे लहजे में कहा। ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का अधिकार भी उसी का है। तुम अपने आप को मौत के हवाले नहीं कर सकती। जिंदगी में दुख और परेशानियां आती ही रहती हैं, हालात से समझौता करना पड़ता है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि तुम आत्महत्या करना चाहती हो? संत बाबा ने पूछा। मैंने कह दिया ना कि मैं आत्महत्या का कारण नहीं बताऊंगी। मैं जानता हूं हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, मगर मैं फिर भी जानना चाहता हूं कि वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, संत बाबा ने कहा। लड़की ने एक नज़र संत बाबा के चेहरे पर डाली और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर फिसल रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं एक अपाहिज अनाथ लड़की हूँ, बूढ़ी मौसी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। चंद पल गुजरने के बाद रुक्मणी ने कहा, स्कूल में लड़के और लड़कियां मुझे सताते हैं, मुझे धरती का बोझ कहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूं कि सचमुच मैं धरती का बोझ बनती जा रही हूं। अपनी बूढ़ी मौसी पर तो मैं पहले ही बोझ बन चुकी हूं, अब उनके बूढ़े कंधों पर और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। नहीं रुक्मणी, नहीं, तुम आत्महत्या नहीं करोगी, संत बाबा ने कहा। जिंदगी एक खूबसूरत गीत है, इसे हर इंसान को आखिरी दम तक गाना पड़ता है। मैं जानता हूं तुम्हारा एक पैर पोलियो का शिकार है, लेकिन तुम्हारा जहन मफलूज नहीं हुआ है, तुम अपने आप में आत्मविश्वास

विश्वास पैदा करो। अगर तुम्हारी मेहनत और लगन में सच्चाई है तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। तुम पढ़ने लिखने में जी लगाओ, तुम इल्म की रोशनी का मीनार बन जाओ। जब तुम्हें चढ़ाने वाले लोग इस मीनार को देखेंगे तो शर्मिंदा होंगे। उनकी हार होगी, तुम्हारी जीत होगी और वो अपने आप में सर झुका लेंगे और तुमसे पीछे हो जाएंगे।

0: चंद पल गुजरने के बाद संत बाबा ने महसूस किया कि रुक्मणी की आंखें खुशी से चमक रही है। ठीक है, रुक्मणी ने कहा, मैं आपके इन ख्यालातों पर गौर करूंगी। उसके बाद रुक्मणी की जिंदगी में एक नया इंकलाब आया। वो रात दिन पढ़ाई में मशरूफ रहने लगी। स्कूल में वो बेचैन सी रहती। उसका दिल चाहता कि जल्दी से जल्दी छुट्टी हो और वो सड़क पर पहुंच जाए। सड़क के करीब अपनी मौसी को देखकर उसे सुकून मिलता और यूं महसूस होता जैसे शहर की हलचल भरी फिजा से निकलकर गांव के सुकून भरे माहौल में अपनी मौसी के पास पहुंच गई हो। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। किताबों के दिलचस्प सबक उसका ध्यान बटाए रखते, लेकिन जैसे ही तफरीह का वक्फा होता वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती और ये अकेलेपन के पल बेहद परेशानी का सबब बनते। छुट्टी की घंटी बजते ही वह दूसरे बच्चों की तरह दौड़ते हुए बच्चों की तरह खेल कूद में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। छुट्टी होने में कुछ देर बाकी थी कि टीचर ने उसे जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि टीचर अच्छी तरह समझती थी कि छुट्टी के वक्त बच्चों के हुजूम में वो चल नहीं सकेगी। क्लासरूम से निकलकर वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि छुट्टी का घंटा बज उठा और उसके साथ ही कमरों से बच्चों का सैलाब उमड़ पड़ा। तमाम बच्चे धक्का मुक्की करते और एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुक्मणी भी बच्चों के इस रेले में गिरती पड़ती अपनी बेजान टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। वो सड़क पर अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। सड़क पार करना भी उसके लिए एक मुश्किल काम था। सड़क पर ट्रैफिक था और इस भीड़ में वो सड़क पार नहीं कर सकती थी। इसी दौरान उसकी नज़र अपनी मौसी पर पड़ी। रुक्मणी की मौसी उसके लिए फरिश्ते की हैसियत रखती थी। हर रोज वही उसे सड़क पार करवाया करती थी। आज भी उसने रुक्मणी को वहां खड़ा देखा तो करीब आते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रुक्मणी की मौसी ने उसके दाएं कंधे पर अपना हाथ रखा और रुक्मणी ने उनके बाएं कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर रुक्मणी और उसकी मौसी अलग हो जाती। रुक्मणी बैसाखियों के सहारे चलने लगती। रुक्मणी को उन लोगों से सख्त नफरत थी जो उसे लंगड़ाकर चलते हुए देखकर घूरते थे या रहम की निगाहों से देखते थे। उसके लिए एहसास बहुत दर्दनाक था। जब वो अपनी टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ती तो लोग उसे देखते रहते। शुरू शुरू में जब वो स्कूल आती थी, बच्चे उसके करीब आकर देखते थे कि उसकी टांग में क्या खराबी है। ऐसे मौकों पर वो जमीन में गिर जाती।
1: जीवन

संत बाबा एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे। रुक्मणी पढ़ने लिखने के बारे में संत बाबा से मशवरा लेने लगी। संत बाबा हर मोड़ पर रुक्मणी का हौसला बढ़ाते रहे। संत बाबा सिर्फ रुक्मणी का ही नहीं बल्कि गरीब बच्चों के दिलों में भी शिक्षा का दीप जलाते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि देहात, गांव और शहर का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, गरीब बच्चों को भी शिक्षा हासिल करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की थी। अब रुक्मणी स्कूल के साथ साथ संत बाबा की कोचिंग में भी पढ़ने लगी। एक दिन संत बाबा ने क्लास के बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, पढ़ने लिखने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ किताबों की मदद काफी नहीं होती, दिमाग से जितना काम लोगे उतनी ही उसकी ताकत बढ़ेगी और याददाश्त भी मजबूत होगी। हर विद्यार्थी को चाहिए कि किसी पैराग्राफ या विषय को खत्म करने के बाद उसे अपने शब्दों में बयान करे। पढ़ाई का मतलब समझना है। तोते की तरह रटना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर कुछ लाइनें भूल जाओ तो पूरा सबक भूल जाओगे। प्यारे बच्चों, तुम्हें पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना है। तुम अपने माँ बाप की तमन्नाओं का केंद्र हो, उनकी आंखों की ठंडक हो। देश और कौम की आशाएं तुमसे है। तुम पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। संत बाबा के इस बयान में माँ बाप का नाम सुनकर रुक्मणी रंजिदा हो गई। उसने महसूस किया, मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं किसका नाम रोशन करूं? मेरे बाप जिंदा है या नहीं मुझे मालूम नहीं। सुना है वो दहेज का तलबगार था, माँ पर जुल्म करता था और मेरी माँ वो जुल्म सहती थी। कहते हैं देश भर में यही हो रहा है, मेरी माँ भी जुल्म सहते सहते इस दुनिया से चली गई। माँ कितना प्यारा शब्द है, माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी मौसी की आंखों में अपनी माँ की तस्वीर देखी है। कितनी प्यारी है मेरी माँ, भोली भाली माँ।

सेवक का स्वागत किया। उन्होंने स्टेज पर आकर कहा, आज के इस जलसे में शरीक होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक अनाथ अपाहिज लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने ये साबित कर दिया कि एक अपाहिज इंसान भी अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है। चंद पल रुककर उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि रुक्मणी सड़क पर रहती है, मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। ये सड़क पर रहना या शहर में रहना क्या होता है, सब दुनिया के बनाए हुए उसूल हैं। ईश्वर ने तो सिर्फ दो ही प्रकार के लोग बनाए हैं, औरत और मर्द। जिनमें इंसानियत होती है वही लोग महान होते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ मौजूद तमाम विद्यार्थियों को मशवरा देता हूँ कि पढ़ाई में दिलचस्पी लें और रुक्मणी की तरह कोशिश करें, कोशिश ज़रूर रंग लाएगी। अब मैं आखिर में रुक्मणी को माइक पर आने की दावत देता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बैसाखियों का सहारा लिए हुए रुक्मणी स्टेज पर पहुंची।

मौसी ही मेरी माँ है और वही मेरे बाप भी है। मैं पढ़ लिख कर अपनी मौसी का नाम रोशन करूँगी। अब रुक्मणी की पढ़ाई की हालत बहुत बेहतर हो गई थी। वो हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती थी। एक दिन उसकी तस्वीर राज्य भर में छपने वाले अखबारों में छप गई, क्योंकि रुक्मणी ने SSC में टॉप किया था। रुक्मणी वो लड़की थी जो पूरे राज्य में अव्वल आई थी। शहर के एक अच्छे समाज सेवक ने एक अनाथ अपाहिज लड़की को गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया था, और फिर वो दिन भी आ गया। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमान खास के लिए बनी जगह के दाईं तरफ शहर की मशहूर हस्तियों की गैलरी थी। मुकर्रर वक्त पर अनाउंसर ने स्टेज पर आकर समाज सेवक से दरखास्त की कि वे विद्यार्थियों को अपने कीमती मशवरे दें। लोगों ने तालियों से समाज

रुक्मणी ने माइक संभालते ही कहा, प्यारे सज्जनों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये मेडल लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं इस गोल्ड मेडल की हकदार नहीं हूँ। हकदार तो वो महान हस्ती हैं जिन्होंने मुझे मौत के मुंह से निकाला, जीने का तरीका सिखाया और मेरे दिल में पढ़ने लिखने का दीप जलाया। मैं चाहती हूँ कि ये मेडल मेरे सुधीर को दिया जाए, जिन्हें हम संत बाबा कहते हैं। पूरा हॉल खामोश हो गया। बच्चे और बड़े एक दूसरे को देखने लगे। फिर रुक्मणी ने कहा, मैं अपने संत बाबा से विनती करती हूँ कि वे स्टेज पर आएं और समाज सेवक से ये मेडल हासिल करें। तालियों की गूंज के बीच संत बाबा स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं रुक्मणी को बधाई देता हूँ कि उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। सिर्फ माँ बाप का ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। मैं तमाम बच्चों को मशवरा देता हूँ कि वे भी पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चंद पल बाद उन्होंने कहा, रुक्मणी एक मासूम भोली भाली लड़की है। उसने कहा कि ये मेडल उसके सुधीर को दिया जाए, लेकिन नादान बच्ची, मैं तो एक टीचर हूँ। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देता है ताकि वे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकें। जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करता है तो बच्चे के माँ बाप के साथ साथ टीचर को भी खुशी होती है। मुझे बेहद खुशी है कि रुक्मणी पढ़ लिख कर इस मेडल के काबिल बनी है, इसलिए ये मेडल रुक्मणी को ही दिया जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बच्चों और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। दूसरे ही पल समाज सेवक माइक पर आए और बोले, मुझे खुशी होगी कि ये मेडल संत बाबा के पवित्र हाथों से ही रुक्मणी को दिया जाए। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। संत बाबा ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी के सिर पर हाथ फेरा और अपने पवित्र हाथों से उसे मेडल दे दिया। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

गीतों भरी कहानी में आप सुन रहे थे इब्राहिम यादगिरी की कहानी गोल्ड मेडल। वाचक स्वर नेहा शर्मा, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। गली गली अब यही अफसाना हो गया, छुप छुप के मिलना भी पुराना हो गया, नजरें क्या मिली शहर में चर्चा छा गया, लैला मजनू का इश्क अब सबके लबों पे आ गया।

आ जा की रात ने बाहें खोल रखी हैं, मेरे लफ्जों में तेरे लिए नमी घोल रखी है, तेरी एक झलक को तरसती हैं ये निगाहें, जरा करीब आकर तो देख मैंने मोहब्बत दिल में सजा रखी है।

नजरों से यूं दिल चुरा लेने का हुनर कहां से पाया? बिना लफ्जों के सब कह जाने का ये फन कहां से आया? हम तो समझते थे खामोशी बस खामोशी होती है, पर तूने इशारों इशारों में दिल जीतना सिखाया।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। अजनबी थे, कोई पहचान भी नहीं थी दरमियां। एक ही मुलाकात में लगा जैसे मिट गई हो दूरियां। तुझसे मिलकर यूं लगा जैसे अपना ही कोई मिल गया। भीड़ में चलते चलते अचानक हम सफर ने जैसे हाथ हो थाम लिया।

तेरी पलकें काजल से जब बोझल सी हो जाती हैं, मेरे दिल की धड़कनें भी धीमी सी हो जाती हैं, माथे की बिंदिया जब चांद को छू कर आती है, तेरे हर सिंगार पर मेरी नजर ठहर जाती है।

0: उसकी मुस्कान से रोशन होती है मेरी सुबह, उसकी पलकों के बंद होते ही होती है मेरी शब। सामने वाली खिड़की में तो अक्सर नजर आती है, पर न जाने मेरे सामने वो मोहतरमा आएंगी कब।
1: अरे ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। और मैं हूं आपकी दोस्त प्रियंका वाणे और लेकर प्रस्तुत हूं आपके लिए आज का युववाणी विशेषांक, जो लगभग दुगनी अवधि का होगा। और उसका कारण पता है आपको? आज आपके लिए हम लेकर आए हैं एक विशेष रोजगार उपयोगी और कौशल विकास पर केंद्रित विशेष साक्षात्कार, जो हमारे साथी जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है और इस दुविधा में है कि आखिर अपने जीवन के लिए किस करियर ऑप्शन को चुने और किस दिशा में आगे बढ़े, तो उन सभी को इस साक्षात्कार के माध्यम से दिशा देने का प्रयत्न किया गया है। अब इतनी भूमिका सुनने के बाद आप उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि आखिर आज बातचीत किससे होने जा रही है। तो थोड़ा सब्र रखिए साथियों, और उससे पहले जान लीजिए हमारे आज के सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? और आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे कार्यक्रम के अंत में। और आप तो युववाणी सुन ही रहे हैं, क्योंकि आज है हमारा विशेष अंक जो दुगनी अवधि का है, और आज का क्रम है शीर्षक संगीत। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपका हमसे जुड़ने का सबसे सशक्त पुराना और अच्छा माध्यम कौन सा रहा है? हमारा साथी रहा है चिट्ठियां। जी हाँ, वही चिट्ठियां जो आप हमें लिखते हैं, और उन्हें ही कहते हैं खत।

0: दोस्तों, इस गीत को सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा शीर्षक है खत। अब गीत तो आपने सुन लिया है, तो अब आपका इंतजार खत्म करते हैं और आपको सुनवाते हैं रोजगारोन्मुखी और कौशल विकास पर केंद्रित ये साक्षात्कार। जानकारी दे रहे हैं महात्मा ज्योतिराव फुले, शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार दीक्षित। इनसे बातचीत की है प्रसारण अधिकारी चिन्मय दीक्षित ने।
1: श्रोताओं, आज हम और हमारी टीम उपस्थित है महात्मा ज्योतिराव फुले शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खंडवा में, जहां हमारे साथ हैं मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट विभाग के HOD यानी कि विभागाध्यक्ष डॉक्टर नीरज दीक्षित जी, जो आज न केवल आकाशवाणी के श्रोताओं को ये बताने जा रहे हैं कि उनके विभाग से क्या क्या विशेष कार्यक्रम और शिक्षा के पाठ्यक्रमों का संचालन

0: होता है, वरन साथ साथ ये भी अपने श्रोताओं को बताएंगे कि आकाशवाणी से उनका जुड़ाव कितने वर्षों का रहा है। तो सबसे पहले बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं परिचय के साथ। एक संक्षिप्त परिचय मैं आपका अपने श्रोताओं के लिए चाहूँगा, कब से आप आकाशवाणी से जुड़े हैं और आपका परिचय बतौर श्रोता और बतौर अधिष्ठाता यहाँ का HOD के रूप में बताइए।
1: आकाशवाणी से मेरा नाता बहुत पुराना है, यूँ कह सकते हैं लगभग 50 वर्ष पुराना ये संबंध है। और आकाशवाणी के कार्यक्रमों को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब से होश संभाला है तब से उन कार्यक्रमों को अलग दृष्टि से भी समझने का, सुनने का प्रयास किया है। और उसके साथ साथ आकाशवाणी से हमें वार्ताकार के रूप में भी जुड़ने का अवसर मिला, साथ ही अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने का, प्रसारण का भी अवसर आकाशवाणी ने मुझे दिया। इसके लिए मैं विशेष रूप से आभार भी व्यक्त करता हूँ। और यहाँ मैं शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा विभाग है आधुनिक कार्यालय प्रबंध विभाग। और वैसे लगभग शिक्षण कार्य से मैं लगभग 37 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और हर स्तर पर मैंने अध्यापन किया है, जिसको अपन कहें हायर सेकेंडरी स्कूल स्तर पर, महाविद्यालय में, और उसके साथ साथ तकनीकी शिक्षा से अभी पिछले करीब 33 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ।
0: क्या बात है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में जब पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए थे उस दौर में सबसे पुराने पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में से एक खंडवा का भी रहा है, भोपाल, जबलपुर और खंडवा संभवतः ये रहे हैं। तो आज आधुनिक तकनीक के समय में पॉलिटेक्निक कॉलेज के द्वारा कौशल विकास किस तरह किया जा रहा है?
1: खंडवा का ये शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जिसका बाद में नाम बदलकर महात्मा ज्योतिराव फुले शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हुआ, ये सन 1962 से स्थापित है और लंबे समय से जिले में और बल्कि कहें प्रदेश में भी तकनीकी शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हमारे यहाँ 7 ब्रांचेस या 7 डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसके साथ रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, आधुनिक कार्यालय प्रबंध का पाठ्यक्रम। तो कुल मिला के 7 पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों में तकनीकी ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान और कौशल विकास का प्रयास किया जाता है, ताकि वे आने वाले समय की चुनौतियों का सामना कर सकें और अपने ही योग्यता और प्रतिभा का उपयोग करके समाज को अपना सक्रिय योगदान दे सकें, अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें। तो अलग अलग ब्रांचेस में जो तकनीकें हैं, जो कौशल विकास है, वो अपनी प्रयोगशालाओं के माध्यम से, प्रैक्टिकल्स के माध्यम से उसका उनमें विकास किया जाता है। और आधुनिक कार्यालय प्रबंध जो पाठ्यक्रम है, वर्तमान में इसके अंतर्गत कंप्यूटर का बहुतायत से उपयोग हो रहा है और एक मुख्य उपकरण जो कार्यालयों में है वो कंप्यूटर उपयोग किया जाता है। आजकल लगभग सारा कार्य उस पर होने लगा है, टाइपिंग का भी होता है, ईमेल है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में काम होते हैं, DTP का वर्क है और इस प्रकार से अकाउंटिंग का टेली के माध्यम से अकाउंटिंग वर्क किया जाता है। तो ये हम कौशल विकास इस प्रकार से विद्यार्थियों में निरंतर रूप से ये प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जाता है।
0: अच्छा, जैसा आपने बताया ये तो मध्य प्रदेश के सबसे आरंभिक स्थापित पॉलिटेक्निक कॉलेजों में से एक है। तो खंडवा के इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में कौन कौन सी जो शाखाएं हैं वो संचालित होती हैं और उनमें रोज़गार के क्या अवसर होते हैं?
1: जैसा मैंने पहले भी बताया कि इंजीनियरिंग ब्रांचेस में हमारे पास सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और एक नॉन इंजीनियरिंग ब्रांच जो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट है या जिसको कहें मैनेजमेंट से रिलेटेड ये हमारा पाठ्यक्रम है। तो कुल 7 ब्रांचेस

0: का संचालन महाविद्यालय में वर्तमान में हो रहा है और रोजगार के इनके माध्यम से सभी में भरपूर अवसर हैं, शासकीय क्षेत्र में भी हैं और निजी क्षेत्रों में भी हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ से जो बच्चे पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण कर बाहर निकल रहे हैं तो फाइनल ईयर में ही कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से उनके पास रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं और ये बड़े प्रसन्नता का विषय है कि हमारे महाविद्यालय में कैंपस प्लेसमेंट लगभग 100% है।
1: अच्छा,
0: प्रत्येक बच्चे के पास यहाँ डिप्लोमा पूर्ण करने के उपरांत हाथ में कोई ना कोई नौकरी या जॉब का एक ऑफर लेटर होता है और वो अपनी इच्छा अनुरूप वहाँ पर आगे कार्य करने के लिए भी ज्वाइन करते हैं। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट जो पाठ्यक्रम है इसमें भी शासकीय के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार उपलब्ध है, भरपूर अवसर उपलब्ध हैं और इसके साथ साथ वो स्वरोजगार यदि करना चाहें

0: आगे कार्य करने के लिए भी ज्वाइन करते हैं। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट जो पाठ्यक्रम है इसमें भी शासकीय के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार उपलब्ध है, भरपूर अवसर उपलब्ध हैं, और इसके साथ साथ वो स्वरोजगार यदि करना चाहें तो अपनी स्किल का, अपने क्षमता का उपयोग करके, अपने नॉलेज का उपयोग करके वो अपना स्वरोजगार भी प्रारंभ कर सकते हैं।
1: क्या बात है, मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका जो स्किल इंडिया का आह्वान है उसमें ये जो पाठ्यक्रम है वो बहुत योगदान दे रहे हैं।
0: पाठ्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभा रहे हैं अपने तय और अपना योगदान दे रहे हैं।
1: आप एक कोर्स का नाम ले रहे हैं, आधुनिक कार्यालय प्रबंधन, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, ये किस तरह का कोर्स है और इस कोर्स विशेष में रोजगार के क्या खास अवसर उत्पन्न होते हैं उसके विषय में हमारे सभी श्रोता जानना चाहेंगे, कृपया बताएं।
0: आधुनिक कार्यालय प्रबंध पाठ्यक्रम जो है उसका लक्ष्य है आज के हमारे जो मॉडर्न ऑफिस हैं उसके लिए अच्छे ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना।
1: अच्छा।
0: उनको उपलब्ध कराना ताकि वे लोग, वो विद्यार्थी जो यहाँ से इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करके जा रहे हैं वो कार्यालयों में तकनीक का उपयोग करते हुए उसका संचालन और प्रबंध का कार्य कर सकें। तो ये 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है। पहले इसमें प्रवेश 12वीं उत्तीर्ण के आधार पर होता था, लेकिन अब वर्तमान में इसमें प्रवेश 10वीं पास के आधार पर, हाई स्कूल के आधार पर दिया जा रहा है।
1: अच्छा।
0: तो 10वीं उत्तीर्ण बच्चे जो हैं इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर के और 3 वर्षों में अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करके अपने आप को किसी भी रोजगार के लिए आसानी से वो तैयार कर सकते हैं। तो इसमें जो मुख्यतः रोजगार के अवसर जॉब या नौकरी के रूप में उपलब्ध हैं तो कुछ पद हैं जैसे कार्यालय प्रबंधक, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, शासकीय कार्यालयों में सहायक ग्रेड 3 का पद होता है, उसके लिए भी ये बच्चे इस डिप्लोमा के आधार पर नियुक्ति हेतु योग्य होते हैं।
1: अच्छा।
0: कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है, सेक्रेटरी के रूप में, प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में, पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं। इनकम टैक्स संबंधी कार्य करने की योग्यता भी, इनके पास ज्ञान होता है, उसका व्यावहारिक ज्ञान भी होता है। CA के सहायक के रूप में कार्य कर सकते हैं। अंकेक्षक के रूप में, सेल्समैन, रिसेप्शनिस्ट, ऐसे पद जो हैं ये भी कार्य करने की योग्यता इनमें होती है। और जो फ्रंट ऑफिस होता है किसी भी संस्थान में, होटल्स वगैरह में, हॉस्पिटल्स में, वहाँ पर ये फ्रंट ऑफिस मैनेजर के रूप में भी इनके पास जॉब का अवसर होता है। स्वरोजगार के क्षेत्र की यदि बात करें तो उसमें साइबर कैफे का संचालन, ऑनलाइन कियोस्क, शेयर ब्रोकर के रूप में कार्य, इंश्योरेंस एडवाइज़र के रूप में कार्य, DTP वर्क, विज्ञापन या न्यूज एजेंसी, टाइपिंग ट्रेनिंग सेंटर, स्टेनो ट्यूटर, कार्यालय प्रबंध सलाहकार, बैंकिंग कियोस्क, डेली अकाउंटिंग प्रशिक्षण, कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विसेज, लघु उद्यम की स्थापना, कंप्यूटर जॉब वर्क, ऑफसेट प्रिंटिंग जॉब, इस तरह से इनके पास पाठ्यक्रम पूर्ण करते करते इतनी योग्यता और ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान और कौशल इनके पास उपलब्ध हो जाता है कि उसका उपयोग करके वो किसी भी जॉब में और स्वरोजगार के क्षेत्र में अपनी क्षमता का पूरी तरह से सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं।
1: अच्छा, आपने मुझे बताया कि इस पाठ्यक्रम में प्रवेश 10वीं के उपरांत होता है, पहले 12वीं के उपरांत हुआ करता था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पॉलिटेक्निक के इस कॉलेज में प्रवेश की कोई प्रक्रिया होती है, कोई परीक्षा होती है, कुछ इसका माध्यम होता है, कभी फॉर्म्स आते हैं, उसके बारे में भी बताएं।
0: हमारे यहाँ जो प्रवेश प्रक्रिया है वो पूरी तरह से ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से इसमें एडमिशन दिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत DT काउंसलिंग का हमारा एक बना हुआ है सेल, और वर्तमान में भी ये प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, चल रही है।
1: अच्छा।
0: और जिसमें इच्छुक बच्चे को, वो जिस ब्रांच में भी एडमिशन लेना चाहता है, सबसे पहले DT काउंसलिंग पर जाकर उसको रजिस्ट्रेशन करना होता है।
1: अच्छा।
0: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो ये प्रवेश प्रक्रिया 29 मई 2026 को रात्रि 11:45 तक रजिस्ट्रेशन उसमें खुला हुआ है।
1: अच्छा।
0: तो जो बच्चे प्रवेश लेना चाहते हैं पॉलिटेक्निक के हमारे किसी भी पाठ्यक्रम में, वे

0: 30 मई 2026 तक अपना पंजीयन करवा सकते हैं।
1: ठीक है,
0: उसके साथ साथ वो अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे कि वो किस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो चॉइस अपनी देंगे। और चॉइस फिलिंग का जो कार्य है ये 15 मई 2026 से 2 जून 2026 को रात्रि 11:45 बजे तक चालू है।
1: ठीक है,
0: निरंतर रूप से। इसके पश्चात मतलब रजिस्ट्रेशन करने के और चॉइस फिलिंग के पश्चात बच्चों को अलॉटमेंट जारी होता है कि वो अपनी मेरिट के आधार पर किस ब्रांच के लिए पात्रता रखते हैं। तो ये अलॉटमेंट और प्रवेश की जो प्रक्रिया है, अलॉटमेंट लेटर वो निकालेंगे और फिर प्रवेश के लिए संस्था में 8 जून से 13 जून तक कार्यालयीन समय में वो संपर्क कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: और अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये तो प्रथम चरण है हमारा। इसके पश्चात भी जो सेकंड राउंड होगा, जो सीटें खाली रह जाएंगी, उसकी एडमिशन की प्रक्रिया 9 जून से 18 जून तक चलना है। उसमें भी सारा ऑनलाइन कार्य होगा, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट। 9 से 18 जून के अंतर्गत 10 से 22 जून वो चॉइस फिलिंग करेंगे और 27 जून से 3 जुलाई के बीच में उनको अलॉटमेंट उपलब्ध होगा, जिसके आधार पर वो महाविद्यालय में प्रवेश ले पाएंगे। फिर उसके पश्चात सेकंड राउंड के पश्चात भी यदि सीटें कुछ खाली हों तो एक थर्ड राउंड भी हमारा है जो कहलाता है CLC राउंड, कॉलेज लेवल काउंसलिंग, जिसमें वो अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन मोड में करवा के 4 जुलाई से लेकर 12 अगस्त 2026 तक CLC राउंड के माध्यम से प्रवेश ले सकते हैं, जिसमें सप्ताह में 3 दिवस निश्चित किए गए हैं, सोमवार, बुधवार और, तो वो उनको रजिस्ट्रेशन करना है और तत्काल आकर सोमवार, बुधवार या शुक्रवार के दिन कॉलेज में कार्यालय समय में आके वो अपना प्रवेश ले पाएंगे। इसके बाद एक आखिरी राउंड भी हमारा है, वो भी CLC है, फाइनल राउंड रहेगा जो 13-14 अगस्त, 2 दिन के लिए उसमें प्रवेश का कार्य किया जाएगा।
1: अच्छा,
0: तो इस तरह से ये सतत जो है प्रवेश की प्रक्रिया जारी
1: है रहेगी।
0: और जो बच्चे इच्छुक हैं वो तत्काल अपना इसमें ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग ले करके आगे अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकते हैं।
2: तो इच्छुक बच्चों ने संभवतः नोट कर लिया होगा, उनको DTE की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कराना है और उस पर जाकर आप अपने कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन उपरांत। और 29 मई जो है ये आपके लिए अंतिम तिथि है, इसका ध्यान रखें पहले राउंड के लिए, और पहले राउंड में ही प्राप्त करने का प्रयत्न करें क्योंकि बहुत सारे ऐसे विभाग, ऐसे विधाएं जो बहुत ज़्यादा मानी जाती हैं, जिनकी बड़ी मांग होती है, वो बहुत सबसे पहले भराती हैं। बहरहाल हम ये जानना चाहेंगे कि इस विशेष महाविद्यालय में जो खंडवा पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इसमें कौन कौन सी सुविधाएं महाविद्यालय द्वारा छात्रों को मिलती हैं, मतलब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं?
0: महाविद्यालय पूरी तरह से, महाविद्यालय के क्लासरूम्स, लैब्स सभी आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं। हमारे पास हर ब्रांच में स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध हैं, जहाँ पर स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षण का कार्य किया जाता है। पुस्तकों से संपन्न एक लाइब्रेरी हमारे यहाँ पर है, जिसमें हजारों की संख्या में पुस्तकें हैं, बच्चे जिसका लाभ लेते हैं अध्ययन में अपने। इसके अतिरिक्त जो SC ST कैटेगरी से संबंधित बच्चे हैं उनके लिए अलग से एक बुक बैंक की भी व्यवस्था महाविद्यालय में है।
1: अच्छा।
0: वो अलग से अपनी पुस्तकें वहाँ से इशू कराकर उनको उपलब्ध कराई जाती हैं अध्ययन के लिए। महाविद्यालय में स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, फिजिकल फिटनेस को देखते हुए, एक ओपन जिम भी है और एक इंडोर जिम का भी यहाँ पर व्यवस्था है। इसके साथ साथ रहने के लिए हॉस्टल उपलब्ध हैं, लैंग्वेज लैब है जिसके माध्यम से बच्चे कम्युनिकेशन स्किल का विषय को सीखते हैं, संप्रेषण की कला में पारंगत होते हैं। विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियां समय समय पर संचालित की जाती हैं। खेलकूद की सुविधा उपलब्ध है, हमारे पास एक बड़ा प्लेग्राउंड है, उसके साथ बास्केटबॉल का कोर्ट भी हमारे पास उपलब्ध है। फिर यहाँ इंटरनेट हर लैब में उपलब्ध है, जिसका उपयोग करके बच्चे अपने अध्ययन में, शिक्षण में उसका लाभ लेते हैं। विभिन्न उद्योगों की, कार्यालयीन संस्थानों की छात्र छात्राओं को विजिट कराई जाती है, विजिट पर ले जाया जाता है।
1: अच्छा।
0: ताकि उनको व्यावहारिक ज्ञान मिले कि उद्योगों में, कार्यालयों में किस प्रकार काम होता है। TPO सेल है हमारे पास में।
1: अच्छा।
0: जिसके माध्यम से बच्चों के ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की गतिविधि

0: नौकरियों का संचालन करते हैं। जैसा मैंने बताया, प्लेसमेंट हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत बच्चों को यहीं कंपनियाँ आती हैं और उनमें से अपना चुनाव करके और जॉब के लिए उनको ऑफर देती हैं। जो एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, साथ ही साथ जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति की योजनाएं जो शासन द्वारा संचालित की जा रही हैं, उनका भी लाभ विद्यार्थियों को महाविद्यालय में यहाँ मिलता है। तो इस प्रकार से अनेकों सुविधाओं को बच्चों को उपलब्ध कराने का निरंतर महाविद्यालय प्रशासन का प्रयास रहता है। जो जुटाई जा रही हैं सुविधाएं, आगे भी और नए नए जो भी साधन हो सकते हैं, उपकरण हो सकते हैं, उनको उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, यहाँ पर हमने एससी एसटी के छात्रों के लिए विशेष बुक बैंक और इत्यादि सुविधाओं की बात की, क्या पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए भी ईडब्ल्यूएस और एक टीएफडब्ल्यू कोटा होता है? और ये टीएफडब्ल्यू हमारे श्रोताओं के लिए बताइए कि ये क्या होता है।
0: टीएफडब्ल्यू जो है उसमें ट्यूशन फी वेवर इसको कहा जाता है, एक स्कीम है, योजना है, जिसमें हर ब्रांच में 3 सीट उसके लिए निर्धारित की गई है। तो जो बच्चे मेरिट में 3 बच्चे रहते हैं उनको ये टीएफडब्ल्यू का लाभ मिलता है, लेकिन इसका चुनाव उनको अपने ऑप्शन में काउंसलिंग के समय करना होता है। अच्छा। कि वो इसके माध्यम से प्रवेश लेना चाहते हैं। तो टीएफडब्ल्यू के अंतर्गत उनको कोई भी ट्यूशन फीस जमा नहीं करनी होती है, उनका शिक्षण शुल्क पूरी तरह से माफ़ रहता है। लेकिन एक उसमें शर्त है कि ऐसे बच्चे के परिवार की जो आय है वो 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए।
1: पारिवारिक वार्षिक आय
0: 8 लाख से कम होगी तभी वो टीएफडब्ल्यू का लाभ ले पाएगा। तो इस तरह हर ब्रांच में 3 सीटें जो हैं वो टीएफडब्ल्यू के अंतर्गत।
1: अच्छा, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ऐसा होता था कि यहाँ से डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा लेने के बाद बच्चों की इच्छा पढ़ने की कभी और होती है आगे पढ़ने की, तो यदि पॉलिटेक्निक का कोई छात्र इंजीनियरिंग करना चाहे तो उसके लिए क्या अवसर होते हैं और उसको किस वर्ष में कहाँ पे एडमिशन मिलता है?
0: हमारे यहाँ बच्चे दोनों तरह से आगे जा रहे हैं। जब डिप्लोमा उनका पूरा होता है तो ज़्यादातर बच्चे जॉब करने के लिए अपना निर्णय लेते हैं, उस तरफ जाते हैं। कुछ बच्चे जो आगे हायर एजुकेशन से जुड़ना चाहते हैं तो वो डिप्लोमा के आधार पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्रवेश लेते हैं और उसके अंतर्गत उनको सीधे बीटेक में सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है।
1: अच्छा,
0: तो 1 वर्ष उनका पूरा बच जाता है उसके आधार पर। तो जो वहाँ लेटरल एंट्री सिस्टम के माध्यम से वो बीटेक में द्वितीय वर्ष में प्रवेश ले सकते हैं और आगे अपनी उच्च शिक्षा के लिए आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को।
1: यदि कुछ छात्र ऐसा चाहें कि मैं पॉलिटेक्निक में एडमिशन भी ले लूं और उसके साथ साथ किन्हीं अन्य कोर्सेज को भी करने का प्रयत्न करूं, तो क्या पॉलिटेक्निक के साथ साथ अन्य कोई कोर्स, डिग्री या डिप्लोमा या कुछ और क्लब कर किया जा सकता है क्या?
0: नहीं, आपका यह बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो बच्चे जिनमें क्षमता है कि वो डिप्लोमा रेगुलर करते हुए अन्य उच्च शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। नॉर्मली बीए बीकॉम इस प्रकार से वो अपने डिप्लोमा की पढ़ाई के साथ साथ एक प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में बीए बीकॉम या ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम में भी जुड़ करके और अपनी क्वालिफिकेशन को साथ ही साथ बढ़ा सकते हैं, ताकि उनको डिप्लोमा और ग्रेजुएशन के बाद और अच्छे उजले अवसर जो है रोजगार के लिए उनको उपलब्ध हो जाए। तो ये उनका एक अच्छा प्रयास होता है, लेकिन वो अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि वो दोनों पाठ्यक्रम एक साथ हैंडल कर सकते हैं, दोनों की पढ़ाई और तैयारी साथ में कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है
1: और ये मान्यता प्राप्त है, ऐसा किया जा सकता है,
0: मतलब प्राइवेट कैंडिडेट के रूप।
1: मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि आईटीआई के जो छात्र होते हैं क्या वो भी डिप्लोमा में प्रवेश ले सकते हैं?
0: इसमें आईटीआई के जो बच्चे हैं, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे पढ़ भी रहे हैं अभी, लेकिन उसमें 2 साल का अगर उन्होंने आईटीआई का पाठ्यक्रम किया हुआ है तो उनको यहाँ डिप्लोमा पाठ्यक्रम में सीधे द्वितीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता बनती है और वो सेकंड ईयर में एडमिशन लेकर के और इस प्रकार से मात्र 2 वर्षों में ही अपना डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण करके और आगे रोजगार के लिए जा सकते हैं।
1: अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के और अन्य बोर्डों के भी

0: 12वीं के रिजल्ट घोषित हुए हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो एक ऐसा वर्ग है जो अभी ये तय नहीं कर पाया है कि उसको इसके आगे अब किस विधा में आगे बढ़ना है, तो क्या 12वीं के जो उत्तीर्ण छात्र छात्रा हैं उनके लिए भी कोई विशेष कोर्स इस कॉलेज में है?
1: 12वीं के जो बच्चे उत्तीर्ण होकर आ रहे हैं उनको भी अब द्वितीय वर्ष में प्रवेश देने का प्रावधान किया गया है। वो सेकंड ईयर में एडमिशन उनको मिल जाता है, और ख़ासकर अगर वो इंजीनियरिंग ब्रांच में प्रवेश लेना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि 11वीं 12वीं स्तर पर उन्होंने मैथ साइंस विषय लेकर के अध्ययन किया हो।
0: अच्छा।
1: तभी उन्हें सेकंड ईयर में प्रवेश मिलता है।
0: अच्छा, और डिप्लोमा के इंजीनियरिंग विभाग के सीधे द्वितीय वर्ष के छात्र वो बन सकते हैं यदि उनका 11वीं और 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रहा हो। तो आज हमारे श्रोताओं को नीरज दीक्षित जी ने बड़े अच्छे से ये जानकारी दी कि ना केवल आप इस कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं जिसकी अवधि अभी चल रही है, वरन यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं जो ना केवल आपके कौशल को ऐसा मांझेंगे कि आप जब बाहर निकलेंगे तो आप स्वरोजगार हेतु भी योग्य होंगे और किसी अन्य रोजगार के लिए भी आपके पास अनेक अवसर उपस्थित रहेंगे। साथ साथ आपने ये भी बताया कि महात्मा ज्योतिराव फुले शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खंडवा एक ऐसा कॉलेज है जिसने निरंतर कई वर्षों से 100% प्लेसमेंट का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा हुआ है, तो ये मुझे लगता है बहुत सारे छात्रों को लुभाएगा। इसके अतिरिक्त आप हमारे श्रोताओं से और जो युवा श्रोता हमें सुनेंगे उनके लिए कोई संदेश देना चाहते हैं?
1: वर्तमान में भारत सरकार का भी ये प्रयास है कि युवाओं में कौशल विकास किया जाए, वो कौशल विकास की तरफ आगे आए और अपने में कोई भी एक स्किल डेवलप करके और रोजगार से तत्काल जुड़े, बजाय कि बेरोजगारी के दंश का सामना करने के वे अपनी स्किल के आधार पर कोई ना कोई कार्य से जुड़ जाएं और अपनी आजीविका अर्जित करने लगें और अपने परिवार का भी सहारा बने। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की जो पाठ्यक्रम है वो सब स्किल बेस्ड हैं, जिनको पूर्ण करने के बाद एक दिन भी व्यक्ति बिना कार्य के नहीं बैठेगा, ये हमारा प्रयास है और इस तरह से हम उनको तैयार करते हैं। बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि वे कोई ना कोई पाठ्यक्रम अपनी पसंद का चुनाव करें और उसमें प्रवेश लें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं और आगे का जो है कौशल प्राप्त करके और अपना रोजगार या स्वरोजगार सुनिश्चित करें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा, आकाशवाणी केंद्र खंडवा।
0: धन्यवाद दीक्षित जी, आज हमारे श्रोताओं से आप आकाशवाणी के माध्यम से मुखातिब हुए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए जितने सीढ़ियाँ या पायदान भारत सरकार के द्वारा और बतौर शिक्षक आपके द्वारा आपके संस्थान के द्वारा प्रदान की जा रही हैं उसका विस्तार से वर्णन किया। सभी लोगों को एक सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध करवाने का ये जो प्रयास है उसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, और आज हमारे आकाशवाणी के माध्यम से हमारे श्रोताओं से मुखातिब होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैं भी चिन्मय जी आपका और आकाशवाणी केंद्र खंडवा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ये अवसर आपने उपलब्ध कराया, धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: दोस्तों, अभी आपने सुना रोजगार उन्मुख और कौशल विकास पर केंद्रित ये साक्षात्कार। जानकारी दे रहे थे महात्मा ज्योतिराव फुले शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार दीक्षित। इनसे बातचीत की थी प्रसारण अधिकारी चिन्मय दीक्षित जी ने। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। आइए बढ़ते हैं हमारे क्रम की ओर, जिसका शीर्षक है खत। दोस्तों, आज की दुनिया में मैसेजेस सेकेंड्स में पहुंच जाते हैं, टाइपिंग से लेकर सीन होने तक रिश्ते यहीं पर सिमट कर रह गए हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब लोग अपने जज्बात कागज पर उकेरते थे और उस कागज को कहते थे खत, जो कि हमारा आज का शीर्षक है। दोस्तों, खत सिर्फ शब्द नहीं होते, उनमें इंतजार होता था, स्याही में छुपा प्यार होता था और हर मोड़ पर अपने का एहसास होता था। कभी माँ का खत, कभी दोस्त का पैगाम, तो कभी किसी की मोहब्बत का इजहार। कागज पर उतरे लफ्ज दिल की आवाज बन जाते थे, जो बातें कह ना पाए वो खत कह जाते थे। दोस्तों, आज भी अगर किसी पुराने बक्से या किताबों में कोई पुराना खत मिल जाए तो यकीन मानिए वो सिर्फ कागज नहीं होता, वो एक पूरा दौर होता है। उनमें छुपी होती है पुरानी हंसी,

तेरी यादों की खुशबू से महक जाती है हर रात। मैं जब भी लिखता हूँ कोई ख़त, तेरा नाम उतर आता है। कागज़ पर स्याही नहीं, दिल के जज्बात लिखे हैं। कागज़ पर स्याही नहीं, दिल के जज्बात लिखे हैं। इस ख़त में हमने अपने अधूरे हालात लिखे हैं। पुराने ख़त संभाल कर रखना आदत सी बन गई है। उनमें तेरी मोहब्बत की

हल्की सी आहट सी बन गई है। वो खत आज भी किताबों में छुपा रखा है मैंने, वो खत आज भी किताबों में छुपा रखा है मैंने, जिसमें पहली बार मुझे अपना लिखा था तूने। दोस्तों, अल्फाज जो कभी मोबाइल स्क्रीन पर नहीं थे बल्कि दिल से निकलकर कागज पर उतारे जाते थे। कभी किसी का इंतजार डाकिये की घंटी से जुड़ा होता था तो कभी किसी की मोहब्बत एक लिफाफे में बंद। सच तो ये है कि कुछ रिश्ते आज भी पुराने खतों में ही जिंदा है।

0: दोस्तों, आज का हमारा क्रम शीर्षक संगीत आगे भी जारी रहेगा और आपको सुनवाया जाएगा एक और गीत। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, आज है 22 मई और आज है जयंती भारतीय पुनर्जागरण के दूत राजा राममोहन रॉय की। तो उनकी जयंती पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। और दोस्तों, आज ही है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो इसी क्रम में आइए सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में खंडवा के शासकीय SNPG महाविद्यालय के जूलॉजी और इकोलॉजी के प्रोफेसर विकास उपाध्याय के विचार।
1: हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 22 मई 2026 को विश्व जैव विविधता दिवस अर्थात वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे मनाया जा रहा है। UN जनरल असेंबली द्वारा 1993 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी और बाद में इसे सन 2000 में 22 मई के दिन शिफ्ट कर दिया गया था। 1992 में नैरोबी फाइनल एक्ट के अंतर्गत इसे 22 मई को शिफ्ट करने का प्रस्ताव लाया गया था। जैव विविधता दिवस का क्या अर्थ है? हम सबको मालूम है विविधता का अर्थ होता है वैरायटी। हम रोज एक ही तरह का खाना नहीं खा सकते। एक ही तरह का खाना रोज खाने पर हमें बोरियत हो जाएगी। इसी तरह हम रोज एक ही कपड़े बार बार नहीं पहनते। हमें उसमें वैरायटी यानी विविधता चाहिए होती है। रोजमर्रा के कार्य करते हुए हम बोर हो जाते हैं और हमें कुछ चेंज चाहिए होता है, मनोरंजन चाहिए होता है, और वो मनोरंजन भी एक जैसा नहीं, अलग अलग होना चाहिए। तो हमने ये देखा कि जीवन के कई आयामों पर, कई पड़ावों पर हमें विविधता चाहिए होती है। एक ही जैसी चीजें नीरसता या मोनोटोनी पैदा करती हैं। पृथ्वी, जो कि इस सौरमंडल ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड का बहुत ही अनोखा ग्रह है, वह इस मायने में कि इसी ग्रह पर जीवन है। यह जीवन अपने साथ कई तरह की विविधताओं के साथ मौजूद है। जैव विविधता का अर्थ होता है एक दिए गए इकाई क्षेत्र में कितने प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, कृमि, सूक्ष्म जीव इत्यादि मौजूद हैं। जितने ज्यादा संख्या में और ज्यादा प्रजातियों में विविध किस्म के पेड़ पौधे और जीवधारी किसी एक इकाई क्षेत्र में पाए जाते हैं, वो उसकी जैव विविधता का निर्माण करते हैं। पृथ्वी पर जीवन आश्चर्यजनक रूप से कई विविधता लिए हुए है। जैसे यदि आप किसी गेहूं या चावल के खेत के किनारे खड़े हो तो उस खेत में केवल एक ही प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, या तो चावल या गेहूं। इस प्रकार किसी एक ही प्रकार के या एक ही प्रजाति के पौधों या पेड़ों की खेती करना या कल्चर करने को मोनोकल्चर कहते हैं। लेकिन यदि आप किसी उष्णकटिबंधीय वर्षावन या उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन के किनारे खड़े हैं तो वहां पर हर पेड़ हर पौधा अलग होगा। वहां पर पेड़ पौधों की बहुत विविधता होगी, बहुत वैरायटी होगी। इसी के साथ वहां पर जीवधारी भी

विविधता या वैविध्य रूप से मौजूद रहेंगे। ये विविधता ही जैव विविधता का निर्माण करती हैं। भारत सहित विश्व के वे देश जिनमें कई प्रजातियों के असंख्य अनोखे जीवधारी पाए जाते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट का निर्माण करते हैं। जैसे ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय अमेरिका के देश जिनमें पैराग्वे, उरुग्वे, कोस्टा रिका, ब्राजील इत्यादि आते हैं, अफ्रीका में कॉन्गो, गैबन, कैमरून, चाड, केन्या इत्यादि आते हैं, एशिया में भारत, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस और तिमोर जैसे देश आते हैं, तथा साथ ही पूर्वी और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। ये सारे देश जैव विविधता के मामले में बहुत धनी हैं। जैव विविधता के अंतर्गत कुछ और तथ्य या बातें भी शामिल हैं, जैसा पहला अनुवांशिक विविधता। इसमें एक ही प्रजाति के जीवों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के गुण या जीन्स में वैरायटी या विविधता होती है। प्रजातीय विविधता, इसमें विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रजातियां आती हैं। और तीसरा पारिस्थितिकी विविधता, जिसमें जंगल, नदी, रेगिस्तान, समुद्र, घास भूमि इत्यादि विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता आती है। जैव विविधता एक बहुत ही नाजुक संवेदनशील मुद्दा होता है। हर जीव पारिस्थितिक तंत्र में एक विशेष भूमिका निभाता है। यदि कोई जीव या प्रजाति कम हो जाए, समाप्त हो जाए, तो पारिस्थितिक तंत्र का पूरा संतुलन ही प्रभावित हो जाता है। जैव विविधता में विभिन्न प्रकार के भोजन और औषधियां भी आती हैं। शायद आपको ये बात मालूम होगी कि एशिया, अफ्रीका के देशों में जहाँ जैव विविधता बहुत ज्यादा है, वहां पर कई किस्म के भोजन, औषधियां, फल, सब्जियां और फसलें होती हैं। ये सब मिलकर जैव विविधता को संपुष्ट बनाते हैं। जैव विविधता भोजन, औषधियों, आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व तक फैली हुई है। कृषि, मत्स्य पालन, वन, उद्योग, पर्यटन जैसे क्षेत्रों की नींव जैव विविधता ही है। इसके अलावा जैव विविधता का सांस्कृतिक महत्व भी होता है, क्योंकि कई समुदायों की परंपराएं, धार्मिक मान्यताएं, धर्म, जीवन जीने की शैली इत्यादि प्रकृति से जुड़ी होती है। जिस देश की या जिस महाद्वीप के देशों की जैव विविधता जितनी बढ़िया होती है, उतना ही ज्यादा सांस्कृतिक रूप से वे धनी या समृद्ध होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जैव विविधता एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आज के समय में जैव विविधता के ऊपर बहुत से खतरे मंडरा रहे हैं, जिनमें बेतहाशा मनुष्य की आबादी में वृद्धि होना, वनों एवं प्राकृतिक स्थलों का विनाश होना, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, अवैध शिकार, प्राकृतिक आवासों यानी हैबिटेट्स का नष्ट होना, अत्यधिक औद्योगिकरण और प्रकृति का दोहन, और विदेशी आक्रामक प्रजातियों का अपने मूल स्थान से किसी अन्य देश या स्थान पर जाकर पनपना। इन सब कारणों से वर्तमान में जैव विविधता के ऊपर कई तरह के आसन्न खतरे मंडरा रहे हैं। यदि हम हमारे देश की बात करें, तो हमारा देश विश्व के पटल पर सबसे धनी जैव विविधता वाले देशों में शामिल है। यहाँ पर हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है, हर प्रकार के आवास जिनमें बर्फीला, टैगा, टुंड्रा, उच्च कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, रेगिस्तान, मैदान, पठार, पौधों और घास से भरी हुई घाटियां इत्यादि शामिल हैं। हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सुंदरवन, थार मरुस्थल, उत्तर पूर्वी भारत में आसाम और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्र, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे द्वीप, ये सब मिलकर हजारों तरह के पौधे, पक्षी, स्तनधारी, सरीसृप, कीड़े मकोड़े, बिच्छू,

0: और असंख्य पौधों और पेड़ों का घर है। भारत के मुख्य जैव विविधता हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और अंडमान निकोबार आइलैंड हैं। जैसा कि हमने चर्चा की कि जैव विविधता के ऊपर वर्तमान समय में कई तरह के खतरे मंडरा रहे हैं, इन्हें कम करने के लिए हमें ही प्रयास करने होंगे। वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण करना, प्राकृतिक जल स्रोतों की रक्षा करना, वन्यजीव संरक्षण कानूनों को दृढ़ता से लागू करना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना और प्रदूषण कम करना, सतत विकास को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय शिक्षा और जन जागरूकता फैलाना, ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करने पर हम जैव विविधता के संरक्षण में थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए भी ये संदेश है कि वे पेड़ लगाएं, उनकी देखभाल करें, पानी, बिजली और अन्य ऊर्जा के स्रोत की कम से कम उपयोग करें, पक्षियों जानवरों को नुकसान न पहुंचाएं, पर्यावरण संरक्षण अभियानों में भाग लें और जन सामान्य में पर्यावरण चेतना की अलग जगाएं। इस तरह विश्व जैव विविधता दिवस हमें यह याद दिलाता है कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता ही मानव अस्तित्व की आधारशिला है। यदि जैव विविधता सुरक्षित रहेगी तभी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। प्रकृति की रक्षा करना केवल सरकारों का नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।
1: दोस्तों, अभी आपने सुना अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय SNPG महाविद्यालय के जूलॉजी और इकोलॉजी के प्रोफेसर विकास उपाध्याय को। वो कागज आज भी महकता है तेरी यादों से, जिस पर कभी तेरे हाथों में मेरा नाम लिखा हुआ था। दोस्तों, दूसरे खत एक तरफ और मोहब्बत का पैगाम लाने वाले खत एक तरफ। क्यों, सही कहा ना? क्योंकि पहले मोबाइल फोन तो होते नहीं थे, तो अपने एहसास अपने प्रियतम तक पहुंचाने का एकमात्र साधन थे खत, जिनमें लोग अपनी भावनाएं शब्दों में पिरोकर उकेर दिया करते थे। और कमाल की बात तो ये है कि खत पढ़ने वाला उन भावनाओं को समझ भी जाता था, जबकि उस दौर में कोई इमोजी या स्टिकर भी नहीं हुआ करते थे। दोस्तों, कई बार हमने फिल्मों में देखा है कि खत देखकर उसे पढ़ने वाले को लिखने वाले का चेहरा नजर आता है, मानो वो व्यक्ति प्रत्यक्ष बैठकर अपनी बात कह रहा हो। आजकल ये बातें सुनकर भले ही हंसी आती हो, लेकिन कल्पना कीजिए उस दौर की, जब एक खत किसी इंसान की पूरी जिंदगी बन जाया करते थे। आजकल संदेश जिस तक पहुंचाना होता है बड़ी आसानी से पहुंच जाता है, लेकिन खत इस मामले में थोड़े से अनलकी थे। कई बार कुछ खत अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते थे, तो कुछ खत अधूरे रह जाते थे, और कई बार तो होता ये था कि खत जिसके लिए लिखा है उस तक ना पहुंचकर किसी और के ही हाथों लग जाता था। और शायद यही अधूरी बातें उम्र भर याद रह जाती थी कि काश वो खत सही समय पर सही इंसान तक पहुंच गया होता। इसीलिए तो खत मिलने पर खत मिल गया है इसकी पुष्टि के लिए इसके जवाब के रूप में एक और खत लिखा जाता था।

दोस्तों, हमें भी इंतज़ार रहेगा आपके खत का, जिसमें आप हमें बताइएगा कि आपको हमारा आज का क्रम कैसा लगा। अब आइए चलते चलते जान लेते हैं हमारे आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न था, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? इसका उत्तर है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। और आज का हमारा दूसरा प्रश्न था, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। अब ये तो थे आज के प्रश्नों के उत्तर। अब कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए अनुमति आपकी दोस्त प्रियंका वाणी को। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
1: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
0: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
1: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
2: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

0: ये धरती ये नदिया ये रैना
1: आकाशवाणी खंडवा सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत सभी प्रकार की प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय जल्द ही ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमरे और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी से लैस स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज की मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। ये पोस्टमार्टम नई दिल्ली के डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देशभर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा।

0: माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मौत हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर ये चौथी मौत है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुनी रहे आज निर्माण की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: मंगल भवन मंगल हारी
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700-001-4242।
3: ओ 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।

0: ये धरती ये नदिया ये रैना
1: आकाशवाणी खंडवा सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन।

0: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
1: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
0: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
1: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
2: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
3: अरे बैठना होनी, काई हुई गयो आज?
4: हम सुनी रहे आज आकाशवाणी खंडवा, निमाड़ की सुरीली धड़कन।
5: ना आज तक निमाड़ की

0: सुरीली धड़कन सुनी खना।
1: मजा आ गया।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा। ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन
0: आकाशवाणी खंडवा।
3: ये

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति से की मुलाकात, कई अहम क्षेत्रों में हुए समझौते। कल 19वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्री समिट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सभी टाइगर रिजर्व के पास बनेंगे वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर। और त्रिशा शर्मा मामले में हाईकोर्ट ने एम्स दिल्ली से दूसरा पोस्टमार्टम कराने का दिया आदेश। प्रदेश सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट से मुलाकात की। दोनों देशों ने आतंकरोधी, नवाचार, उच्च शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग समेत कई क्षेत्रों में समझौते किए। श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो चुका है और अगले 5 साल में इसे फिर से दोगुना करने का लक्ष्य है।
4: यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी। हम साइप्रस के साथ मिलकर गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल फाइनेंशियल और सर्विसेज हब बनाने के विजन को गति देंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश के 47 स्थानों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा। चुने गए युवा रेल, गृह, स्वास्थ्य और वित्त समेत कई सरकारी विभागों में काम संभालेंगे। श्री मोदी इस मौके पर युवाओं को संबोधित भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर आज भोपाल के IIFM में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्री समिट हुआ। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की GDP का आधे से अधिक हिस्सा जैव विविधता से जुड़ा है और इसे बचाना जरूरी है।
5: हमने 2014 में देश में 24 रामसर साइट्स थी, उसको बढ़ा करके अब 99 की और बहुत जल्दी हमारी 100 साइट्स जो है रामसर साइट्स हो जाएंगी। इंदौर तो वेटलैंड सिटी ही डिक्लेयर हुआ है। ये जो वेटलैंड है ये भी हमारी बायोडायवर्सिटी की समृद्ध धरोहर ही नहीं बल्कि हमारे जल संरक्षण और जलवायु संतुलन और लाखों लोगों की आजीविका का आधार भी है।
3: वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के आसपास वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे ताकि घायल जानवरों को भोपाल न लाना पड़े। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रहे जलगंगा संवर्धन अभियान की जानकारी भी दी।
6: हमारी सरकार ने जल संरक्षण को लेकर भी तीसरा साल चल रहा है हमने

0: इसको केवल कर्मकांड नहीं, इसको प्रतिबद्धता के बलबूते। तो इस साल भी लगातार हम अब की बार तो और 3 महीने तक गुड़ी पड़वा से 30 जून तक लगभग 3000 करोड़ से 56000 से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्वार, साथ ही साथ 827 बावड़ी, 1200 से अधिक तालाब, 18 लाख से अधिक नागरिकों की भागीदारी करते हुए जल संरक्षण को लेकर अलग अलग राज्यों में मध्यप्रदेश नंबर 1 पे है।
1: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने आज जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया, जिसमें पहले सिर्फ 8 डिब्बे थे। इस मौके पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के दूसरे चरण और जैसलमेर में नए कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 2 दिन के प्रदेश दौरे पर हैं। वे अपने संसदीय क्षेत्र के अशोकनगर, शिवपुरी और गुना जाएंगे। दौरे से पहले श्री सिंधिया ने समर्थकों से अपील की कि उनके स्वागत में कोई पेट्रोल डीजल वाहन न जलाए और उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में ईंधन को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 18 जून को 12 राज्यों की 26 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें प्रदेश की 3 सीटें भी शामिल हैं। इन तीनों सीटों पर बैठे सदस्यों का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और बीजेपी के जॉर्ज कुरियन और डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी शामिल हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। तुषार शर्मा केस में आरोपी पति समर्थ सिंह आज शाम जबलपुर जिला कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा। इससे पहले समर्थ सिंह ने हाईकोर्ट में दायर अपनी अग्रिम जमानत की याचिका भी वापस ले ली थी। वहीं हाईकोर्ट ने आज तुषार का दोबारा पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए हैं, जो दिल्ली एम्स के डायरेक्टर की अगुवाई में भोपाल एम्स में होगा। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और तब तक पुलिस को शव सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने CBI जांच के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेज दिया है। धार में भोजशाला को वागदेवी का मंदिर घोषित करने के बाद आज पहले शुक्रवार को हिंदू समुदाय ने पूजा अर्चना की। हाईकोर्ट ने 15 मई को शुक्रवार की नमाज पर रोक लगाते हुए यह फैसला दिया था। आज सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और दोपहर 1 बजे महाआरती हुई। माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा और करीब 1800 सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने अशोकनगर कलेक्टर को चंदेरी के गाड़िया लोहार परिवारों को जल्द आवासीय पट्टे दिलाने के निर्देश दिए हैं। गाड़िया लोहार समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से मिलकर अपनी मांग रखी। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सभी पात्र परिवारों को शासन की योजनाओं का पूरा लाभ दिया जाएगा। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। परीक्षा हर रोज 4 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। इस साल से क्लर्क और स्टोरकीपर पदों के अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट भी ऑनलाइन केंद्र पर ही लिया जाएगा। प्रदेश में ESIC के तहत पंजीकृत मजदूरों और उनके परिवार को अब कैशलेस आयुष चिकित्सा का फायदा मिलेगा। इसके लिए श्रम विभाग और आयुष विभाग के बीच एक समझौता हुआ है। श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार की मौजूदगी में ये MOU साइन किया गया। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में नौतपा से पहले ही गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। कई शहरों में पारा 38 से 40 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज 41 जिलों में लू की चेतावनी जारी की। वहीं निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट रहा। इसके अलावा 25 मई से नौतपा शुरू होगा और उसके बाद गर्मी और भी बढ़ने की आशंका है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। RSS प्रमुख डॉ मोहन भागवत ने आज शहडोल के सरस्वती शिशु मंदिर में चल रहे मध्य क्षेत्र कार्यकर्ता विकास वर्ग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के सदुपयोग पर बल दिया है। बैतूल कलेक्टर ने आज रानीपुर पुलिस थाना म्यूजियम में संरक्षित ऐतिहासिक सामग्री एवं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त की। झाबुआ कलेक्टर आज राणापुर विकासखंड के ग्राम समोई में संतृप्ति शिविर में शामिल हुए और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। बुरहानपुर में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने इंदौर इच्छापुर हाईवे निर्माण का निरीक्षण कर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। राजगढ़ जिले की 23 आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों के लिए जारी भर्ती की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। शहडोल के केशवाही वन परिक्षेत्र में एक जंगली हाथी के रेस्क्यू के लिए वन विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। खंडवा में आगामी त्योहारों को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। CBSE ने 12वीं की आंसरशीट की स्कैन कॉपी मांगने की आखिरी तारीख एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। जापान में होने वाले Under-18 एशिया कप के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम में प्रदेश के 6 खिलाड़ी और महिला हॉकी टीम में प्रदेश की 4 खिलाड़ियों का चयन

किया गया है। और आईपीएल में अब से कुछ देर में हैदराबाद में सनराइजर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति से की मुलाकात, कई अहम क्षेत्रों में हुए समझौते। कल 19वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्री समिट, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा सभी टाइगर रिजर्व के पास बनेंगे वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर। और तुषार शर्मा मामले में हाईकोर्ट ने एम्स दिल्ली से दूसरा पोस्टमार्टम कराने का दिया आदेश, प्रदेश सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

FM बैंड 101.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला सभी भाई बहन का आपकी बहन तरुणा शुक्ला की राम राम। भाई बहनों, हम देखी राज के दिन पर दिन तापमान में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई रही। जलवायु परिवर्तन का कारण प्रकृति को संतुलन बिगड़ तो जाई, रोज मौसम में अनियमितता ही गई। गर्मी ठंड का साथ वर्षा भी प्रभावित हुई रही। कभी बहुत अधिक बारिश थी, बाढ़ की स्थिति बनी जाए तो कहीं बहुत सूखो पड़े। तेज गर्मी, पक्की सड़क न, पक्का मकान न की बहुत अधिक संख्या, पेड़ न की कटाई, इन सब का कारण भूमिगत जल को स्तर भी गिरतो जाई रोज। ऐसी स्थिति में जल संवर्धन करनू बहुत जरूरी छे। जल संवर्धन को मतलब छे जल को संरक्षण न भविष्यकालीन ओको संचय यानी कि इकट्ठो करी न रखनू। एकालीन हमका छोटा छोटा प्रयास जरूर करनू चाहिए, जैसा कि अपना घर में पानी व्यर्थ नहीं बहने देनू, जितनी जरूरत हो उतो पानी का उपयोग करनू चाहिए, नल कभी खुला नहीं छोड़नू, वर्षा जल का संरक्षण कालीन बारिश का पहले तालाब न कुआ न की साफ सफाई करनू, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करनू भाई बहनों, क्योंकि ये पेड़ जो छे वो बारिश का बढ़ावज न भूजल स्तर का बनाए रखने में भी मदद करे। खेती में भी आधुनिक सिंचाई पद्धति न जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर यानी कि फव्वारा पद्धति का उपयोग करना चाहिए, ताकि कम पानी में पर्याप्त सिंचाई हो सके। उद्योग न कारखाना न कि जल का फिर से उपयोग करने की व्यवस्था करनी चाहिए। भाई बहनों, जल हमारी आने वाली पीढ़ी सबकी, हमारी भी न आने वाली पीढ़ी की भी सबकी आवश्यकता है। यो प्रकृति को एक अमूल्य उपहार छे, जेका बिना जीवन असंभव छे। एकालेन हम जल को संरक्षण न संवर्धन करनू हम सबको कर्तव्य छे। आज यदि हम जल बचावांगा तमज भविष्य सुरक्षित रहेगा। एकालेन जागरूकता लावनू भी बहुत जरूरी छे। हमका तो जल को संरक्षण करनू साथ ज दूसरा नखा भी जल संरक्षण कालीन प्रेरित करनू चाहिए। भाई बहनों, जल छे तो कल छे, इन्हीं बात का ध्यान में रखी ना, जल संरक्षण कालीन अधिक से अधिक योगदान देनू चाहिए। अब आपका आज को हम प्रश्न बतेरे बन, आज को प्रश्न छे खरीफ मौसम की प्रमुख चारा फसल न कौन कौन सी छे। भाई बहनों, इन्हा

0: प्रश्नकोत्तर हमेशा की तरह हम बतावांगा कार्यक्रम का अंत में। तब तक आप कार्यक्रम सुनता रहो, कार्यक्रम को आनंद लियो, न इना प्रश्न का उत्तर पर विचार करो।
1: आप सुनी रहा निर्माण की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
0: भाई बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस छे। हर साल 22 मई का हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनावा। जैव विविधता को मतलब छे हमारा आसपास पाया जाने वाला अलग अलग तरह का पेड़ पौधा, पशु पक्षी, कीट सूक्ष्म जीव न कई तरह का प्राकृतिक संसाधन। साधारण शब्द न में यदि हम कहा तो प्रकृति में मौजूद हर जीव हर वनस्पति जैव विविधता को हिस्सों छे। यदि हम जैव विविधता को संरक्षण करांगा तवज प्रकृति को संतुलन बनेल रहेगा। न प्रकृति का साथ सामंजस्य बने न यदि हम चलांगा तवज मनुष्य को अस्तित्व भी सुरक्षित रहेगा। हमारी खेती न जैव विविधता को भी बहुत गहरो संबंध छे। खेत में रहने वाला केचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनावज, मधुमक्खी न तितली परागण करी न फसल को उत्पादन बढ़ावज, न बहुत सा ऐसा पक्षी छे जो हानिकारक यानी कि नुकसान पहुँचाने वाला कीट न खाई न फसल न की रक्षा करे। यानी प्रकृति का बहुत सा जीव खेती में किसी न किसी रूप में योगदान दे। लेकिन आज रासायनिक खाद उर्वरक न कीटनाशक न को बहुत अधिक उपयोग हो रोज, पेड़ की कटाई जल स्रोत न का प्रदूषण का कारण जैव विविधता लगातार कम होती जा रही। वनस्पति की न पक्षी न की बहुत सी प्रजाति न भी जो छे वो विलुप्त होती जा रही। इन सब को हम का संरक्षण करनु। जैव विविधता कम होना को असर खेती पर भी दिखाई देने लगे। मिट्टी की उर्वरता घटती जा रही, नया नया रोग न कीट न की संख्या बढ़ी रही, न उत्पादन लागत भी बढ़ती जा रही। ऐसी स्थिति में किसान भाई ने कहा जैव विविधता संरक्षण कालीन जरूरी कदम उठानू चाहिए। खेत की मेड़ न पर पेड़ लगानू चाहिए। मिश्रित न बहुफसली खेती अपनानू चाहिए। देसी बीज को संरक्षण करनू चाहिए न जैविक खेती का बढ़ावो देनू चाहिए। जैविक खेती न प्राकृतिक खेती बहुत ज़्यादा लाभकारी रहे। एकासी मिट्टी भी स्वस्थ रहेगा, पानी की बचत होएगा, न खेती लंबा समय तक टिकाऊ बनेल रहेगा। भाई बहनों, यदि खेत में एक फसल लगातार बोवान तो मिट्टी में जो आवश्यक पोषक तत्व छे उनकी कमी होने से उत्पादन भी कम हो न मिट्टी कमजोर होने लगे। लेकिन यदि हम फसल चक्र अपनावांगा, अलग अलग फसल बोवांगा तो मिट्टी को संतुलन बनेल रहेगा, न नुकसान भी कम होएगा। खेती का साथ पशुपालन बागवानी भी यदि हम कराएं तो जैव विविधता मजबूत बने। तो भाई बहनों, प्रकृति सुरक्षित रहेगा तमज खेती भी सुरक्षित रहेगा। आने वाली पीढ़ी नख स्वस्थ पर्यावरण मिलेगा, पौष्टिक अन्न मिलेगा तो मनुष्य को जीवन भी सुरक्षित रहेगा। एकालेन हम सब का संकल्प लेना चाहिए कि हम जैव विविधता को संरक्षण करांगा। भाई बहनों, आओ सुना वार्ता जेको विषय छे बागवानी फसलें और जलवायु परिवर्तन। जानकारी रे राज मंजुला पवार, वाचक स्वर तरुणा शुक्ला को। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे बागवानी फसलें और जलवायु परिवर्तन विषय पर। वाचक स्वर तरुणा शुक्ला का। भाइयों और बहनों, जलवायु परिवर्तन का सभी फसलों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बागवानी फसलों के अंतर्गत फल सब्जी फूल मसाले और औषधीय पौधे आते हैं, या हम ये कहें कि बाग या खेत में उगाई जाने वाली फल सब्जी और फूलों की फसलें बागवानी फसलें कहलाती हैं। भाइयों और बहनों, जलवायु परिवर्तन से बागवानी फसलों के उत्पादन और गुणवत्ता में महत्वपूर्ण चुनौतियां आती हैं, क्योंकि तापमान में वृद्धि, अनियमित वर्षा और चरम मौसम की घटनाएं होती हैं। ये परिवर्तन फसलों की वृद्धि विकास उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर बागवानी की कृषि पद्धति बाधित होती है। लंबे समय तक सूखा और बेमौसम बारिश जल की उपलब्धता को कम कर सकती है, जिससे फलों और सब्जियों जैसी सिंचाई पर निर्भर रहने वाली फसलें प्रभावित होती हैं। इसी तरह तापमान में उतार चढ़ाव फूल परागण और फलने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, जिससे उत्पादकता कम हो जाती है। जैसे सेब

और चेरी फसलों को ठंडे वातावरण की जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन कीटों और बीमारियों को भी बढ़ावा देता है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ती है और फसल स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। गर्मी के कारण कई क्षेत्रों में उत्पादन कम हो रहा है, बागवानी फसलें बहुत अधिक खराब होने वाली होती हैं और आंधी से कटाई से होने वाले नुकसान के प्रति भी अधिक संवेदनशील होती हैं। भाई और बहनों, जलवायु अनुकूल फसल किस्मों को अपनाना, परिशुद्ध खेती और एकीकृत कीट व रोग प्रबंधन जैसी कुशल रणनीतियां आशा प्रदान करती हैं। कृषि जैसी तकनीकों का लाभ उठाने से बागवानी को और अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। बागवानी फसलें जिनमें फल, सब्जियां, मसाले और सजावटी पौधे शामिल हैं, समशीतोष्ण मौसमों में ठंडे घंटों की कम उपलब्धता से पहले ही सेब और चेरी जैसे फलों को प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त उच्च तापमान के कारण कटाई के बाद होने वाले नुकसान भी बढ़ सकते हैं, जिससे भंडारण और परिवहन प्रभावित हो सकता है। इसके प्रभाव से उत्पादन के स्तरों और आर्थिक व सामाजिक पहलुओं तक फैल जाते हैं, जिससे किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। वैज्ञानिक नवाचारों और नीति समर्थन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी कम करना बागवानी फसलों के उत्पादन और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बागवानी फसलों पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों की यदि हम बात करें तो बागवानी फसलों पर जलवायु के विभिन्न कारकों का परिणाम उनकी वृद्धि, विकास, उत्पादकता और गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। जलवायु कारक जिनमें तापमान की बात यदि हम करें तो निम्न तापमान में पाला, फूलों और फलों को नुकसान पहुंचा सकता है। उच्च तापमान के कारण धूप से झुलसने की समस्या हो सकती है। आम और लीची जैसी फसलों के फल खराब हो सकते हैं। दूसरा एक कारक है वर्षा। अत्यधिक वर्षा से जलभराव, फफूंद संक्रमण, रोग तथा गुणवत्ता में कमी हो सकती है। न्यूनतम वर्षा की स्थिति में सूखे के कारण अधिक पानी की जरूरत वाली फसलों की वृद्धि रुक जाती है और उपज कम होती है। तेज हवाएं पेड़ों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, फलों को गिरा सकती हैं। प्याज में 6 दिन तक जलभराव की स्थिति रहने पर लगभग 36.6% उपज की हानि होती है। टमाटर में फूल खिलने के चरण में तापमान के 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर लगभग 65% उपज की हानि होती है और कीटों और रोगों के संक्रमण को फैला सकती हैं। पर्यावरण के मानवीय कारक के यदि हम बात करें तो सबसे पहले है जलवायु परिवर्तन, जिससे अप्रत्याशित मौसम के स्वरूप से पुष्पन, परागण और फसल चक्र बाधित करते हैं। दूसरा होता है प्रदूषण। कीटनाशकों और औद्योगिक प्रदूषण उत्सर्जन से फलों की गुणवत्ता और सुरक्षा कम हो सकती है। तीसरा है श्रम की कमी। मौसम परिवर्तन के दौरान कुशल श्रमिकों की कमी के कारण कटाई में देरी हो सकती है, जिससे फलों की गुणवत्ता में कमी आ सकती है। फलों के वृक्षों पर चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव के बारे में यदि हम बात करें तो ये देखा गया है कि कई फसलें गर्मी और ठंडी लहरों की स्थिति से काफी नुकसान उठाती हैं, जो चरम मौसम की घटनाएं हैं। कहा जाता है कि तापमान आम, लीची और अमरूद जैसी बागवानी फसलों में फूल आने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। आम में वनस्पति प्रबंधन होता है जो फूल आने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है और तापमान के साथ बढ़ता जाता है। देर से उभरने वाले पुष्पगुच्छों में फलों के अत्यधिक प्रतिशत के साथ उच्चतर तापमान का सहसंबंध पाया गया। 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक खिलने की अवधि के तापमान के साथ लंबे समय तक धूप, 49% की कम सापेक्ष आर्द्रता और भारी वर्षा घटनाओं के कारण पुष्पगुच्छ निर्जलित हो गए और उन्हें नुकसान पहुंचा। आम के पेड़ फल देने वाले और न देने वाले दोनों ही उपघात के परिणाम स्वरूप अक्सर पत्तियां झुलस जाती हैं और अंत में टहनियां भी मर जाती हैं। भाई और बहनों, जल्दी या देरी से फूल आना, बार बार पुष्पन क्रिया का वानस्पतिक कलियों में बदलना आम के पेड़ों में जलवायु परिवर्तन के कुछ मुख्य परिणाम हैं। आलू और बेर जैसी फसलें जिन्हें कम ठंडे तापमान की जरूरत होती है, उनमें भी उपज में गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। फलों के पकने के समय तापमान में वृद्धि से आम के फल समय से पहले पक जाते हैं और लीची के फल फटने के साथ साथ झुलस भी जाते हैं। केले की फसल में जल जमाव के फ्यूजेरियम विल्ट की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है और पपीते में अधिक नमी से फाइटोफ्थोरा ब्लाइट और रूट रॉट की समस्या बढ़ जाती है। असमय वर्षा से फल सेटिंग घटती है, जबकि उच्च तापमान स्वाद और रंग पर असर डालती है। अमरूद में फल फटना, ऑन्सर और सनबर्न की समस्या बढ़ती है और बैक्टीरियल ब्लाइट और फल मक्खी का प्रकोप देखा जाता है। जामुन में वर्षा और तेज हवाओं से फलों के झड़ने की घटनाएं अधिक होती हैं। सब्जी फसलों पर जलवायु परिवर्तन का गहरा प्रभाव पड़ता है। आलू में बढ़ते तापमान से कंद बनने की अवधि कम हो जाती है। देर से बोई गई फसल की उपज लगभग 15-20% घटती है तो आर्द्र मौसम में लेट ब्लाइट से फसलें प्रभावित होती हैं। टमाटर में असमय वर्षा और नमी से अर्ली और लेट ब्लाइट का प्रकोप बढ़ जाता है। उच्च तापमान से

0: फलों की गुणवत्ता और भंडारण क्षमता घट जाती है। अधिक वर्षा से प्याज फसल खराब होती ही है, साथ ही भंडारण में भी किसान भाइयों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मटर और दूसरी शीतकालीन सब्जियां पाला व ठंडी हवाओं से अंकुरित होने लगती हैं। गोभी और फूलगोभी की फसलों में तापमान और आर्द्रता के उतार चढ़ाव से ब्लैक रॉट व डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे गुणवत्ता प्रभावित होती है। खट्टे फलों में असमय सर्दियों की बारिश फूलों के खिलने के बजाय वनस्पतियों के खिलने को बढ़ावा देती है। भाइयों और बहनों, जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों को निर्धारित करने के लिए तंत्र की परिवर्तन अनुकूलन क्षमता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की जलवायु। यह क्षमता जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होने वाली पर्यावरणीय चुनौतियों के साथ समायोजन करने की फसलों की क्षमता पर निर्भर करती है। फसल आधारित अनुकूलन विधियां जो उत्पादकता को बनाए रखने के लिए सभी उपलब्ध विकल्पों को एकीकृत करती हैं, उन्हें बदलते मौसम और कठिन परिस्थितियों के लिए प्रत्येक फसल की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए। वैज्ञानिकों के द्वारा पहले से ही उच्च तापमान, पाला और अत्यधिक गर्मी के कारण होने वाली तनाव की स्थिति जैसी चरम घटनाओं से निपटने के लिए कई समाधान विकसित किए गए हैं। जलवायु प्रभावों को कम करने और बागवानी उत्पादन प्रणालियों के लचीलेपन बढ़ाने के लिए फसल क्षेत्रीय ढांचे और मौसम आधारित प्रौद्योगिकियों के निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। भाइयों और बहनों, जलवायु परिवर्तन के तथ्यों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग के बीच संबंध शामिल है। बागवानी उद्योग जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को काफी हद तक कम कर सकता है, साथ ही बागवानी उत्पादन की पद्धतियों को उनके प्रभावों का सामना करने के लिए संशोधित कर सकता है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने या अलग करने की प्रक्रिया को शमन के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा की आवश्यकता पर निर्भरता कम होने के कारण बेहतर फसल प्रबंधन तकनीक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को भी काफी हद तक कम कर सकती है। इसके अतिरिक्त बारहमासी बागवानी फसलों को बढ़ावा देने पर वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करने में सहायता मिल सकती है। बागवानी फसलों पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के प्रभाव की यदि हम बात करें तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती है तो उससे कुछ फसलों की वृद्धि तेज हो सकती है, लेकिन इससे फलों और सब्जियों के पोषक तत्वों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। कई बार उत्पादन बढ़ने के बावजूद स्वाद और पोषण मूल्य में कमी देखी जाती है। मधुमक्खियों और परागण पर जलवायु परिवर्तन के कारण दूसरे परागण करने वाले कीटों की संख्या में कमी आ रही है, इससे परागण की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिसके कारण फलों का निर्माण कम होता है और उत्पादन घट जाता है। जल संरक्षण तकनीकों का इसमें बहुत अधिक महत्व है। ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, वर्षा जल संचयन तथा मल्चिंग जैसी तकनीकों का उपयोग जल की बचत करता है और सूखे की स्थिति में फसलों को सुरक्षित रखता है। जलवायु परिवर्तन के कारण फसल उत्पादन घटने से किसानों की आय भी प्रभावित होती है, इसलिए जल संरक्षण तकनीक जैसे ड्रिप सिंचाई, वर्षा जल संचयन और मल्चिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। जैविक खेती और रासायनिक उर्वरकों के कम उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है, इसलिए जैविक खेती को अपनाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन बागवानी फसलों के उत्पादन गुणवत्ता और किसानों की आय पर गहरा प्रभाव डाल रहा है, इसलिए भाइयों और बहनों, जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकों को अपनाना, जल संरक्षण करना और वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार खेती करना ही आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। किसान भाइयों, किसानों, वैज्ञानिकों और सरकार के संयुक्त प्रयास से ही बागवानी क्षेत्र को भविष्य की चुनौतियों के लिए अधिक सक्षम बनाया जा सकता है। नमस्कार।
1: भाई बहनों, अभी अपने सुनी वार्ता बागवानी फसलें और जलवायु परिवर्तन, जानकारी दे रहा था मंजुला पवार, वाचक स्वर थो तरुणा शुक्ला को। भाई बहनों, आओ सुना देवेंद्र सिंह सोलंकी को गायल यो निमाड़ी लोकगीत।

हरबैन होल अभी अपने निमाड़ी लोकगीत सुनियो। अब बारी छे आज का समाचार की। हमारा बहुत सा किसान भाई कपास की फसल की खेती करे, कपास में बहुत सा कीट न रोग लगे, तो विशेषज्ञ ने को कहनु छे कि कृषि विशेषज्ञ ने की सलाह के अनुसार दवा को चयन करनु चाहिए, एक दवा को लगातार उपयोग नहीं करनु चाहिए। कपास में संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस न पोटाश देनु चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसा जिंक न बोरान को उपयोग भी करनु चाहिए। ड्रिप फर्टिगेशन से घुलनशील खाद को बेहतर परिणाम मिले, न अनावश्यक स्प्रे से लागत बढ़े, न मिट्टी कमजोर हो, एकासी अनावश्यक स्प्रे करने से बचनु चाहिए। एकासाथ भाई बहन हो, मौसम की स्थिति चिलचिलाती धूप न शुष्क हवा की स्थिति बनेल छे। अभी भारत मौसम विज्ञान विभाग का अनुसार मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा न भीषण लू को अलर्ट भी जारी करेगा, तो दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचनु चाहिए, न पर्याप्त मात्रा में पानी पीता रहनु चाहिए। ये था समाचार। न अम कृषि उपज मंडी खंडवा से मिली जानकारी के अनुसार आज मंडी में उपज न का भाव ही रहा। सोयाबीन न्यूनतम भाव रहो 5,500 रुपया प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 8,312 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं को न्यूनतम भाव 2,075 रुपया प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 2,506 रुपया प्रति क्विंटल। तुअर को न्यूनतम भाव 4,980 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम भाव 7,199 रुपया प्रति क्विंटल। चना को न्यूनतम भाव 5,001 रुपया प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव रहो 5,821 रुपया प्रति क्विंटल। डॉलर चना को न्यूनतम भाव 6,100 रुपया प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 7,365 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का को न्यूनतम भाव 1,641 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम भाव रहो 1,948 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग को न्यूनतम भाव 5,000 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम भाव रहो 7,551 रुपया प्रति क्विंटल। ये थी मंडी भाव की जानकारी, न अम मौसम की जानकारी। आज सूर्योदय सुबह 5:41 पर, न सूर्यास्त शाम 6:55 पर हुयो। आज का दिन को अधिकतम तापमान 45 डिग्री से 46 डिग्री का लगभग रहो, न न्यूनतम तापमान रात को न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। ये थी मंडी भाव न मौसम की जानकारी। फाइव मिनट आओ सुनी लेवा एक निमाड़ी लोकगीत।

0: भाई बहनों, अभी अपन सुन रहा था जगदीश यादव न साथी नको गायल यू कृष्ण भजन।
1: आप सुनी रहा नीमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
0: भाई बहनों, अब बारी छे आज पूछा गया प्रश्न का उत्तर के। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे प्रश्न पूछो तो कि खरीफ मौसम में की प्रमुख चारा फसल न कौन कौन सी छे। तो खरीफ मौसम की प्रमुख चारा फसल न छे ज्वार, बाजरा, लोबिया, मक्का न पेड़ी। भाई बहनों, चलते चलते आपका एक करू जानकारी देनू। FPO जो छे फार्मर प्रोड्यूसर संस्था जो बनेल छे, ये संस्था किसान भाई ना का सशक्त बनावने में बहुत अधिक मदद करे। क्योंकि सामूहिक रूप से जब आप कोई आधुनिक यंत्र खरीदोज तो उमा भी आपका लागत कम लगज, यदि आप खाद बीज उर्वरक थोक में खरीदोज तो उमा भी आपका लागत कम मिलज, एक साथ बिचौलिया न से भी आपका मुक्ति मिलज, न सरकारी योजना न को लाभ भी आपको आसानी से मिली जाए। भाई बहनों, इन्हीं जानकारी का साथ हम आज का खेती गृहस्थी कार्यक्रम को समय पूरा हुई रोज। तो अपनी बहन तरुणा शुक्ला का आज्ञा देव, राम राम।

0: कंपाउंडर, अरे तू बैठा बैठा क्या कर रहा है?
1: कुछ नहीं, मक्खी मार रहा हूँ डॉक्टर साहब।
0: अरे मक्खी के साथ थोड़ी झक भी मारा कर। मुझे लगता है तू बिना नहाए ड्यूटी पर आता है, इसीलिए हमारे अस्पताल में कोई मरीज नहीं आता।
1: अजी मरीज कहाँ से आएंगे, आजकल कोई बीमारी होती नहीं।
2: कौन बोलता है डॉक्टर बजराज कि देश में बीमारी नहीं होती है? देश में कई प्रकार की भीषण भीषण बीमारियां फैली हुई हैं, क्या आप डॉक्टरों को पता तक नहीं?
0: क्या बोलते हैं आप महाशय, भीषण बीमारी? कहाँ, किधर? कंपाउंडर साहब को कुर्सी पर बैठाओ, मेरा मतलब है कुर्सी लाओ साहब के लिए।
1: लीजिए बैठिए।
2: साहब नहीं, हमारा नाम मणि शंकर है, प्यार से लोग बाग हमें मणि बाबू भी कहते हैं। हाँ तो मैं बोलता था डॉक्टर बजरंग
0: जी,
2: देखो ना अब हमारे घर में 8 आदमी हैं, सब के सब बीमार, 4 सीरियस बीमार और 4 लाइट सीरियस बीमार।
0: तो लाइए ना, सबको ठीक कर देंगे। हमारी दवा खाकर जो भी गया वो वापस नहीं आया। मेरा मतलब है फिर वो कभी बीमार नहीं पड़ा जी।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं सबको एक साथ लाऊं या एक एक करके लाऊं?
0: एक एक करके लाइएगा।
2: ठीक है ठीक है, तो मैं फिर लेकर आता हूँ। अच्छा
0: जी। अरे कंपाउंडर, तू रोज मक्खी मारा कर, अरे ये शगुन तो बहुत ही अच्छा होता है।
2: डॉक्टर साहब मैं अंदर आ जाऊं?
0: आइए आइए आइए आइए। वाह वाह।
2: डॉक्टर साहब
0: जी,
2: ये मेरी सबसे बड़ी लड़की है लवंग लता, उम्र 23 बरस है।
0: माफ कीजिएगा देवी जी, आप बताने का कष्ट करेंगी कि आपको क्या होता है?
3: मुझे पुरुषों की छाया से नफरत है।
0: बाप रे बाप, ये तो काटने को दौड़ती मुनि बाबू।
2: डॉक्टर बजरंग, घबराने की कोई बात नहीं है। इसे जरा प्यार से बेटी कहकर पुकारिए, ठीक ठीक और बराबर जवाब देगी।
0: अच्छा बेटी घबराओ नहीं, क्या होता है तुमको?
3: मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी, पुरुषों के खिलाफ बगावत करूंगी। आज तक जितने जुल्म पुरुषों ने स्त्रियों पर किए हैं उन सब का गिन गिन कर बदला लूंगी। पुरुष खाना बनाएंगे, औरतें नौकरी पर जाएंगी, पुरुष चूड़ियां पहनेंगे, औरतें शमशीर उठाएंगी। भारत की नारी जिंदाबाद, पुरुषों का बायकॉट हो, पुरुषों का सर्वनाश हो।
2: देखा डॉक्टर साहब, इस प्रकार के भाषण रोज घर में करती रहती है।
0: मुनि बाबू इनको बहुत सीरियस बीमारी हो गई है, आजकल ये बीमारी फ्लू की तरह फैली हुई है। इस बीमारी को लवेरिया कहते हैं।
2: लवेरिया?
0: जी हाँ लवेरिया।
2: अच्छा तो डॉक्टर बाबू इसका कोई इलाज?
0: इलाज जी हाँ है, मैं तो हर एक तरह के इलाज करता हूँ, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक।
2: इसमें डॉक्टर साहब जो सबसे पावरफुल जरा सस्ता इलाज कौन सा है?
0: तो सुनिए, सूरज की किरण 5 तोला, हवा का झोंका 4 माशा और गुलाब की खुशबू 3 रत्ती, इन तीनों को काले पत्थर के तेल में मिलाकर गोली बनाइए और जब मूसलाधार बारिश होती हो तो मैदान में रखकर सुखा लीजिए। सूखने के बाद 2 गोली सोने के बाद और 2 गोली सुबह उठने

0: से पहले एक हफ्ते में ठीक हो जाएगी।
1: ठीक तो हो जाएगी, पर ये सब वस्तुएं, गुलाब की खुशबू, सूरज की किरण, मिलेगी कहाँ से?
0: नहीं मिलेगी तो इसको एंटी लेवेरिया का इंजेक्शन दो, ठीक हो जाएगी, समझे? जाइए कल दूसरे पेशेंट को लाइएगा। कंपाउंडर, अरे जरा रोज मक्खी मारा कर, समझा?
2: अरे कल से मैं और भी मक्खियां मारा करूंगा।
3: डॉक्टर बाबू मैं आ गया।
0: आ गया,
3: ये हमारा सबसे बड़ा लड़का है, कौड़ी शंकर। डॉक्टर साहब को नमस्ते करो, बताओ कि क्या होता है बेटे तुम्हें?
2: अरे डॉक्टर साहब, नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते।
2: कल अपना घोड़ा शॉर्ट हेड से मार खा गया, बड़ा गड़बड़ हो गया। घोड़े की जन्म पत्री भी ज्योतिषी को दिखाई थी, मंगल नवे घर में स्ट्रांग होने से जीतने के चांस ब्राइट थे, पर राहु की दशा खराब होने से हार गया। डॉक्टर, कल रात को मैंने एक सपना देखा, उसमें देखा कि कुएं के पास चारपाई बिछी है, तो कुएं का तो गोल होने की वजह से शून्य हुआ और चारपाई का चौका हुआ। हाँ तो बताओ डॉक्टर, फोरकास्ट पुल खेल लूं क्या? मैं अभी भी रेस की किताब लेकर आया, आप जाइए। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए जाइए नहीं, मैं आया।
0: मुनि बाबू
3: जी,
0: इसको गैम्बुलेंसर हो गया है।
3: अच्छा,
0: ये रोग बिल्कुल कैंसर के जैसा होता है। इसका एक ही इलाज है कि इसके सर पर बर्फ से भरा हुआ मटका रखिए, ताकि इसका दिमाग बिल्कुल ठंडा रहे। जाइए कल दूसरे मरीज को लाइएगा।
3: अच्छी बात है, कल दूसरे को लाऊंगा।
0: हाँ जाइए।
2: डॉक्टर साहब, मणि शंकर जी आए हैं, केस नंबर 3 लेकर।
0: अच्छा आने दो,
3: आओ बेटे आओ। डॉक्टर साहब
0: जी आइए।
3: ये मेरा सबसे छोटा लड़का है, जटाशंकर।
0: जटाशंकर
3: एंड ही इज आउट।
0: कौन आउट?
3: सलीम इज आउट।
0: ओहो, स्कोर क्या है?
3: डोंट यू नो, यस्टरडे इंडिया वाज 4-0 एंड टुडे जॉनसन बॉलिंग टू बेदी, फर्स्ट बॉल ऑफ द ओवर, बेदी हुड द बॉल एंड बॉल इज गोइंग टुवर्ड्स द बाउंड्री लाइन एंड बाउंड्री लाइन इज कमिंग टुवर्ड्स द बॉल एंड ही इज आउट, बेदी इज आउट।
0: अरे मोनी बाबू, इसको तो क्रिकेटिया हो गया है, बीमारी बिल्कुल पायोरिया जैसी है। इसके मुंह में सुबह से शाम तक 24 घंटे क्रिकेट की बदबू आती है।
3: अच्छा तो इसका इलाज डॉक्टर साहब?
0: इसका इलाज बड़ा सीधा है, टेस्ट मैच में खेली हुई गेंद लाओ, उसको जलाकर मंजन बनाओ और उस मंजन से इसके दांत साफ कराओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जाइए जाइए कल दूसरे मरीज को लाइएगा।

0: अरे कंपाउंडर
1: जी साहब,
0: ऐसा लगता है कि तुम्हारी 6 महीने की तनख्वाह एक साथ ही निकल जाएगी। इतने मरीज आ गए हैं, वाह वाह वाह वाह।
2: 6 महीने की नहीं, 7 महीने की बाकी है।
0: ठीक है ठीक है, 7 महीने की सही। मोनी बाबू आइए आइए आइए।
3: डॉक्टर साहब
0: जी जी,
3: ये मेरा बड़ा लड़का करोड़ी शंकर है। परसों जो बड़ा लड़का कौड़ी शंकर आया था ना, ये उसका जुड़वा भाई है।
0: ओ हो हो हो, अच्छा अच्छा। तो कौड़ी शंकर जी, हाँ तुम्हें क्या होता है बेटे?
1: डॉक्टर मुझसे ये पूछिए कि मुझे क्या नहीं होता है।
0: अच्छा,
1: एक साथ 10-10 पिक्चरों में काम कर सकता हूँ।
0: 10-10
1: पर बैड लक
0: हो,
1: मेरा नहीं उन प्रोड्यूसरों का जो मुझे चांस नहीं देते।
0: ओहो,
1: अब आप ही बताइए डॉक्टर साहब, क्या आज के इन तमाम एक्टरों से कम खूबसूरत हूँ मैं?
0: अरे नहीं भाई, वाह वाह, अरे आप तो बहुत खूबसूरत
1: हैं। खूबसूरती की बात छोड़िए ना डॉक्टर साहब, एक्टिंग देखिए आप मेरी, एक्टिंग
0: एक्टिंग
1: कॉमेडी ट्रेजेडी रोमांस मर्डर मिस्ट्री हर प्रकार की एक्टिंग कर सकता हूँ। ठहरिए, पहले कहानी सुनिए। कैमरा लगा हुआ है और ट्रॉली फॉरवर्ड, कैमरा राजा भाई टावर, रात के 12 बजे, बैकग्राउंड म्यूजिक धनसक धनसक धनसक धनसक, साई साई सन्नाटा। इस सन्नाटे में एक हसीना अपनी पायल की झंकार का मधुर संगीत बजाती हुई गुजरती है। हीरो की एंट्री, हीरो हीरोइन के पास आकर कहता है, ऐ हसीना तू अपनी पायल को क्यों बजा रही है, क्या तुझे पता नहीं कि टावर के नीचे साइलेंस जोन है? हीरोइन कहती है, मुझे तो याकूब जान कहते हैं। इसके बाद क्रैक क्रैक विलन की एंट्री।

0: विलन पिस्तौल से फायर करता है, कैमरा गोली के साथ पैन वाइप डिसॉल्व, चिड़िया चहक रही हैं, बुलबुल महक रहे हैं, और
1: अच्छा और आगे
0: पैसों का पहले फैसला कर लीजिए डॉक्टर साहब, बाकी कहानी बाद में सुनाऊंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक्टिंग देखिए। मैं

0: मैं बनू मैं
1: बस
0: लैला प्यारी बसी मेरे
1: बस
0: मन में,
1: बस बस बस
0: लैला
1: बहुत
0: प्यारी
1: बहुत हो गया,
0: बसी
1: बहुत
0: मेरे मन
1: मोनी बाबू,
0: में, लैला
1: इसे
0: प्यारी
1: फिल्मोनिया हो गया है।
2: फिल्मोनिया?
1: हाँ
2: ये फिल्मोनिया क्या होता है डॉक्टर साहब?
1: जी हाँ, ये बिल्कुल निमोनिया की तरह होता है। इसका इलाज बड़ा सीधा है, हर तीसरे दिन नाई को बुलाकर इसके सर पे उस तरह फिरवाकर चमन गोटा कराइए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
2: ठीक हो जाएगा ना?
1: हाँ।
2: अच्छा तो मैं अब अपनी पत्नी को लाता हूँ।
1: हाँ?
2: देश की वर्तमान हालत पर
1: हाँ?
2: उसको बिचारी को दिन रात चिंता लगी रहती है।
1: हाँ?
2: लेकिन वो इस वक्त तो आपके वेटिंग रूम में जरा मेकअप कर रही
1: मेकअप?
2: है, इसलिए पहले आप मुझे ही देख लीजिए।
1: आप तो अच्छे भले दिखते हैं मुनी बाबू।
2: डॉक्टर साहब, हर शायर अच्छा भला दिखता है।
1: हाँ?
2: लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अच्छा होता है।
1: हाँ?
2: डॉक्टर साहब,
1: हाँ?
2: मैं पहला शायर हूँ
1: हाँ?
2: जिसका पहला ही गीत इतना हिट हो गया
1: हाँ?
2: कि रेडियो से हफ्ते भर में 6-6 दफा बजता है।
1: हाँ? ऐसा कौन सा गीत है जी इतना हिट के जो 6-6 दफे बजता है? अच्छा मोने बाबू, आप काम क्या करते हैं?
2: अजी डॉक्टर साहब, काम काज करने की तो कोई जरूरत ही नहीं।
1: हाँ।
2: पिताजी इतना पैसा छोड़ गए हैं, इतना पैसा छोड़ गए हैं कि कमाने तक की जरूरत नहीं।
1: ओहो, तो आपके घर की सारी बीमारियों का कारण आपके पिताजी का छोड़ा हुआ पैसा है?
2: है? क्या बोलते हो?
1: जी हाँ, ये लवेरिया, गैम्बलेंसर, क्रिकेटिया और फिल्मोनिया, इन सब बीमारियों की जड़ घर में जरूरत से ज्यादा पैसा है। आपके पिताजी के छोड़े हुए सारे पैसे आप किसी स्कूल में दान दे दीजिए तो आपके घर की सारी बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि सारे घर वालों को कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी तो सारे ठीक हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि आपके घर में फुर्सतिया रोग जोरों पर है।
2: पर डॉक्टर साहब,
1: ये
2: पैसे जो स्कूल में दे दिए तो सारे बच्चों को बीमारी लग गई
1: तो किसी अस्पताल को दे दीजिए।
2: अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, अस्पताल में ही देना है तो क्यों ना मैं आप ही के अस्पताल में दे दूं?
1: जी मेरे मुझे
2: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अरे रे रे रे रे, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मैंने अभी पैसे दिए ही नहीं, सिर्फ देने की बात की, आप धड़ाम से बेहोश हो गए। ओ इन अनोखी बीमारियों का अनोखा इलाज करने वाले डॉक्टर बजरंग, कहीं आपको वो बीमारी तो नहीं हो गई जिसको कहते हैं बेहोशिया?

अनोखी बीमारियां, सुमन माधुरी लिखित ये नाटिका अभी आपने सुनी, निर्देशक पुरुषोत्तम दार्भेकर। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी गीत सुनिए। युगल स्वर अलका याग्निक और उदित नारायण के हैं। फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: कार्यक्रम में आप सुनिए मदन पाल का लिखा गीत, जतिन ललित का संगीत, युगल स्वर है कुमार सानू और अलका याग्निक के, फिल्म का नाम राजू बन गया जेंटलमैन।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और अब जतिन ललित का संगीत, समीर के बोल, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज, फिल्म का नाम वास्तव।

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। प्रीतम का संगीत है, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं, अमित मिश्रा, अनुष्का मनचंदा और अंतरा मित्रा की आवाजें हैं और ये फिल्म है दिलवाली।

एक्सप्रेस हाईवे के बाजू वाली रोड पे बदतमीज गाड़ी रोके सीटी मारी मुझे छेड़ा किया मुझको इशारा अश्लील आड़ा टेढ़ा देखा मुड़ा बढ़ा बोला लख्त जिगर मस्त फिगर आके इधर बैठ जा बाजू वाली सीट खाली आजा बैठ जा।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक

0: भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
4: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

यह अवस्थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है। किशोर कुमार को सुनिए, फिल्म का नाम कटी पतंग, गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना राहुल देव बर्मन की।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

लता मंगेशकर और मुकेश को आपने सुना, फिल्म का नाम था उमर कैद। ये स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के, फिल्म का नाम पिया का घर, गीत रचना आनंद बख्शी की और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली। जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

संगीतकार राम लक्ष्मण का असली नाम है विजय पाटिल। संगीत का शौक बचपन से ही था और वो पहले कॉलेज के जमाने में नागपुर में और फिर मुंबई में स्टेज प्रोग्राम्स दिया करते थे और उसमें बजाया करते थे। विजय पाटिल अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे। फिर उन्होंने मुंबई में अपना एक दल बनाया और अपनी बनाई तर्जों को ही स्टेज पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक कार्यक्रम में दर्शक थे दादा कोंड के। वो इनसे इतना प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म पांडु हवलदार का संगीत उन्हें सौंप डाला। उन्होंने ही विजय पाटिल का नाम भी बदला। वास्तव में राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति थे, पर उनमें से एक साथ ही राम की मृत्यु हो गई, लेकिन नाम दोनों का ही चलता रहा, यानी राम लक्ष्मण के नाम से ही संगीत चलता रहा।

0: तबीयत है जनाब की?
1: संगीतकार राम लक्ष्मण का मानना था कि लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे हर आम आदमी गुनगुना पाए। अपने संगीत में इस तत्व का उन्होंने हमेशा ही ख्याल रखा। राम लक्ष्मण की पहली सुपरहिट फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत तराना। ये आई थी 1979 में। इस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत ही मशहूर हुए और लोगों ने इस संगीत को बहुत बहुत पसंद किया।

संगीतकार राम लक्ष्मण ने अपने सुरीले रस भरे गीतों से ऐसी ही संगीत वर्षा की। हम आपको बता दें कि गीतकार असद भोपाली के साथ राम लक्ष्मण ने ढेर सारी रचनाएं तैयार की, लेकिन उनमें से अधिकांश तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी। राजश्री और दादा कोंडके के अलावा प्राणलाल मेहता और दीपक बहरी ने भी अपनी फिल्मों के लिए राम लक्ष्मण के संगीत को अक्सर चुना, इसलिए राम लक्ष्मण को मौकों की कमी कभी भी नहीं रही। अगर बात करें 80s की, तो बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में आईं जिसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक उस समय बहुत बहुत सुना गया और सुनने वालों ने, दर्शकों ने बहुत बहुत सराहा। कुछ फिल्मों के नाम याद कर लें, जैसे उस्तादी उस्ताद से, इस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे, और आंगन में तुलसी एक फिल्म थी, उसके गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और राजश्री प्रोडक्शन की सुन सजना और सुन मेरी लैला के गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए। और सबसे ज़्यादा 80 के दशक में राम लक्ष्मण का जो गीत प्रचलित हुआ, सुना गया, सराहा गया और आज भी उसी चाव से सुना जाता है, वो है हमसे बढ़कर कौन फिल्म का। ये फिल्म आई थी 1981 में और ये गाना बहुत बहुत सुना गया और पसंद किया गया।

मराठी फिल्म पांडु हवलदार या माला घीउनजाला की अपार लोकप्रियता से प्रेरित होकर 1989 में राम लक्ष्मण ने मीनल राव के साथ स्वयं गाकर मराठी हिस्का नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर राजश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया, इसने तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोक धुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों से सम्मिश्रण से सृजित दिल दीवाना बिन सजना के मानीना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया की अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार लोकप्रियता का स्वाद चखाया।

राम लक्ष्मण के संगीत में एक अपनापन, एक घरेलूपन सा होता था जिसे सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करते थे। हम आपके हैं कौन उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ। वैसे उनकी फिल्म सातवां आसमान भी एक

संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीत से सजी बहुत सारी फिल्में हैं। इस कम समय में उनकी सारी फिल्मों के गानों की हम एक एक लाइन भी नहीं सुनवा सकते हैं, पर फिर भी हमने कुछ कोशिश की।

0: कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया विजय दीपक छिप्पर ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवेरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। हवा का एक झोंका पुराने खत खोल गया, भूले बिसरे सारे किस्से आंखों में घोल गया। अब जागते गुजरेगी ये रात हमारी, करवटों में कितनी बातें तोल गया। भीगा हुआ सिरहाना कहता है एक फसाना, जो अब तक कहा ना हमने उसे आंखों से है बहाना।

न होश खुद का न कोई फिक्र है, हर सांस में तेरा ही बस तेरा जिक्र है। फैली कस्तूरी की तरह मेरे आगे पीछे, भटकूं मैं खोजूं कि जाने किधर है। मिलता नहीं सारे बाजार ढूंढा, न जाने खोया कहां, मेरा सबर है।

वो गम दिल से लगाए बैठे हैं, हम खुद को भुलाए बैठे हैं। बन गए अजनबी तुम एक पल में, हम सक पकाए बैठे हैं। न कोई शिकवा किया न शिकायत ही कोई, हाथ सीने में छिपाए बैठे हैं। दोष दे भी तो कैसे तुझको, हम खुद चोट किस्मत से खाए बैठे हैं।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। खिलता है चांद रोज, मुस्कुराते हैं तारे, हम इनसे क्या कहें जब तुम ही नहीं हमारे। ना आना था जिंदगी में तो तसव्वुर में क्यों हो आते, कह तो गए थे अब तुम कोई नहीं हमारे। ये बातें तुम्हारी वो यादें तुम्हारी, करते हैं लाख कोशिश बिसरी नहीं बिसारे, पर तुम हो ही नहीं हमारे।

गम का दिया जला तो जल उठी ये रात, कोई तो पूछे मुझसे मेरे दिल के अब हालात। दिन पत्थर से सख्त लगते, डसे काली नागिन सी ये रात, अब शब्दों में क्या समेटूं मेरे बिखरे हुए जज्बात। आज करो एक वादा मेरे सामने तुम, दिया है गम हमें कोई बात नहीं, पर फिर ना करना ऐसा किसी के साथ।

ये गम किसी का नहीं, खुशी किसी की नहीं, न बहे आंसू मेरे तेरी आंखों से जब तक चोट तुझे लगी नहीं। इस भरी दुनिया में मेरी कोई मंजिल भी नहीं, रास्ता भी नहीं, क्या बताऊं मैं अपनी दास्तां तुझे। तू मेरा दोस्त भी नहीं, हम नवा भी नहीं, मेरा दर्द भी तेरा नहीं और तू मेरी दवा भी नहीं।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
3: Discussions focused on enhancing cooperation.
4: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे

से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए